101.9 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि, दिनांक 24 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हो चुके हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा।

101.9 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
1: एप्लीकेशन है।

रूहानी तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग झरोखा। सुनिए लिखा जोखा आज विविध भारती से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। श्री रामचरितमानस गान का 198वां भाग सुनवाया जाएगा आपसे कुछ देर बाद 6:35 पर। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों चल रही है श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार है शकुंतला नरसिम्हन, आज दूसरी कड़ी। सुबह 7 भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक। आज जाने माने गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के याद का दिन है। सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम मजरूह सुल्तानपुरी पर केंद्रित होगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 पर दोबारा सुना जा सकता है। सुबह 10 पिटारा में बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत लेखक और निर्देशक देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत सुनवाई जाएगी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। दिन में 11 सुनिएगा विविधा। विविधा के अंतर्गत हास्य नाटिका होगी सास बहू और हेलो फरमाइश, लेखक निर्देशक यूनुस खान। व्यंग्य नाटक ये उन दिनों की बात है, अभिनय नरोत्तम बीन।

में 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर, दिन में 2 बजे त्रिवेणी सुनाई जाएगी, 2:30 पर सुनिएगा सदाबहार नखमे, दिन में 3 बजे मनचाहे गीत सुनिएगा, 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक चंदन वृक्ष उषा सक्सेना ने इसे लिखा है, निर्देशक रमा अरुण त्रिवेदी। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का 5वां और आखिरी भाग सुनवाया जाएगा आज शाम 4 बजे। शाम 5 बजे छाया गीत सुनिएगा, 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम होगा, कर्नाटक संगीत पद्धति के राग भाग 2, कलाकार शकुंतला नरसिम्हन। शाम 7 बजे सैनिकों की शौर्य गाथा, इस श्रृंखला में महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन निकी जाकू केंगुर से की शौर्य गाथा सुनवाई जाएगी। 7:45 पर साज और आवाज कार्यक्रम में सुरेश यादव की बजाई फिल्मी धुने सैक्सोफोन पर और फिर वही फिल्मी गाने। 8:00 हवा महल में झलकी सुनिए मैरिज एनिवर्सरी, हरि नारायण शर्मा ने इसे लिखा, HS व्यास का निर्देशन। 8:15 पर चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम होगा, 9:30 पर मजरूह सुल्तानपुरी पर केंद्रित होगा आज के फनकार कार्यक्रम। सुबह रात्रि 10 बजे छाया गीत सुनिएगा, 10:30 पर ढलती जाए रात। रात 11 बजे विविधा सुनिएगा, हास्य नाटिका सास बहू और हेलो फरमाइश, और इसके अलावा विविधा के अंतर्गत व्यंग्य नाटक ये उन दिनों की बात है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आपको बता दें, सुबह 9:30 और रात 9:30 पर मजरूह सुल्तानपुरी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। आज है मजरूह की याद का दिन।

निषाद राज के साथ भरत प्रयाग के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्री राम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साथरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े होंगे, भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के श्वसुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा बिछावन देख किसका हृदय नहीं फट जाएगा। कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण सरीखे छोटे

भाई वन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्री राम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस सोच से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कर्नाटक संगीत पद्धति के अंतर्गत आने वाले कुछ राग और उनसे जुड़ी मान्यताएं। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: श्रोतागण नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसा राग के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे एक तरीके से मॉडर्न या आधुनिक कहा जा सकता है। कुछ राग ऐसे हैं जो प्राचीन काल से हजार वर्ष के पूर्व प्रसिद्ध हैं और थे, और कुछ ऐसे हैं जिनकी रचना हाल ही में हुई थी। कतन कुतूहलम इसी प्रकार का एक राग है। पट्टनम सुब्रमण्य अय्यर, जो एक वाग्यकार थे, करीब 100-150 साल पहले इसे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में शामिल किया था। उस समय

हमारे देश में अंग्रेजी शासक राज्य करते थे और विलायती बैंड संगीत सुनने को मिलता था। पट्टनम सुब्रमण्य अय्यर ने इस राग को पाश्चात्य बैंड संगीत की शैली में बनाया और स्वर इस प्रकार लगते हैं।

0: ने गा पसा सा नि द प म ग रे सा।
1: अर्थात इसमें लगने वाले स्वर शुद्ध हैं। यह 29वां मेलकर्ता राग धीर शंकराभरणम से जन्य है, तो स्वर शंकराभरणम के अर्थात बिलावल के शुद्ध स्वर लगते हैं। राग कतन कुतूहलम का चलन इस प्रकार है।

क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि कुछ पाश्चात्य धुन बज रहा हो? लेकिन यह बताना जरूरी है कि वेस्टर्न बैंड संगीत पर आधारित होते हुए भी राग कतन कुतूहलम कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पद्धति का ही एक नमूना माना जाता है, अर्थात इसको अच्छी तरह शामिल कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि पाश्चात्य संगीत की झलक इसमें होने के कारण इसे शास्त्रीय कोश में शामिल नहीं कर सकते। भला कर्नाटक पद्धति हो या हिंदुस्तानी उत्तर भारतीय संगीत हो, हमारी भारतीय प्रथा में सदा दूसरी सभ्यताओं में से कुछ अंश ग्रहण करके अपना लेना और उसे एक भारतीय रूप देकर उसकी शोभा बढ़ा देना, यह हमारी विशेषता है, हमारी परंपरा की विशेषता है, हमारी कला की विशेषता है। तो आइए अब सुनते हैं राग कतन कुतूहलम में शेष गोपालन की आवाज में मुत्तैया भागवतर की एक रचना। यह कृति आदि ताल में है, अनुपल्लवी के बाद अर्थात अंतरा के बाद एक चित्तस्वरम यानी बंदिश सरगम जुड़ा हुआ है, जिसमें आप राग कतन कुतूहलम का स्वरूप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो सुनिए विद्वान शेष गोपालन की आवाज में राग कतन कुतूहलम में मुत्तैया भागवतर की एक रचना।

राग कतन कुतूहलम में सबसे ज्यादा मशहूर एक कीर्तनम है त्यागराज रचित, जो है रघुवंश सुधाम बुधि, जिसकी रचना पटनम सुब्रमण्य अय्यर ने खुद की। तो उसका भी एक छोटा सा झलक मैं दे देती हूँ आपको।

0: अभी आप सुन रही थी जल तरंग पर राग कदन कुतूहलम। कलाकार थे अन्यम पट्टी एस गणेशन और एस दंदपानी। आप तो जानते ही हैं श्रोताओं कि इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा।

अभी सुने भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का आगाज एक ही रास्ता फिल्म के गाने से करते हैं। हेमंत कुमार की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और संगीत खुद हेमंत कुमार का है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आइए अब हम आपको हमारी सभा में प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत करा दें। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 7:30 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा अमृत कलश। 8:15 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा सुर संगम। 8:30 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम होगा प्रणाम अयोध्या। इसमें आज की बात का विषय होगा राष्ट्रमंडल दिवस। इसके अलावा सुनिएगा फिल्म एंड म्यूजिक मेलोडी, जिसमें आज हम आपसे बातें करेंगे किशोर कुमार के बारे में। और सुनिएगा समाचार पत्रों से। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत होगा आपके संदेश आपके गीत सुबह 9:00। 9:30 पर कार्यक्रम होगा बातें आसपास की, जिसमें आज का विषय है हमारी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते पारंपरिक खेल। सुबह 10:00 से 12:30 तक सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। दोपहर 12:30 पर अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम होगा लोक रंग। दोपहर 1:00 सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा हेलो अयोध्या। पर फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा कुछ तुमने कहा। दोपहर 2:00 सुनिएगा गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि। दोपहर 2:30 पर बच्चों का कार्यक्रम होगा बाल जगत, जिसमें चर्चा होगी कॉमनवेल्थ दिवस और बड़ों का करें सम्मान। भेंट वार्ता सुनिएगा बच्चे जाने राष्ट्रमंडल देशों के बारे में। वार्ताकार होंगी सुनीता सिंह अध्यापिका। रोचक जानकारी में सुनिएगा लखनऊ के चिड़ियाघर। प्रेरक व्यक्ति में राम बिहारी बोस। शाम 5:00 युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युववाणी, जिसमें चर्चा होगी राष्ट्रमंडल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस ज्ञान विज्ञान। इसके अंतर्गत सुनिएगा नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन। आकाशवाणी 90 पर रेडियो श्रोता अभिषेक मिश्रा से सदक हुसैन की बातचीत। संस्था होगी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। शाम 5:30 पर कार्यक्रम होगा लोक संगीत। 6:10 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा शाम सुहानी। 6:30 पर लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुनिएगा गूंजे स्वर गांव के। 6:45 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम होगा कृषि जगत, इसमें चर्चा होगी पर्यावरण संरक्षण। इसके अलावा भेंट वार्ता सुनिएगा गर्मी की जुताई के लाभ। वार्ताकार होंगे डॉक्टर आनंद सिंह, सहायक प्राध्यापक मृदा विज्ञान विभाग कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज

अयोध्या, भेंट करता होंगी पूनम वर्मा। शाम 7:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम विवरण। 8:15 पर कार्यक्रम होगा शेर और गीत। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम होगा खेल खिलाड़ी। 9:30 पर सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा हेलो अयोध्या। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। श्रोता, ये थी हमारी सभा में प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूप रेखा। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में लिया हिस्सा, कहा देश के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाने के लिए भारत विश्व के कई देशों के साथ कर रहा साझेदारी। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की श्रम और सेवा योजन विभाग की समीक्षा बैठक, नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेले गए आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी लखनऊ, वाराणसी और आगरा सहित देश के 47 अलग अलग स्थानों पर कल रोजगार मेले का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण

0: माध्यम है। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। उन्होंने कहा कि देश अब पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है।
2: लखनऊ में 330 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र हमने दिए और मैं कह सकता हूँ ये माने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करके इस तरह से महिलाओं के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम होता है।
0: वाराणसी के बरेका परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान 341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही राष्ट्र सेवा का अवसर भी प्रदान करती है।

0: आगरा में रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। श्री बघेल ने रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
1: मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश को जो उन्होंने सरकारी नौकरियों के रोजगार के लिए वादा किया था वो पूरा हुआ। इसके अलावा भी जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तमाम स्टार्टअप के माध्यम से अन्य माध्यम से भी रोजगार दिए जा रहे हैं।
0: रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में श्रम एवं सेवा योजन विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने वर्तमान में 20 जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना की चर्चा करते हुए इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है जिसके चलते लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। बांदा प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान वाला जिला बना हुआ है। बांदा के अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
3: बांदा में जैसा कि टेम्परेचर लगातार उसी स्थिति में बना हुआ है तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन नित नए प्रयोग योजना कर रहा है। अभी तक हम लोग सब विभागों को उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनके कार्य हैं, वो उन्हें करने के लिए निर्देशित कर रहे थे।
0: उधर अयोध्या में कल तेज आंधी के साथ हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस

बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने कल सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खां की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। वहीं उनके बेटे

0: मुकदमे में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा निवर्तमान प्रदेश सचिव ब्रजराज सिंह और 30 अज्ञात समर्थक भी शामिल हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कल फिर वृद्धि की गई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। प्रदेश में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमतों में करीब 86 पैसे और डीजल में करीब 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी मौलवी सेकेंडरी तथा आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परिणाम कल घोषित किया गया। इस वर्ष मदरसा बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 88.26% रहा। परिणाम में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। आईपीएल मुकाबले में कल लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच खेला गया। इस मैच को पंजाब ने कप्तान श्रेयस अय्यर की शतकीय पारी के बल पर 7 विकेट से जीत लिया। पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर लखनऊ की टीम को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 196 रन बनाए और पंजाब को जीत के लिए 197 रन का लक्ष्य दिया, जिसे उसने 18 ओवर में 3 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। इस हार के साथ आईपीएल के इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर समाप्त हो गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में लिया हिस्सा। कहा, देश के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाने के लिए भारत विश्व के कई देशों के साथ कर रहा साझेदारी। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेले गए आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
3: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
4: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
5: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़िया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 बजे के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है अयोध्या आकाशवाणी @

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। तृप्ति शाक्या की आवाज में आइए सुनते हैं ये भक्ति गीत।

0: वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हीट स्ट्रोक लू यानी तेज गर्मी जानलेवा हो सकती है। घर से निकलते समय सिर ढककर रखें। इसके लिए कपड़े हैट या छतरी का प्रयोग कर सकते हैं।
3: हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने और पर्याप्त मात्रा में पानी अवश्य पिए।
2: ORS घर में बने पेय पदार्थों जैसे लस्सी, चावल का माड़, नींबू पानी, छाछ का सेवन कर तरोताजा रहें।
3: स्थानीय मौसम संबंधी जानकारी के लिए रेडियो सुने, टीवी देखें और समाचार पत्र जरूर पढ़ें।
2: पशु पक्षियों को भी छाया में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें।
3: छोटे बच्चों और पालतू जानवरों को कार या अन्य वाहन में अकेले छोड़कर ना जाएं। वाहन जल्दी गर्म होकर खतरनाक तापमान पैदा कर सकता है।
2: दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच तेज धूप में जाने से बचें। गर्मी के मौसम में जंक फूड का सेवन न करें। ताजे फल, सलाद तथा घर का बना खाना ही खाएं।
4: अपने वाहन को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें। कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
2: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें। आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
4: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
2: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
4: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
2: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
5: अमृत कलश, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम में अगली आवाज है अनुराधा पौडवाल की।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति

0: समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: Expanded commercial ties. अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों, चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
0: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ

0: अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरतनाज।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है मोदी से मिले रूबियो, अमेरिका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले बात से निकले

0: संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्ट पर लोकसत्ता ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में पेटिशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com

दोस्तों इस समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और अपने शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए हमें करना ये है कि अधिक से अधिक पानी पीना है। यदि प्यास ना लगी हो तब भी अवश्य पानी पिएं। घर से बाहर जाते समय पीने का पानी अपने साथ जरूर लेकर जाएं। ORS, घर में बने हुए पेय पदार्थ जैसे लस्सी, चावल का पानी यानी कि माड़, नींबू पानी, छाछ आदि का उपयोग करें, जिससे कि शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो सके। जल की अधिक मात्रा वाले मौसमी फल एवं सब्जियों जैसे तरबूज, खरबूज, संतरे, अंगूर, अनानास, खीरा, ककड़ी, सलाद पत्ता इत्यादि का उपयोग जरूर करें। शरीर को ढककर रखें। हल्के रंग के हल्के वस्त्र पहने। अगर आप खुले में कार्य करते हैं तो धूप से बचाव के लिए शरीर को ढककर रखें। सिर ढकने के लिए छाता, टोपी, तौलिया, गमछा आदि का जरूर प्रयोग करें। धूप में जाते समय आंखों की सुरक्षा के लिए धूप का चश्मा पहने एवं पैरों में बचाव के लिए जूते चप्पल का प्रयोग करें। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। अदनान सामी की आवाज में आइए सुनते हैं प्राइवेट एल्बम से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532921909।
3: प्रणाम अयोध्या सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को रक्षा श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है राष्ट्रमंडल दिवस। राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश शासनकाल का हिस्सा थे, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में थे। राष्ट्रमंडल दिवस रानी विक्टोरिया की जन्मतिथि पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 24 मई को हुआ था। महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन से जुड़ा यह दिन राष्ट्रमंडल की अटूट भावना का प्रतीक है, जो एकता और लचीलेपन पर जोर देता है। राष्ट्रमंडल दिवस वैश्विक चुनौतियों से निपटने और सदस्य देशों के बीच समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका पर विचार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। श्रोताओं, राष्ट्रमंडल दिवस उन देशों की एकता, सहयोग और मित्रता का प्रतीक है जो राष्ट्रमंडल संगठन से जुड़े हुए हैं। इस संगठन में दुनिया के कई देश शामिल हैं जो लोकतंत्र, शांति, शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। भारत भी राष्ट्रमंडल का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है, जो हमेशा से वैश्विक सहयोग तथा शांति के संदेश को मजबूत करता आया है। राष्ट्रमंडल

दिवस हमें यह सिखाता है कि विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के बावजूद हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर विकास और भाईचारे की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। यह दिन विशेष रूप से युवाओं को शिक्षा, खेल और सामाजिक सेवा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आज दुनिया अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, तब राष्ट्रमंडल दिवस हमें एकता, सहयोग और मानवता का संदेश देता है। आइए हम सब मिलकर शांति, सद्भाव और विकास के मूल्यों को अपनाएं और बेहतर समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। प्रणाम अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। दोस्तों, अब है समय हमारे सेगमेंट फिल्म एंड म्यूजिक मेलोडी का, जिसमें आज हम आपसे बातें कर रहे हैं किशोर कुमार के बारे में। संगीत की दुनिया में बहुत सारे सितारे आए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा आसमान में चमकते हैं। किशोर कुमार भारतीय सिनेमा जगत के एक सदाबहार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार थे। उनकी जादुई आवाज, बेजोड़ गायन शैली ने उन्हें संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। वे एक बेहतरीन गायक होने के साथ साथ एक शानदार अभिनेता और निर्देशक भी थे। उन्होंने अपने कैरियर में हजारों गीत गाए और हर गीत को एक अलग पहचान दी।

फिल्म एंड म्यूजिक मेलोडी में आज हम आपसे बातें कर रहे हैं किशोर कुमार के बारे में। किशोर कुमार दिग्गज फिल्म अभिनेता अशोक कुमार के छोटे भाई थे। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश राज्य के खांडवा में हुआ था। इनका असली नाम आभास कुमार गांगुली था। इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन गायकों में शुमार किशोर कुमार ने कोई शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग नहीं ली थी, फिर भी उनकी आवाज में वो जादू था जो सीधा दिलों को छू लेता था। उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, गुजराती और कई भाषाओं में भी गीत गाए और अपने दम पर 8 फिल्मफेयर पुरस्कार जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया।

0: आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
1: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
0: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
1: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: आपके संदेश
4: संदेश से
3: आते हैं, आपके गीत।

0: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
1: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
2: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 8303119911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।

0: जी हाँ, यही तो है हम सब का आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
0: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।

किशोर कुमार, उनका अंदाज इतना अनोखा था कि वो अपने गायन से लोगों को हंसा भी सकते थे और रुला भी सकते थे। चलती का नाम गाड़ी से लेकर पड़ोसन तक उनकी एक्टिंग और कॉमेडी का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, किशोरदा एक बेहतरीन गायक ही नहीं थे बल्कि एक शानदार अभिनेता और निर्माता भी थे। उनकी कॉमिक टाइमिंग, मासूम अदाएं लोगों को बहुत ही पसंद आती थी। कहा जाता है कि वो दिल से बिल्कुल बच्चे जैसे थे, बेफिक्र, मजाकिया और बेहद अलग। शायद यही वजह थी कि उनकी गायकी में इतनी सच्चाई थी। उनकी आवाज सीधे दिल में उतर जाती थी। इनकी आवाज में शरारत थी, मस्ती थी, दर्द भी था और मोहब्बत भी थी। तो चलिए इसी सुनहरी यादों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

70 और 80 के दशक में किशोर कुमार की आवाज लगभग हर बड़े अभिनेता की पहचान बन गई थी। राजेश खन्ना पर फिल्माए गए उनके गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं। मेरे सपनों की रानी, ये शाम मस्तानी और ओ मेरे दिल के चैन जैसे गीत आज भी सुनते ही चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अपनी रसीली आवाज से लाखों दिलों पर राज करने वाले किशोर कुमार ने 13 अक्टूबर 1987 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, मगर वो आज भी अपने गीतों के जरिए हमारे दिलों में जिंदा हैं।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको अयोध्या की कुछ स्थानीय खबरों से अवगत कराते चलें। दो लाख चौवालीस हजार दुर्लभ पांडुलिपियां मिली। रामनगरी एक बार फिर भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के विशाल केंद्र के रूप में उभर रही है। सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से संचालित प्रदेश

ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के तहत अयोध्या क्षेत्र में अब तक करीब 2,44,000 दुर्लभ पांडुलिपियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें धर्म दर्शन वेद रामायण ज्योतिष इतिहास और भारतीय संस्कृति से जुड़ी अनेक प्राचीन हस्तलिखित धरोहरें शामिल हैं। राम मंदिर में भीषण गर्मी में भी रोजाना पहुंच रहे हैं 80,000 श्रद्धालु। तपती गर्मी और तेज धूप के बावजूद रामनगरी में आस्था का प्रवाह लगातार बढ़ता जा रहा है। राम मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 45,000 से 80,000 श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। शनिवार को भी सुबह से देर शाम तक दर्शन मार्ग पर भक्तों की लंबी कतार लगी रही। श्रोताओं, इन्हीं स्थानीय खबरों के साथ कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या से दीजिए अपनी दोस्त रक्षा श्रीवास्तव को अनुमति।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आइए सुनते हैं व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम, आपके संदेश आपके गीत।
1: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
2: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
1: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
2: फोन नंबर 9161877347।
3: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
4: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
5: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की।
6: नहीं अछूता हो जिस
5: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
7: ये है आपकी अपनी आकाशवाणी, बहुजन हिताए बहुजन सुखाए, जन जन की सेवा में, शिक्षा और मनोरंजन के लिए, सनसनी नहीं तथ्य के लिए, लोकप्रियता और सत्य के लिए, प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी।
0: आपके संदेश आपके गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को रक्षा श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में पहला व्हाट्सएप संदेश हमने लिया है दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन अंजान, साइमान नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। आप सबने पसंद किया है फिल्म रंग का गीत।

आवाज है कुमार सानू, अलका याग्निक और पी सुगंधा की। समीर के लिखे गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म रंग का ये गीत।

आपके संदेश आपके गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम में अगला व्हाट्सएप संदेश हमारे पास आया है दतरिंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। हीरा मणिवर्मा, पारस मणिवर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा और नोखेलाल वर्मा, आप सबने पसंद किया है फिल्म बादशाह का गीत। आवाज है अभिजीत और अलका याग्निक की। समीर के लिखे गीत को संगीत दिया है अन्नू मलिक ने। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: बदली स्टाइल गया है बबल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर
1: आकाशवाणी अयोध्या
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन
3: जग घूमे थर जैसा ना कोई
0: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9
1: आकाशवाणी अयोध्या
0: जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान
2: तो देर क्यों जनाब किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर
0: ayodhyaakashwani@gmail.com
4: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या
5: कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में अगला व्हाट्सएप संदेश हमारे पास आया है बत्रय बुजुर्ग पलीरा टीकमगढ़ एमपी से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी विश्वकर्मा सोनाली विश्वकर्मा सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा आप सबने पसंद किया है फिल्म कच्चे धागे का ये गीत

के संदेश आपके गीत की अंतिम फरमाइश हमारे पास आई है बक्सर बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा सरिमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का ये गीत। आवाज है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: सर, 2 लाख
2: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
1: काट दिया।
2: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
2: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे,
4: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बातें आसपास की।
6: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
7: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
8: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
7: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
8: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
9: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
8: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
9: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
10: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
8: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
11: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: महेंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बातें आसपास की।
1: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
3: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
2: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए।

माध्यम भी थे। शाम होते ही बच्चे मैदान में इकट्ठे हो जाते थे। कोई कबड्डी खेलता, कोई खो खो खेलता। विरोधी टीम को छूने की कोशिश करता तो कहीं कोई फुर्ती और चतुराई का अद्भुत नजारा पेश करता। इन खेलों की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इनमें महंगे सामान की जरूरत नहीं होती थी, बस साथियों का साथ और खेलने का उत्साह ही काफी था। पारंपरिक खेल बच्चों को अनुशासन, सहयोग और धैर्य सिखाते थे। साथ ही ये खेल हमें अपनी मिट्टी और संस्कृति से जोड़कर भी रखते थे।

0: पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोकरंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोकरंग कार्यक्रम।
1: दोस्तों, अगर बात हो रही है पारंपरिक खेलों की और बात ना हो गिल्ली डंडा की तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। भारत में सदियों से खेला जाने वाला यह खेल आधुनिक क्रिकेट का ही एक पारंपरिक रूप माना जा सकता है। पिट्ठू या लगोरी, इस खेल में 7 पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर गेंद से गिराया जाता था और फिर

पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोकरंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोकरंग कार्यक्रम।

से जुड़े रहें, हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें और हमें सुनते रहें न्यूज ऑन AIR ऐप पे भी, कहीं भी, कभी भी। दोस्तों आज हम बता दें कि हमारे अभी आगे के कार्यक्रम जो है वो बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं। 12:30 पर आप लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रंग का आनंद लेंगे और 1 बजे होगा आपकी पसंद का कार्यक्रम हेलो अयोध्या और 1

0: अरे
1: और मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ता था उस समय,
0: ठीक है।
1: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हम छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे हमारे, छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे लाइक।
0: तो बुंदेली में था ये?
1: हाँ, बुंदेली में नाटक था। अब मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है क्योंकि मैं एक में पहला नाटक था मेरा, तो उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया। और मैंने अभी आपसे बात भी किया इस तरह का जो जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूँ। तो फिर ऐसे शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ। फिर खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई।

0: किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूं और मैं वैसे ही जा रहा हूं, मेरे घुटने कांप रहे हैं और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है, मैं सोचूं कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका है उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फोन कर रहा हूं। अभी 5 बजे कोई कोई फोन उठाएगा?
1: बिल्कुल,
0: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूंगा, मैं जाके कहीं, मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया, और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फोन बंद हो जाए या आपका फोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा और फिर एक बंदा
1: रोशनपुरा चौराहे पर,
0: एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा मेरे पास आए, और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये एक पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा, और वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने बोले कि पैर वैर नहीं छूते, मैंने बोले हमारे यहाँ तो बड़े बड़ों के पैर छूते हैं, उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते क्योंकि लोग अजीब के होते हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया। और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दरह के घर में, और हम बैठे हुए हैं और 1 घंटा हो गया।
1: पहले हेमंत आया,
0: हेमंत दादा आए पहले, और अच्छा। उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि वो उनका ग्रुप का नाम नटबुंदी ले, और तुम बुंदेलखंड से हो सकता है तुम्हें रख ले, और तुमने बोला तुम गाने आने गाते हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख ले। और मैं अतरंगी था सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहने हुए, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं, बड़े बड़े मैंने बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, लगता कि उधर रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया बैठे बैठे, पानी आया चाय आई हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं। और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं बंदा पढ़ ही रहा है, आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे, वो उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये उन्होंने बोला किसको लेके आ गए, कौन है, मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं, आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर। मैं बहुत कॉन्फिडेंस था, मेरे को ये ताकत लगा रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उन्होंने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखिए इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं जाना है और मैं उसके लिए आया हूं, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मैं सर कुछ भी करूंगा, मैं आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल स्पेस साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीजें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेक्टरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी श्यामला हिल्स पे, उसमें मैं, हेमंत देवलेकर भैया और एक और जीतेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे, वो रहते थे। तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार, और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहां पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना, और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा, तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे, और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई, उस महफिल में सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूं आपको?
1: जरूर।
0: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिचरी खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, वो पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने। घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है, कईया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मिला जाने।
1: क्या बात है।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, ये उसके दोस्त हैं।
1: बिल्कुल।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेलाना जा पाहो उनका आके तिनगाने,
1: वाह वाह,
0: आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया हिलाने, दद्दा मुखा मेला जाने।
1: वाह वाह,
0: आखिरी बंदे की दद्दा धीरे से मुस्काए, ढीले दोई बेला और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला।

0: मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया लेवाई और कंधे पे बैठा के पूरा मेला दो घुमाई। कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने और आज ते 5 रुपया दे गड़गड़िया हिलाने दद्दा मुखा मेला जाए।
1: कहते हैं देवेंद्र
0: उस समय ये बुंदेलखंडी कभी गानों में कभी जो राइटर होता था उसका नाम छाप बोलते थे उसे छाप है तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी मेरी बुंदेली कविता थी और वहां से ही मेरा साहित्य के बारे में शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया चेखव पढ़ना शुरू किया मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया बादल सरकार पढ़ना तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
1: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
0: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था और 10 रुपए का 5 रुपए का नमकीन का एक पैकेट आता है भुजिया बोले ली और रोटी बना के और रोटी में घी लगा के घी और ये दोनों चीजें घर से ले गया था और रोल बना के उसमें नमकीन डालता था और उसको ऐसे खाता था। खर्च कुछ था ही नहीं
1: बस खाना हो गया
0: और वहां से रिहर्सल के लिए वॉक करता था तो वॉक करके वहां पे जाता था रिहर्सल करता था टाइम से पहले पहुंचता था तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था ये ड्यूटी थी मेरी रिहर्सल स्पेस साफ करना है चटाइयां बिछानी है डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है पानी की बोतलें भरनी है तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में और एक मेरा दोस्त था सिद्ध।

0: गया,
1: खाना हो गया और वहां से रिहर्सल के लिए वॉक करता था तो वॉक करके वहां पे जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुंचता था तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था, ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल स्पेस साफ करना है, चटाइयां बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना। और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था कि भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मेरी भाषा का बहुत खराब था। एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े और दादा मुझे, और मेरी भाषा बहुत खराब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द, ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे, वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक ही मुझे वो करने को मिला। मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हो गया। तो उसमें एक डायलॉग था, ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नहीं, वो मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पे गाली मिलती थी, और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो। तो यार मैं समझ नहीं आता, मैं वही तो बोलता हूँ। फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे वो भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे कमा नहीं सकता, ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, वो खुले ही था। तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्जाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे, मैंने म्यूजिक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था, पर म्यूजिक बनाना मैंने कैसे समझा, कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी, जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीज़ों के लिए, काफ़ी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है। तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे, और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, एसएन अवार्डी हैं वो, और मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने। तो एक नाटक कर रहे थे, तो उस नाटक में हम उज्जैन में, हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी और उज्जैन में हम एक महीने के लिए वहाँ पे थे, तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे, हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे, तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही, और वो गाना मुझे ही गाना था तो मेरे सामने बना रहे थे, क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ, तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कविता थी, दिखती है आस क्यों पाक पसारे, सही में है मन क्यों क्यों रूठे किनारे। तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया। सर देखिए छोटी सी बात है पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया और मैं ऐसे इंस्पायर हो, इनलाइट हो गया, मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गाना ऐसा कुछ था।

0: क्यों रूठे किनारे। तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की और लिखने की शुरू किए, क्योंकि मैं पढ़ता था भावे में, लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए।
1: कंपोज करना शुरू किया या लिखने
0: भी लिखना दिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का 7-8 मिनट का 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ। अगले
1: को यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है। एक गाना सुनते हैं, उसके बाद ये दास्तान सुनेंगे। तो बताओ यहाँ कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकारा का गाना है।
1: बहुत
0: ही सुंदर गाना है, बहुत सुंदर गाना है।

0: गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र, आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा,
1: हाँ,
0: तो इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेली गाने थे, कुछ ऐसा कुछ गाने थे, और वहां पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है, वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, सुबह का

0: जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग्य जगा ले, तुझको किसने रोका है, सुबह का भोला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है, और फिर
1: म्यूजिक का सिलसिला चल
0: चालू हो गया। फिर उसके बाद मैं पास आउट हुआ, और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना, मेरे ग्रुप में काम करना।
1: अच्छा,
0: तो एक ब्रिज में लिया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है।
1: वो तो छूटे नहीं है, वो रिकॉर्डिंग तो छूटी नहीं है।
0: वो तो मैं, मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था, पर एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया। और देने गया इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो, तो भोपाल में आपने नहीं दिया? मैंने बोला मैंने दिया था। तो उन्होंने क्या हुआ? मैंने कि हो गया। तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ। मैंने कहा अरे यार, तो फिर मुझे पढ़ने का वहां पे मौका मिला, और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था। 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए, और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ। और तो उसके बाद मैंने दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम किया।
1: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन
0: हो गया,
1: और वहीं वो
0: धुरंधर जी से मिलना हुआ मेरा।
1: मिले धुरंधर
0: जी? उस समय तक थे धुरंधर जी, पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक।
1: हाँ।
0: मैंने बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, बोले यार ऐसे मनगढ़ंत कहानी सुना रहे। वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग जैसे होते हैं, तो ऐसे थे वो, क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहां पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे दुनिया में होता है
1: जी।
0: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब परिवार के सदस्य हैं, सीनियर सदस्य हो आप, तो उस तरह से। तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा है, और फिर वो रिटायर्ड हो गए, तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहाँ भी हूँ, बहुत ही अच्छे थे वो।
1: एनएसडी ने आपकी दुनिया को कितना बदला?
0: सो एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का, और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया। उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग किसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे। बंदूक किसके पास है? मैं बोलता राजगुरु के पास, मेरा डायलॉग खत्म, रोल भी खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरी भाषा इतनी खराब थी।
1: अच्छा,
0: क्योंकि
1: लेकिन ये फिर भाषा पर काम कैसे किया? ये बहुत
0: मैं बता रहा हूं कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था। शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था, तो लोग हंसते थे। तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मैं बहुत बड़ा मसला है।
1: हाँ।
0: तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की, मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके। मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा अच्छा मैं गलत बोलता था।
1: शक को साफ बोल रहे हो,
0: हमेशा बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता जो राजीव जोशी की बहुत पॉपुलर कविता, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया।
1: हाँ।
0: जो हमारे बैंड का मंडी हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड है उसमें गाना है ना, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था, जिसमें मैंने सा को सही बोला था। शामिल बोला था, मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोल रहा था इतने दिन से तुमसे, यही तो बोलवाना चाह रहे थे हम।
1: ओके।
0: तो ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया, और जब मैं पहली बार इसमें एनर्जी आया, और मैंने बहुत बड़ा रोल किया लोअर डेप नाटक में, दोबारा हुआ एनर्जी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया, और डायरेक्ट कर रहे थे अनुरुद्ध खुटवर सर, और मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया, और 2-2.5 घंटे के नाटक में 1.5-2 घंटे कम से कम स्टेज पे, और लगातार बोलना है, और कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट, कुछ भी चीज जो मैं नहीं करता था सबको उसको करना है, मैनरिज्म पकड़ने की कोशिश की, और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया, और उस समय मुझे समझ आया कि यार मैं जहां से बिलोंग करता हूँ, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियां कौन कहेगा। तो फिर मैंने वहां से अपना रुझान बदला, और मैंने डिजाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया सेकंड ईयर से, आप स्पेशलाइजेशन करते हो, तो वो लिया, और फिर मैं उस तरफ आ गया, और फिर मैंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहां से मैं बिलोंग करता हूं उस जमीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी के पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूं, मेरे को लोग प्यार करते हैं, और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूं, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूं, तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूं, लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
1: बिल्कुल
0: तुम्हारी एफर्टलेस में दिखती है। तो ऐसे करके शुरू हुआ पूरा।
1: तो फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर की बात की है आपने?
0: दिल्ली पहुंचा उस दौर के बड़े नाटक होते थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा।

0: कपूर मैम ने बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे, बंसी कौल जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया। हाँ तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लाजन लाइव थिएटर करते थे और वो फार्स कॉमेडी करते थे, वो कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने वाटर स्टेशन जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
1: बिल्कुल
0: देखे हमने। अभिलाष पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने, और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ, और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं।
1: तो वहां से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
0: मैं पास आउट हुआ 17 में और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था, डिरेल मैंने किया था, वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया और वो थिएटर ओलंपिक हुआ, उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था, उसके 1000 लोग देखते थे और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिजाइन किया था, और एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक कि वहां से एक रेल की पटरी निकलती है और वहां पे एक गार्ड रहता है और वहां पे फाटक है और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा, ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था, तो वो गाना और उसके काफी गाने ऐसे पॉपुलर हुए और वो मैंने रिकॉर्ड किए, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे तो मैंने दे दिए किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, कभी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बम्बई आ जा और मैं हम काम करेंगे। वो बहुत बड़ा नाम था उस डायरेक्टर का और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था, 12 बजे के आसपास एनएसजी से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पे मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में, और एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ, उन्होंने बोला फलाना फलाना बोल रहा हूँ, सर कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज़ म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं और मैं वहीं खड़ा हुआ, कुत्ते मेरे आस पास पहुँच रहे, सुनाई देना बंद हो गया मुझे, मैंने कहा अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या, हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे। पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया
1: और यहाँ से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
0: हाँ मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे ही शुरू होता है कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है, पर ये बता था कि वहां हर हाल में पहुंचना है जहां जाने का ख्वाब देखा है, तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे, फिर मैंने एक नाटक बना लिया कांजी हाउस जो मैंने ही लिखा था और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे, वो शुरू ऐसे होता था, आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।
1: अच्छा।
0: हाँ, वो क्योंकि रेडियो को अंदा था तो रेडियो पे कोई न्यूज चल रही है और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये उसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूजिक है। तो कांजी हाउस उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए और वो फिर कोविड लग गया, हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है।
1: उसका एक गाना सुनाओ यार,
0: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको,
1: बिल्कुल
0: सुनाता हूँ मैं आपको, उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है। मैं एक इसकी छोटी सी कभी बता देता हूँ कि एक छोटा सा सेंटेंस जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती, उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल कर
1: बदल दी।
0: उस पर एक कहानी है, हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है, एक संवाद कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद है,
1: क्या कर
0: तो
1: सकता
0: वो
1: है?
0: क्या बदल सकता

0: सकता है, वो तबाही ला सकता है। तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होके ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है क्योंकि okay. वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गांव से निकल के कहां कहां पहुंचता है, उसकी कहानी है। सो गाना है, अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, इसको कोई रोक सके, किसमें इतना पावर है, सीने के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
1: क्या बात है,
0: पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, सीधे लड़के के हाथों में इनलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है,
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी।
1: वाह।
0: सुबह उठा तो कान के नीचे, सुबह उठा तो कान के नीचे, गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा, बहुत जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है, बढ़िया गाना।
0: जी जी जी।
1: कैसा रिस्पॉन्स है इस नाटक का?
0: सर जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है। तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं, और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडी हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे, और रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने नहीं बोला हुआ है। तो बहुत अच्छे गाने और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो है, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, एनएमसीसी में भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले, और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
1: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
0: जी जी,
1: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब सीरीज,
0: जी जी, स्वानंद दादा हैं, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया। उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिग्गी। जिग्गी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की को के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन, और उससे राखी बनवा दी। तो वो जिग्गी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा
1: बेचारा,
0: अब वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो, अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से उसके पीछे घूमता है बहुत, मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा, मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविंद सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरु जी रोविंद सर काम कर रहे, आशीष विद्यार्थी जी उसमें काम कर रहे हैं, तो काफी लोग उसमें थे, तो उसमें बहुत ही अच्छा था, उसमें मेरा एक गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था गाना, उसमें सब मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था। अच्छा वो गाना कुछ ऐसा था, वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल विट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है, पिज्जा बर्गर सूप में फंस गए, वो देखो सब लूप में फंस गए, बुजुर्गों ने फरमाया है प्यारे सब मोह माया है, अरे टैटू भी गुदवाया है, डूड सब मोह माया है, काफी ऐसे फन सॉन्ग है, आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या चाय चढ़ा के दूध में फंस गए,
1: वाह वाह,
0: पी के कई तो फूंक में फंस गए,
1: वाह,
0: पिचकारी से खेल रहे थे नजरों की बंदूक में फंस गए,
1: क्या
0: उसके लिरिक्स ऐसे हैं, मतलब
1: वाह वाह वाह। देवेंद्र बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए,
0: जी जी जी,
1: तो फिर कभी मिलेंगे और आगे और बहुत

0: बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भाई,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बहुत सुना है विविध भारती, मैंने सुनता था। आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं,
0: हाँ।
1: कर दिया जा रहा है आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार।
0: बिल्कुल।
1: और बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत इतना नहीं एक रेडियो में।
0: बिल्कुल।
1: मैं बड़ा मिस करता हूँ इसको। और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जिंदगी मैं कहाँ से कहूँ जैसे गाने मैंने सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ मैं। सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ कि मैंने थोड़ा म्यूजिक और जो लोक है, जो फोक है, वो काफ़ी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है। और दूसरा, मैं शहर भी रहा हूँ तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूँ, तो मेरे लिए ये काम कर जाता है। और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है कि वो गाना नहीं सुनता जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आज आपके साथ बैठा हुआ था।
0: सफर है।
1: हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके। और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे स्वानंदादन दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा, विविध भारती से जुड़ा रहूंगा।
0: शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: पर है डूपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ

0: सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए, स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं. जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो. सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए. तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए. और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए. उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है. तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में. हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है.
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती विचारा.

0: द्विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।
0: मंदाकिनी जी, सन 2026 कुछ ऐसे शुरू हुआ है विविध भारती में कि उसकी बात ही कुछ और है। हर महीने एक आयोजन होता है जिसका नाम है सृजन भारती, और ये जो सृजनात्मकता की ये लहर चली है, इसमें रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में एक आयोजन हुआ था जहां दो नाट्य प्रस्तुतियां हम आमंत्रित श्रोताओं के सामने लेकर आए थे।
1: बिल्कुल।
0: और इसमें से पहली प्रस्तुति कौन सी थी?
1: सास बहु और हेलो फरमाइश।
0: जी हाँ, टाइटल से, शीर्षक से ही आपके समझ में आ गया होगा कि कितना मजेदार ये रहा होगा।
1: बिल्कुल, शीर्षक था सास बहु और हेलो फरमाइश। लेखक यूनुस खान, प्रतिभागी कलाकार ममता सिंह, मंदाकिनी जोशी, अनुश्री पाठक, यूनुस खान और जयंत पात्रीकर।
0: आइए सुनते।
2: हेलो फरमाइश।

0: सामने कांच में गिर गया।
1: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: मैं हूँ सामने, मेरे सामने।
3: समझ में नहीं आता इन लोगों का कॉल कैसे लग जाता है। मैं तो 2 साल से कोशिश कर रही हूँ पर मुआ ये फोन लगता ही नहीं। जाने विविध भारती वालों ने क्या सेटिंग कर रखी है। देखना एक दिन मेरा फोन जरूर लगेगा। जरूर
4: मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी।
3: अरे बहू बहू हाँ। मेरी डायरी कहाँ रख दी तूने? कितनी बार कहा है मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। बहू हाँ। डायरी ला कर दे मेरी।
5: माँ जी मैंने नहीं ली ना आपकी डायरी, हाथ भी नहीं लगाया मैंने। वैसे आपको बता दूं सासू माँ, जिस काम के लिए आप डायरी खोज रही है ना वो होगा नहीं। हाँ
3: अरे काली जबान, जब देखो उल्टा ही बोलती है। हुँ? अच्छा बता कौन सा काम है?
5: अरे वही हेलो फरमाइश में फोन लगाने का काम
3: है।
5: अब हम तो क्या, पूरा मोहल्ला जानता है कि सुनीता देवी किसके पीछे पड़ी है।
3: आग लगे तेरी जबान को। इस उम्र में मैं किसके पीछे पड़ूंगी? किसी ऐसे वैसे के पीछे नहीं पड़ी हूँ, ये हेलो फरमाइश है। विविध भारती का हेलो फरमाइश, बड़ी मुश्किल से फोन लगता है इसमें।
5: अरे मुश्किल से फोन लगता है मत बोलिए सासू माँ, ये बोलिए कि फोन लगता ही नहीं है। 3 साल से तो मैं आपको कोशिश करती

0: आगे देख रही हूँ, आज तक तो लगा नहीं और न ही लगेगा, देख लेना। हाँ
1: बकवास बंद कर और मेरा नाश्ता ला। कितनी बार कहा है, भारत की गूंज से पहले नाश्ता, विविध भारती की गीत माला से पहले लंच और हवा महल से पहले मेरा डिनर, दे दिया कर। पर हमेशा देर कर देती है तू।
0: हाँ सासू माँ, मैं देर करती नहीं, देर हो जाती है आपके पुकारने से पहले।
1: दफा हो जा, नौटंकी
0: मेरी जल जाती है।
1: दफा हो जा और जल्दी से नाश्ता ले आ। मैं जरा हेलो फरमाइश में कॉल लगा के देखती हूँ। 02225467।
0: आप जिस नंबर से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं, वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें।
2: द नंबर यू हैव डायल्ड इज बिजी, प्लीज कॉल आफ्टर सम टाइम।
0: कहा था ना हमने सासू माँ कि फोन लगेगा नहीं। वैसे अगर फोन लग भी गया तो आप कौन से गाने की फरमाइश करेंगे ये तो बताओ। अच्छा रुको रुको, सुनो आइडिया, सासू माँ एक आइडिया, एक काम करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, मैं बनती हूँ अनाउंसर और आप बनना कॉलर।
1: खामोश, तुम कैसे बनोगी अनाउंसर?
0: क्यों?
3: और मैं कैसे बनूंगी कॉलर?
0: क्यों क्यों क्यों क्यों
3: क्यों क्यों क्यों क्यों? बड़ा कौन?
0: आप।
3: सास कौन?
0: आप।
3: तो सुनीता कौन?
0: आप।
3: तो अनाउंसर बनेगा कौन?
0: ना ना ना ना ना ना ना, एक मिनट। हाँ एक मिनट, फिर से कर दें। अच्छा बताइए, सुनीता देवी कौन?
1: मैं।
0: और विविध भारती की फैन कौन?
3: मैं।
0: इतने दिलों से कॉल कौन लगा रहा है?
3: मैं।
0: तो कॉलर बनेगा कौन?
1: मैं। करम जली दास पीटी, ऐसा नहीं होगा। देख तू बहू है, बहू की तरह रह।
2: अरे बहू, क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने?
0: पिताजी देखिए ना, अम्मा फिर पगला गई है, वो कहती है उन्हें विविध भारती पर हेलो फरमाइश करना है।
1: न्यूज़ चैनल की तरह बात को तोड़ मरोड़ कर पेश मत किया कर। अम्मा को विविध भारती पर हेलो फरमाइश नहीं करना है, हेलो फरमाइश में फोन करना है, समझी?
2: तुम लोगों से तो बस बहस करवा लो।
0: पिताजी वही तो, बहस क्यों करना, चलिए ना पिताजी प्रैक्टिस करते हैं ना।
2: अरे वकालत की प्रैक्टिस तो हम कब की छोड़ चुके बहू।
0: अरे पिताजी वकालत की प्रैक्टिस थोड़ी करनी है, हेलो फरमाइश की प्रैक्टिस करनी है, प्लीज मान जाइए ना पिताजी, मान जाइए ना। तो चलिए आप दोनों बनिए कॉलर और हम बनते हैं अनाउंसर, ठीक है? हम बनेंगे किम्मी मिश्रा। अच्छा शुरू करते हैं। फोन की घंटी बजी नहीं है अभी तक।
2: ट्रेन ट्रेन
1: ट्रेन ट्रेन
2: ट्रेन
1: ट्रेन ट्रेन ट्रेन।
0: हेलो हेलो, हाँ हेलो फरमाइश, नमस्ते, हम हैं टिम्मी मिश्रा, हम ना आज विविध भारती पर हेलो फरमाइश कर रहे हैं, बताइए आप कौन, कहाँ से बोल रहे हैं, आपको कौन सा गाना सुना है, आपके शहर का मौसम कैसा है, आपके घर में कौन कौन है, आपको कौन कौन से कार्यक्रम पसंद है, आपने अपने शहर में किन दोस्तों के नाम लेना चाहते हैं?
2: चुप, एकदम चुप, खामोश, एक भी शब्द बोला तो ठीक नहीं होगा।
0: पिताजी वो हेलो फरमाइश
2: पति को बोलने देती है ना ससुर को, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश।
3: इसीलिए तो हम कह रहे थे कि हम बनेंगे अनाउंसर, इस घर में हमसे ज्यादा विविध भारती कौन सुनता है भला?
2: तुम बीच में कहां से टपकी? अरे जिंदगी भर तुमने बस फरमाइश की है और हमने पूरी की है, तो आज भी फरमाइश पूरे करने का काम हम करेंगे। ट्रेन ट्रेन
0: ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन।
2: स्टूडियो में धीमी धीमी लाइट, मौसम कैसा है ये नहीं बता सकता क्योंकि कमेंट्री बॉक्स से बाहर का मौसम नहीं दिख रहा, स्टूडियो के बाहर का नजारा यहां से दिखता नहीं है। हाँ तो स्टूडियो में धीमी धीमी लाइट, अगले कॉल के लिए मैदान एकदम साफ, एक इंजीनियर फर्स्ट स्लिप में, एडिटर सेकंड स्लिप में और प्रोड्यूसर गली में खड़ा है और कुछ ही दर्शक मौजूद हैं जिनमें उत्साह की लहर नजर आ रही है। कॉलर नई बॉल के साथ तैयार, इस बीच रिंगटोन बजती है।
1: सुनो जी,
2: हेलो,
1: सुनो जी चुप रहो, बकवास बंद करो, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश, ऐसे करते हैं श्रोताओं से बात। अरे इसे क्रिकेट की कमेंट्री बना दिया है तुमने, सारा दिन बस क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, सारा जीवन क्रिकेट।

0: क्रिकेट, मैं तो तंग आ चुकी हूँ क्रिकेट के इस पागलपन से। इस घर में दो पागल हैं, एक ये है क्रिकेट प्रेमी,
1: एक शानदार बॉल और ये बल्लेबाज क्लीन बॉल,
0: और दूसरी है ये सिनेमा प्रेमी।
2: सौ सौ साल जियो हमारी सासू जी, हमको लागे मौ से प्यारी सासू जी, मेरी सासू माँ।
1: शट अप
0: शट अप। बहुत हो गया, बहुत हो गया, इतने दिनों से कॉल लगा रही हूँ, हेलो फरमाइश में तो कॉल लगता ही नहीं है। मुझे ही पता लगाना होगा कि आखिर चक्कर क्या है, इसीलिए तो मुंबई आ गई हूँ। चुपके से चलती हूँ विविध भारती के अंदर, हेलो फरमाइश के स्टूडियो में, और पता लगाती हूँ कि आखिर चक्कर क्या है। लोग सोचेंगे कि आधी रात को ये बुढ़िया कहाँ चली आ रही है। अरे वाह, अरे वाह, यहाँ तो फोन की रिंग लगातार बजे जा रही है। वाह वाह, उठाऊं क्या है? उठा लेती हूँ, चलो उठाती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश।
3: देवा देवा, मी किती वेळ फोन करत आहे, अरे तुमचा फोन कधीच वाजत नाही, काय झालं? तुम्ही काय केलं तुमच्या मशीनला? तुम्हाला काय लोकांना त्रास द्यायलाच आवडतं का?
0: नमस्ते नमस्ते, हेलो फरमाइश। अरे सुनिए, हेलो फरमाइश हिंदी कार्यक्रम है, समझिए आप, आपको हिंदी में बात करनी चाहिए। आप कौन बोल रही हैं और क्या कहना चाहती हैं आप?
3: अरे देवा, लो हिंदी में बोल देती है मैं, मी मृणमयी, यानी कि मैं मृणमयी बोल रही हूँ जलगांव से।
0: जलगांव से, पानी गांव से।
3: पहले पहले तो ये बोलो, तुमचा फोन कधीच वाजत नहीं, यानी कि तुम्हारा फोन लगता काय को नहीं?
0: क्या
3: मैं कितनी बार फोन करता है?
0: अरे
3: अरे, यानी कि मैं कितनी देर से फोन कर रही हूँ?
0: क्या
3: अरे तुझा मशीन लगाए के लो तू?
0: अरे
3: अरे, यानी कि आपने अपनी मशीन को क्या कर रखा है?
0: ये अनुवाद भी कर रही है।
3: अरे तुम्हारा लोकांना त्रास द्यायला आवडत का? यानी कि लोगों को चिढ़ाने में मजा आता है क्या तुमको?
0: अरे ये तो अनुवादक है। हे भगवान, हे भगवान, दो दो भाषाएं मत बोलिए ना प्लीज। देखिए देखिए, देश भर के श्रोता कॉल करते हैं ना, इसीलिए आपका कॉल नहीं लगता है ना।
3: अरे मेरा ही कॉल क्यों नहीं लगता, यानी कि बाकी सबका क्यों लगता है? क्यों क्यों क्यों?
0: वो क्या है ना,
3: बहाने बनाओ उनका।
0: क्या है ना,
3: यानी कि बहाने मत बनाओ।
0: हे भगवान, हे भगवान, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
3: अरे आधी सांगितलं होतं मी।
0: फिर मराठी?
3: यानी कि मैंने तो पहले ही बताया था आपको।
0: अरे अनुवाद भी कर दिया।
3: मी मृणमयी, यानी कि मेरा नाम है मृणमयी।
0: अरे
3: मृणमयी, मई जलगांव से बोलता है, यानी कि मैं जलगांव से बोल रही हूँ, समझा?
0: समझा समझा समझा। मृणमयी, मृणमयी कितना प्यारा नाम है ना।
3: अरे बाबा, मृणमयी नहीं, मृणमयी।
0: बापरे,
3: आया क्या समझ में? यानी कि मृणमयी।
0: अरे सुनिए सुनिए, मृणमयी मृणमयी ही सही होता है, मृणमयी नहीं।
3: आता तुम्हें मला शिकवाल, यानी कि तुम सिखाओगी मुझे मेरा नाम क्या है?
0: अरे अरे नहीं भाई, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है जी।
3: तो फिर कैसी बात है, यानी कि क्या बोलती है आप?
0: अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आपका दिन कैसा जा रहा है आज?
3: बहुत बकवास, एकदम एकदम बकवास जा रहा है। एक तो मैं दो साल से फोन लगा रही हूँ, फोन है कि लगता ही नहीं है, यानी कि आप लगा है तो तुम बकवास किए जा रही हो?
0: बापरे,
3: कोई अच्छी बात करना नहीं आता क्या तुमको?
0: अरे
3: क्या नाम है तुम्हारा?
0: जी मेरा मेरा नाम, मेरा नाम है समता सिंह।
3: अच्छा, तो तुम हो समता सिंह?
0: जी मैं हूँ समता सिंह।
3: जी जी, क्या लगा रखा है? अरे जब भी तुम फोन इन प्रोग्राम करती हो मेरा कॉल क्यों नहीं लगता? यानी कि तुम ही ने कुछ कर रखा है मशीन में।
0: क्या?

0: अरे एक दिन मैं वहां आ जाऊंगी, यानी कि सर फोड़ दूंगी तुम्हारा वहां आके।
1: अरे बाप रे, अरे रे, सुनिए तो, ऐसे मारपीट की बात नहीं करते हैं। बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
0: अरे अरे गाना तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले बताओ यानी कि मेरा फोन लगता क्यों नहीं है?
1: मुझे क्या पता, मेरा मतलब मुझे नहीं मालूम।
0: अरे तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा? चलो चलो अपने बॉस का नंबर दो।
1: बॉस का नंबर मतलब क्या मतलब?
0: बॉस का नंबर मतलब तुम्हारे बॉस का नंबर, यानी कि तुम्हारे साहब का नंबर।
1: ओ अरे अरे वो सब छोड़िए ना, असल में मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
0: आपने सुना नहीं, पहले अपने बॉस का नंबर दो। बॉस का नंबर?
1: बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक कॉलर है, फोन काट देती हूँ। बाप रे, कितने खतरनाक लोग कॉल करते हैं यहाँ, मैं तो सचमुच में फंस गई। बड़ा ही मुश्किल काम है ये सचमुच। हे भगवान, क्या करूं? फिर फोन बजने लगा। एक काम करती हूँ, फिर उठा लेती हूँ फोन। हेलो हेलो हेलो, फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं?
2: आप बोलती हो तो मिठास घुलती है, आप बोलती हो तो सूरज चमकता है, आप बोलती हो तो हम सुनते हैं, आप बोलती हो तो बोलती ही रहती हो। आवाज की दुनिया के दोस्त समता सिंह को इंदौर से सलीम आलिन वन का सलाम। अब बस एक कर दीजिए काम, हमको दे दीजिए इनाम, गाना सुनवा दीजिए जनाम।
1: जनाम जनाम, ये जनाम क्या होता है?
2: जी वो तो बस तुक मिलाने के लिए जनाम कर दिया। जी जनाब हैगा असल में। हाँ
1: और ये सलीम ऑल इन वन का क्या मतलब है?
2: जी, मैं हूँ ऑल इन वन, यानी मैं ही टेलर, मैं ही प्लम्बर, मैं ही मैकेनिक और मैं ही ड्राइवर।
1: अच्छा,
2: घर वालों जो भी करवाना हो काम, गाना सुनवा दो जनाम।
1: है? फिर जनाम? हदे जी, अरे कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: हाजी सुनना तो बाद में चाहते हैं, पहले तो सुनवाना चाहते हैं। हाँ बोलो। हाँ
1: हाँ
2: सुनाओ।
1: हाँ
2: अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अशकों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के, कर दिया खून देखो मेरे एतबार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया। अच्छा लगा?
1: बहुत अच्छा लगा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। पूरा गाना तो आपने सुनवा दिया, अब हम क्या सुनवाएं आपको?
2: हाँ जी ऐसा कीजिए, मुझे आप कुछ मत सुनवाइए, हमें एक और गाना सुनवा देते हैं आपको।
1: हाँ
2: तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ ही याद आता है, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है,
1: नाता है। अरे मिस्टर ऑल इन वन,
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: सुनिए तो।
2: कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे, दीवानगी ने पागल किया है, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। अजी वाह वाह तो कीजिए, मिटाने।

0: फोन जिसे मैं प्यार करता था। गाना सुनना चाहते हैं कि सुनवाना चाहते हैं ये तक क्लियर नहीं है इसका। ये पता नहीं कहाँ से आ गया ये गायक। ये विविध भारती वालों का काम तो सचमुच बहुत मुश्किल है यार। मुझे तो जरा सी देर में समझ में आ गया कि कैसे कैसे संभालना पड़ता है।
1: ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन,
0: अरे फिर बजने लगे घंटे। अब क्या करूं? फिर लेती हूँ, फिर लेती हूँ, एक कॉल फिर लेती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश। हेलो जी, मैं समता सिंह बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं जी?
2: बोल नहीं रहे हैं, बोल रही हूँ।
0: अरे बाप रे। जी हाँ जी हाँ, हेलो फरमाइश, बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप
2: हेलो फरमाइश से बोल रही हैं क्या?
0: हाँ
2: हेलो फरमाइश। गाना तो हम बाद में सुनेंगे, पहले तो हमें आपसे कुछ बात करनी है।
0: बात? हाँ हाँ कीजिए कीजिए, जरूर कीजिए।
2: मैं पुणे से मनीषा बोल रही हूँ। मुझे अपनी सास की शिकायत करनी है आपके यहाँ।
0: है? सास की शिकायत?
2: हाँ।
0: पर ये कोई सास शिकायत केंद्र नहीं है, ये तो हेलो फरमाइश है।
2: तो क्या हुआ? आप लोग हमेशा कहते हैं ना, कही अपने दिल की बात
0: है,
2: तो आप सुनिए, यही है मेरे दिल की बात। मेरी सास ने मेरे दिल की वाट लगा रखी है खड़ूस कहीं की।
0: अरे अरे अरे अरे, ऐसा नहीं बोलते। हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो, आपकी सास आपका भला चाहती हो।
2: गलत फहमी? अच्छा बताओ, किसकी सास है, आपकी या मेरी?
0: आपकी।
2: तो सच किसे पता होगा?
0: आपको।
2: तो कौन बोलेगा
0: आप?
2: और सुनेगा कौन?
0: आप वो मेरा मतलब मैं सुनूंगी।
2: सिर्फ सुनना नहीं है, हर बात पर हाँ हाँ भी करना है आपको।
0: कहाँ से आ गई है कॉलर? हाँ
2: देखो, अब मुकर नहीं सकती आप।
0: हाँ
2: मेरी सास खड़ूस है, बोलो हाँ।
0: अरे हम हाँ कैसे कह सकते हैं, हमें क्या पता?
2: अभी अभी आपने कबूल किया कि हमें सब पता है, तो बोलो हाँ।
0: हाँ
2: मेरी सास खड़ूस है।
0: हाँ
2: वो मुझे सताती है।
0: अब मैं ये कैसे कह दूँ?
2: चुप चुप, बोलो हाँ, वरना।
0: हाँ हाँ भाई हाँ।
2: उसकी कितनी बुराई की जाए वो कम है, बोलो हाँ।
0: आप गाने की फरमाइश कीजिए ना। हमसे हाँ हाँ क्यों बुलवा रही हैं, कहाँ से आ गई आप?
2: जितना कह रही हूँ करती जाओ, समझी? बोलो हाँ
0: हाँ हाँ हाँ।
2: घर के सारे काम अब तक मैंने किए, अब मेरी सास करेगी, बोलो हाँ।
0: अरे ये मैं कैसे कह दूँ?
2: देखो मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, आपने एक्सेप्ट किया है कि आपको हाँ बोलनी है।
0: हाँ
2: तो आप सारे काम सास से करवाने चाहिए।
0: हाँ हाँ।
2: और उनके हर काम में मीन मेख निकालनी चाहिए कि नहीं?
0: अरे पर ये तो हेलो फरमाइश है बाबा।
2: बकवास मत करो, सीधे बोलो, समझी तुम?
0: अरे हाँ हाँ हाँ
2: हाँ। हर वक्त सास को कोसना भी चाहिए।
0: हाँ
2: बोलो हाँ।
0: नहीं पर हाँ।
2: सास से हमेशा डांट कर बात करनी चाहिए।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ। अरे अरे बाप रे, मैं कहाँ फंस गई, कहाँ फंस गया रे बाबा। हाँ हाँ हाँ।
2: और उन्हें घर से निकाल देना चाहिए ना।
0: अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
2: हेलो
0: भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम ना से रोग हरे से पीरा, ना से रोग हरे से पीरा, जपत निरंतर हनुमीरा, ना से रोग हरे से पीरा, संकटे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन नाम जो लावे। फोन काट देती हूँ, फोन काटने देती हूँ। बड़ी खतरनाक कॉलर थी, कहाँ से आगे चिल्लाती हुई है। मर्ज करम जली नास पीटी। मर गए, ये मैं कहाँ फंस गई थी। ओफो, मैंने तो सोचा था कि हेलो फरमाइश बड़ा ही मजेदार प्रोग्राम है, पर यहाँ तो बाप रे, ये कॉल लूं कि नहीं लूं। हम लेती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं?
2: सासू जी, 8 बज गए हैं, उठ जाइए ना।
0: मैं समता सिंह बोल रही हूँ।
2: समता सिंह? अरे तबीयत तो ठीक है आपकी सासू माँ?
3: आप कौन बोल रही हैं?
2: हे भगवान, क्या हुआ है इन्हें? बताइए कौन सा गाना? अरे

0: कह रही है?
1: बताइए, मैं समता सिंह बोल रही हूँ। आप बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना है?
0: हे भगवान, लगता है पानी डालकर जगाना होगा सासू माँ को। ये लो
2: छपा।
1: अरे ये क्या कर रहा? करप चली नाथ पीटी, ये क्या क्या मेरे ऊपर पानी क्यों डाला तूने?
0: अरे तो क्या करती सासू माँ? हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रही है? समता सिंह है, ये क्या था सब?
1: अरे लगता है मैं कोई सपना देख रही थी।
0: हेलो फरमाइश का सपना?
1: हाँ पता नहीं, मेरा ये सपना कब सच होगा?
3: सौ सौ साल पगलाओ
0: हमारी सासू जी।
3: हेलो फरमाइश में फोन लगाओ
0: सासू जी।
3: सौ सौ साल पगलाओ
0: हमारी सासू जी।
3: हेलो फरमाइश में फोन लगाओ
0: सासू जी।
1: हेलो फरमाइश, मैं समता सिंह।
4: हेलो
5: फरमाइश।
6: था प्रहसन सास बहु और हेलो फरमाइश जिसे यूनुस खान ने लिखा था और उसमें हम और आप शामिल थे। उसके साथ मनुश्री पाठक जी थी, ममता सिंह जी भी थी और यूनुस खान खुद भी थे इसमें। और इस दिन एक और प्रस्तुति हुई थी। हम जानते हैं कि नाट्य प्रस्तुतियां केवल नाटक से नहीं होती, कई बार किसी कोई लेख हो, कोई कविता हो, इससे प्रेरणा लेकर भी नाटक लिखे जाते हैं।
7: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी दिन एक और नाट्य प्रस्तुति हुई थी जो दिनेश चौधरी के लेख का नाट्य रूपांतरण था।
6: जी हाँ।
7: और जिसे प्रस्तुत किया था जाने माने अभिनेता नरोत्तम बेन ने,
6: और उसका शीर्षक था ये
7: उन दिनों की बात है।
6: तो मंदाग्नि जी, ये जो शीर्षक है ये उन दिनों की बात है, असल में उन दिनों की बात है जब हम केवल और केवल सिनेमा देखा करते थे।
7: बिल्कुल
6: हाँ। और सिनेमा देखने के लिए किस तरह से प्लानिंग होती थी, कैसे टिकट निकाला जाता था, और फिर सिनेमा देखने के बाद में कैसे आकर के उसकी बड़ी वर्णनात्मक शैली में हम उसकी कहानी सुनाया करते थे।
7: बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ जयंत जी कि ये उन दिनों की बात है जब तांगे में बैठकर कोई व्यक्ति जोर जोर से अनाउंसमेंट किया करता था, आइए फिल्म देखने आइए, इस तरह की उद्घोषणाएं होती थी।
6: जी, जी,
7: और
6: जी।
7: हम उसको सुना करते थे और उससे प्रेरित होकर फिल्में देखने जाए भी करते थे।
6: चलिए इसका मजा लेते हैं।

0: इस पर आपके शहर में दोबारा आइए आइए ब्रांड न्यू प्रिंट में कल्पना एयर कूल्ड में एक बार फिर से जुबेल थीप देवानंद वहीदा रहमान शानदार संगीत से भरपूर जुबेल थीप। पहली बार देखिए अशोक कुमार को गद्दार के रोल में, आखिरी तक आपको पता नहीं चलेगा कि पिक्चर के गद्दार है अशोक कुमार, तो देखना नहीं भूलिए जुबेल थीप। आपकी विशेष फरमाइश पे ब्रांड न्यू प्रिंट में कल्पना एयर कूल्ड में जुबेल थीप जुबेल थीप जुबेल थीप।
1: ये उन दिनों की बात है जब कोई शहर या कस्बा कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा इससे लगाया जाता था कि वहां कितने सिनेमा हॉल हैं। जिनके पास 8-10 होते वो मेट्रो वाली ठसन मारते, एक से एक सिनेमा हॉल का ऐसा खाका खींचते थे जैसे ताजमहल के प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड भी ना कर पाते हों। गप गोष्ठियों के वो शान होते थे और अमूमन हमेशा ही महफिल लूट ले जाते थे। जिनके पास इतनी ना हो उन्हें बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता, वो जब तब कहते कि भाई हमारे यहां तो बस एक ही टॉकीज है, और उनके भीगे हुए स्वरों से ऐसा प्रतीत होता कि मानो वो मूलतः उन्हीं का कसूर हो। और कुछ बे औलाद किस्म के भी होते जिनके नसीब में एक भी सिनेमा हॉल नहीं बदा होता। लोग दिलासा देते कि फिक्र ना करो भाई, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। अलबत्ता इसके लिए किसी ने कोई झाड़ फूंक करवाई हो ऐसी कोई इत्तला मेरे पास अभी तक तो नहीं है। अपने यहां क्या था कि अपने यहां तो दो थी, अपने यहां दो टॉकीज थी और एक बंद पड़ी थी। कोई पूछता कि तुम्हारे यहां कितनी टॉकीज हैं तो अपन कहते तीन है, एक बंद पड़ी है लेकिन जल्दी शुरू हो जाएगी। दोनों सिनेमा हॉल एक दूसरे के अगल बगल में थे और उनमें जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती थी। ऐसी

कड़ी और सीधी टक्कर कभी कोई भी ठंडा पीने वाली कंपनी हो उनके बीच में नहीं रही होगी। तो कई बार दुश्मन खेमों को झांसा देने के लिए आगामी फिल्म वाले बक्से में पोस्टर किसी और फिल्म का लगाया जाता और खटाक से घोषित दिन से एक रोज पहले ही कोई और फिल्म चला दी जाती। इस छापामार कार्रवाई से शत्रु भौचक रह जाता और नगर में कई दिनों तक इसकी चर्चा बनी रहती और कई बार तो फिल्म को

बनी रहती। और कई बार तो फिल्म को जबरन हिट कराने के लिए कृपया फिल्म के गानों और डायलॉग पर पैसे ना फेंकें, ऐसी उद्घोषणाएं भी चलाई जाती हैं, जिससे यह साबित होता है कि जुमला संस्कृति कोई आज की विधा नहीं है और इसकी जड़ें अपने महान देश में आदिकाल से मौजूद रही हैं। तो दोनों टॉकीज के सामने की ओर मुंह करके खड़े हो जाए तो बाई ओर जो थी वो मुकुट टॉकीज थी और दाई ओर विष्णु टॉकीज थी। नाम से जाहिर होता कि मतलब लोग धार्मिक होते थे, धार्मिक भावना से अपने काम करते थे, तो यही नाम भी वो उस तरह से रख लिया जाता था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि उस समय फिल्म देखना भी अपने आप में धर्म होता था, बड़ी शिद्दत से देखा करते थे फिल्म। इसीलिए फिल्म शुरू होने से पहले आरती बजती थी, मुकुट टॉकीज में बजती थी वो ओम।

पूरे करें। और विष्णु में बसती थी अंबे, तू है जगदंबे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। मतलब क्या माहौल होता था फिल्मों का, आप कुछ सोचिए। अच्छा, सामान्यतः मुकुट टॉकीज में ओल्ड क्लासिकल टाइप की फिल्म रखती थी और विष्णु में नई। टॉकीजों की भी होती ना कैटेगरी, भाई यहाँ ऐसी देखेंगे वहां वैसी देखेंगे, तो लोगों की मानसिकता वैसी बन जाती है। तो सकल वार्षिक घरेलू आय, परिवार के वयस्क अवयस्क सदस्यों की संख्या और तत्कालीन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर तब घरों में सिनेमा देखने का अलग से बजट होता था। हम लोगों को आमतौर पर महीने में एक बार फिल्म देखने की अनुमति होती थी, एक बार देख लिया करते थे, जिनमें से किसी भी प्रकार का संशोधन सामान्य प्रक्रियाओं के द्वारा संभव नहीं था। मेहमान के रूप में जब कभी जीजा फूफा चाचा ताऊ वगैरह आ जाते थे ना, तब बच्चे बड़े खुश होते थे कि अतिरिक्त फिल्म देखने का सुयोग बनेगा, और ये राशि जो है अमूमन उन्हीं की जेब से खर्च करवाई जाती थी। अच्छा, जेब खर्च के चोचले तब नहीं होते थे, लौट कर आए हुए खुले पैसों में से कभी मतलब 5-10 पैसे मिल जाए तो उन्हें जतन से संभाल कर रख लिया जाता था। तब थर्ड क्लास की टिकट जो थी वो 60 पैसे में मिल जाती थी। बात वालों ने शायद मेरे ख्याल से 1 रुपए 60 पैसे इस तरह का भी देखा होगा, तो 60 पैसे में मिल जाती थी। 50 या 55 पैसे इकट्ठे होते ना होते सब्र का बांध टूट जाता। सिनेमा हॉल पहुंचकर किसी दयालु मित्र की तलाश की जाती, जो खुद भी दीगर मौकों पर जरूरतमंद हो सकता था या जिस पर अपना कोई पुराना एहसान होता था, है ना। उसे कहा जाता कि भाई यार 10 सीगम पड़ रही है, मिला दे भाई, मिला दे यार, सुन तो समझना, 10 सीगम पड़ रही, मिला दे यार। और वो क्या करता, वो जो है मान जाता था, और इस तरह से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना के प्रचार का वाहक बन जाता था। हम लोग आमतौर पर सबसे आगे वाली सीट हथियाते थे और इस बात पर हैरानी जाहिर करते थे कि यार लोग ज्यादा पैसे देकर पीछे क्यों बैठते हैं। बड़ा अजीब सा मामला था। तो आरती के तुरंत बाद 16 कुदरती जड़ी बूटियों से युक्त वीको वज्रदंती वाला एड शुरू हो जाता। फिर फिल्म डिवीजन की कोई फिल्म चलती जिसे न्यूज रील कहा जाता था। कई लोग मजा लेते थे, कई लोग बोर होते थे, लेकिन अपन को तो सिनेमा हॉल में ज्यादा से ज्यादा देर रहना होता था ना, तो हम तो भाई मजा ही लेते थे। समझ आए या ना आए कोई बात नहीं है। तो न्यूज रील की लंबाई हॉल में भरने वाले दर्शकों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती थी, और जब हॉल भरने पर भी फिल्म शुरू ना हो तो कोई ना कोई व्याकुल दर्शक ऑपरेटर के चरणों में कोई मोटी सी वजनदार गाली सादर अर्पित कर देता, जिसका अनुमोदन शेष दर्शक सीटियां बजाकर या रोष ध्वनि के साथ करते थे। फिल्म शुरू होने पर पहला दृश्य जब आता था तब सब सांस रोककर उसे देखते थे। यह होता था सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट जिसमें फिल्म की लंबाई दर्ज होती थी। अगर 16-17 रील की फिल्म होती तो वो छोटी मानी जाती थी और आमतौर पर दर्शकों की आ निकल जाती। 21-22 रील की फिल्म होने पर उसका स्वागत सीटियों के साथ किया जाता। कभी कभी मुझे लगता है कि ये सीटी बजाने की कला का आविष्कार हिंदी सिनेमा के मद्देनजर ही किया गया होगा। इसके उद्भव और विकास की प्रक्रिया पर कोई ठोस अध्ययन हो तो इस तथ्य की पुष्टि मतलब की जा सकती है। तो फिल्म शुरू होने के बाद सबके सब किसी सम्मोहन से बंधे एक अलग दुनिया में प्रवेश कर जाते। ये वो चिरपरिचित दुनिया होती जिसे हम केवल अपने सपनों में देख पाते थे। यहां हवा में उड़ते बादल होते, बादलों को चीर कर सफेद अश्व आते, अश्वों के बाजुओं में पंख लगे होते और उस पर बैठे नायक का चेहरा सबको अपना लगता। सिर्फ 60 पैसों में यह दुनिया 3 घंटों के लिए किराए पर मिल जाए तो इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता था। अच्छा, उस समय हर सिनेमा हॉल में ना 2 प्रोजेक्टर नहीं होते थे, कईयों में एक

होते थे तो हर पार्ट के बाद एक इंटरवल होता था, जिसमें दो होते तो वैसा तो सामान्य इंटरवल होता था। तब सिनेमा हॉल में एक ही प्रोजेक्टर मशीन हुआ करती थी, इसीलिए इंटरवल के पहले और बाद में एक शॉर्ट इंटरवल हुआ करता था। पहले शॉर्ट इंटरवल में गेट पास नहीं दिया जाता था। कभी कभी कोई पुरानी फिल्म लगी हो और ज्यादा भीड़ ना हो तो गेट पास भी नहीं दिया जाता। पक्की खबर होने पर हम ऐसे मौकों का लाभ उठा लेते और इंटरवल के बाद आधी फिल्म अधिकार पूर्वक देख लेते। गुलजार साहब की आंधी मैंने ऐसे ही इंटरवल के बाद देखी थी और पता नहीं किस मुहूर्त में देखी थी कि पहले वाली आधी फिल्म आज तक नहीं देख पाया। हाँ, वो कमलेश्वर जी वाला नॉवेल जो है वो पूरा पढ़ लिया है। अच्छा, इंटरवल की कालावधि के दो मुख्य प्रयोजन होते थे। पहला लघु शंका वाला, कई बार इंटरवल के बाद जब कोई गाना आता तो टॉकीज के बगल वाली गलियों में उन मकानों के पिछवाड़े हिस्से में जहां थोड़ा अंधेरा और थोड़ी ओट होती, ये काम अधिकार पूर्वक निपटा दिया जाता। और दूसरा प्रयोजन होता था अपने लिए ठेले वाले से गरम चने या मूंगफली हासिल करना। इसकी गुंजाइश तभी बनती जब फिल्म देखने के लिए पैसे आधिकारिक रूप से घर से स्वीकृत किए गए हों। जेब में पैसे कुछ ज्यादा हों तो जैन होटल के समोसे बड़े मशहूर हुआ करते थे। तो जिस दिन फिल्म के साथ समोसों का भी स्वाद हासिल हो जाए वो अपने लिए बड़ा दिन हुआ करता था भाई। और इसकी याद तब तक बनी रहती जब तक अगला सुअवसर हाथ ना आए। जैन होटल का जिक्र के साथ एक भीड़ भरी इंटरवल से कुछ पहले का किस्सा याद आ गया। पर इस मूल कथा से पहले मतलब एक सहायक कथा पर भी थोड़ी सी नजर डाल देते हैं। ये कथा यूनियन मीटिंग के दौरान कॉमरेड एम एन प्रसाद सुनाया करते थे। सोवियत क्रांति से पहले जारशाही के दिनों में जब वहां गंभीर खाद्यान्न संकट था, लोगों को परखने के लिए लेनिन चौराहों पर टोकरी लेकर बैठ जाते। टोकरी में रोटियां होती, कोई इंसान आकर रोटियां उठा ले तो उसे कुछ नहीं कहते, जो रोटियां मांगता उसे मना कर देते। चल, उनके एक साथी ने इसका सबब पूछा कि भाई क्यों यार तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, जो खुद आकर रोटियां उठा रहा है वो अपने अधिकारों को समझता है, मांगने वाला जो है वो अपने काम का नहीं है। तो मूल कथा यह है कि इंटरवल से ठीक पहले जैन होटल में एक देहाती किस्म के इंसान का प्रवेश होता है। बंदा आता है, बढ़िया दो तीन किस्म की मिठाइयां खाता है, फिर दो समोसे मंगाए जाते हैं, एक समोसा और मंगाया जाता है, आखिरी में चाय आती है। चाय भी बड़ी इत्मीनान से सुर्र सुर्र करके पी जाती है। जब तक कि इंटरवल की घंटी ना बज जाए तब तक घंटी बजते हुए बंदा उठता है और कितने हुए कहते हुए काउंटर तक पहुंचता है। इधर बेरा अपना हिसाब लगा रहा है, उधर सिनेमा वाली भीड़ टूटने को है। बस यही संक्रमण काल है। ठीक इसी क्षण वह पूरे आत्मविश्वास के साथ 200 मीटर की लंबी दौड़ लगाकर आंखों से ओझल हो जाता है। सिनेमा वाली भीड़ काउंटर पर पहुंच चुकी है और काउंटर पर बैठे चश्मे वाले सेठ को सूझ भी नहीं पाता कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। भागने वाले ने गालियां तक बकने का मौका नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि जैन होटल का सेठ लेनिनवादी नहीं है। अच्छा, इंटरवल से हॉल में लौटने की भी कुछ तयशुदा परंपराएं थीं। सिने पर्दे की मायावी रंग बिरंगी रोशनी बालकनी वाली सीटों से कुछ ही ऊपर से आती थी। नाचती खेलती कई रंगों वाली रोशनी मुझे बहुत आकर्षित करती थी और कई बार सिनेमा देखना छोड़कर इन्हीं रंगों में खो जाया करता था। रोशनी के निकास के लिए दीवार पर कुछ छिद्र बने होते थे। छिद्र के उस पार की दुनिया मेरे लिए बड़े कौतूहल का विषय थी। मैं सोचता था कि यार वो कौन सा जादू है जो पर्दे पर ऐसी दुनिया रच देता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। उस कमरे के दरवाजे पर अंदर आना मना है, ऐसी इबारत होती। और मुझे अफसोस है कि मैं अपने जीवन में बड़ी बड़ी चक्रियों पर चलती फिल्मों की रील की उस तेज गति की नंगी आंखों से नहीं देख पाया जो पर्दे पर जीवन रचते थे। तो यहां से फैलने वाली रोशनी और पर्दे के बीच जब किसी दर्शक का सिर आ जाता तो एक बड़ी सी काली छाया उभर आती। कोई विनोदी दर्शक हॉल में मौजूद होता तो चिल्ला कर कहता, अबे बैठ जा। बेचारा अनजान छाया निर्माता झेप सा हो जाता, पर वो मट्ठर हुआ तो सिर हटाकर रोशनी के आगे थोड़ी देर के बाद अपना पंजा फैला देता और उसकी उंगलियां पर्दे पर नाचने लगती। इस कार्रवाई के जवाब में अक्सर मां की गाली आती और कभी कभी जवाब में दुगनी आवाज के साथ सूद सहित वापस भी लौटाया जाता। ये संपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम एक समृद्ध परंपरा के तहत आम जनता के मनोरंजन के लिए होता और तनाव में आने के बदले लोग हंसने लगते। फिर हंसी की आवाज सीटियों के शोर में खो जाती और लोग वापस फिल्म पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगते। अच्छा, फिल्म देखने वालों में कुछ दर्शक ऐसे भी होते थे जो फिल्म देख चुके होते थे। वो अपने साथी को आगे की कहानी सुनाने का प्रयास करते और बदले में अगल बगल वाले की डांट भी खाते रहते थे। ए चुप बे,
लेके

क्या इसको समझ नहीं आ रहा क्या इसको? मगर उन बेचारों से रहा नहीं जाता और थोड़ी देर में फिर इसी काम में लिप्त हो जाते। अच्छा कुछ अमजद खान साहब की जहमत से बचाने के लिए तेरा क्या होगा कालिया, या फिर अब गोली खा, जैसे संवाद गब्बर सिंह से पहले ही कह डालते। एक दशक तो ऐसा था जो सस्पेंस वाली फिल्म में लोगों का मजा खराब करने के लिए पहले ही जोर से चिल्लाकर मर्डरर का ऐलान कर देता। एक बार इसी वजह से उसकी अच्छे से कुटाई भी हुई। अच्छा शोले एक बार दिवाली के समय लगी, इधर डाकुओं के बंदूक से गोली निकलती और उधर बालकनी में बम पटक, मतलब यहां बंदूक से गोली निकली वहां बालकनी में बम फूटा। गेट कीपर दौड़कर अंदर आता पर अंधेरे में किसे पकड़ता भाई। कुछ दर्शक बड़े पिन्ने किस्म के होते और जरा सा सीरियस सीन आने पर सुबकने लगते, और कुछ कंटिन्यूटी फॉल्ट पकड़ने के एक्सपर्ट होते और चिल्लाकर कहते, अबे समुद्र में कूदा तो शर्ट लाल थी अब नीली कैसे हो गई। कुछ दर्शक जो होते वो जंप और जर्क पकड़ने के विशेषज्ञ होते और ऐसा होने पर फौरन चिल्लाकर कहते, अबे काट दिया। उधर से रहस्यमयी रोशनी वाले छिद्रों के पीछे से आवाज आती, अबे रील ही ऐसी आई है साले, हाँ मुझे क्या बोल रहा है, चुपचाप देख। सिनेमा देखने के लिए टिकट लेना जरूरी होता था और टिकट लेने के लिए लाइन लगाना कोई आसान काम नहीं होता था। बचपन में देखा भाई वो सिनेमा की लाइन जो हुआ करती थी बड़ी खतरनाक होती थी, और साइकिल स्टैंड से साइकिल निकालना तो और भी कितना मुश्किल काम होता था। तो जो कभी सिनेमा की लाइन में नहीं लगा समझो उसका जीवन अकारण चला गया। कुछ लोग जो थे मतलब पहला दिन और पहला शो इस सिद्धांत पे यकीन रखते थे, भैया सिर पर कफन बांध कर निकल पड़ते थे। उचित सूचना के अभाव में माए ऐसे वीर बालकों की आरती भी नहीं उतार पाती थी, मतलब कि बेटा जा रहा है शहनशाह की टिकट लेने या उसकी टिकट लेने, रुक जा तिलक लगवा जा, है ना, आएगा भी या नहीं आएगा, दबकर निकल ना ले कहीं, बड़ा रिस्क रहता है ना। आरती भी नहीं उतार पाती थी, और ये काम कभी कभी सुबह सवेरे भी हो जाता था जब किसी बहुप्रतीक्षित फिल्म के रोजाना 5-6 खेल होते थे। सिनेमा की लाइन के लिए ठंड गर्मी और बारिश सभी मौसमों को बहादुरी से मुकाबला किया जाता। गर्मी की छुट्टियों में भीड़ कुछ ज्यादा होती। पहला दिन पहला शो वाला नौजवान कतार बनाने के लिए लगी हुई रेलिंग पर सबसे पहले सवार हो जाता था। इतनी सकरी गली होती थी, मतलब थर्ड क्लास वाले जो है ना, मतलब उसमें तो एक ही एक आदमी जाएगा, उस पे चार चार लगते थे भाई साहब, ऊपर से तैर के जा रहे हैं और जाकर जो है टिकट ले रहे। बाकी बालकनी का तो अपने अलग माहौल था, वो फैल के जाओ अमीर आदमी है भाई, कार से आए हैं, नहीं स्कूटर से, उस समय कार बड़ी चीज थी। तो सिनेमा की लाइन के लिए ठंड गर्मी और बारिश सभी मौसमों को बहादुरी से मुकाबला किया जाता। गर्मी की छुट्टियों में कुछ ज्यादा ही होती। पहला दिन पहला शो वाला नौजवान कतार बनाने की लगी हुई रेलिंग पर सबसे पहले सवार हो जाता था। उसका एक पैर बुकिंग विंडो पर और दूसरा सामने वाली रेलिंग पर होता। एक हाथ से वो रेलिंग का सहारा लिया होता और कमीज को उतार कर दूसरे हाथों पर ऐसा कंधे पर लटका लेता। अंदर बनियान हो भी सकती थी और नहीं भी, मतलब कुछ तय नहीं होता था। बनियान ना होने पर भी वो बीच बीच में शर्ट से बदन को पोंछ लेता था, जिसके दो फायदे होते थे। पसीने से शर्ट के भीग जाने के कारण पंखा करते हुए वो ठंडी हवा फेंकता था, और अंदर हॉल की सीलन भरी गर्मी में इत्र फुलेन का काम करता था। तब आज के समय वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता तो इसके रिपोर्टर आकर लोगों के मुंह में माइक ठूंस कर और पूछते कि आपको लाइन में लग रहा है, कैसा लग रहा है, नहीं नहीं आपको कैसा महसूस हो रहा है। शर्ट का पंखा हिलाता हुआ नौजवान कैमरे के आगे हिलाता हुआ कहता, जी तकलीफ तो है पर कोई बात नहीं, आगे सब ठीक हो जाएगा, और हो भी गया। अच्छा सिनेमा की लंबी लाइन देखकर कुछ कमजोर लोगों के दिल टूट जाया करते थे। कुछ ऐसे नाजुक दिल भी होते थे जो परिस्थितियों का बहादुरी पूर्वक मुकाबला करने के बदले कायरता पूर्वक ढंग से पिक्चर देखे बगैर लौट जाते। कुछ लोग ऐसे मौकों पर नारी शक्ति की उपयोगिता को रेखांकित करते और घर से आई महिलाओं को लेडीज वाली छोटी लाइन में लगा देते। अच्छा महिलाओं की लड़ाइयां देखी आप लोगों ने कभी टिकट के लिए, मतलब पुरुष क्या लड़ते होंगे वो बाल पकड़ के, जिसको मैं एमपी में कहते झोतरा। सिनेमा देखने की इस जंग में सब जायज था और कभी कभी नए आविष्कारिक उपायों का सहारा लिया जाता। एक बार जब विलंब से पहुंचने के कारण लंबी लाइन देखकर अपन ने रणभूमि से लौटने का मन बना लिया तो अपने एक मित्र ने इस बुजदिली के लिए खूब दुत्कारा। उसने मुझसे मेरे हिस्से के पैसे मांगे और जाकर लाइन के आसपास खड़ा हो गया। खिड़की खुल चुकी थी। थोड़ी देर में मैंने अपने मित्र को सज्जन से बातचीत करते हुए पाया, और पता नहीं उसने ऐसा क्या मंत्र फूंक दिया कि हड़बड़ाए हुए लाइन से अलग हुए और उनका स्थान मित्र ने ले लिया। टिकट लेकर हम अंदर हो गए। मित्र ने कुटिल मुस्कुराहट के साथ बताया कि वो सज्जन ग्यारसी लाल हैं, कोऑपरेटिव में बाबू हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वो मुझे नहीं जानते। मैंने जाकर उनसे कहा कि चचा आपका नाम ग्यारसी लाल है ना, उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कहीं आपको कोई ढूंढने आया था, घर में

किसी की तबीयत बिगड़ रही है, ठाके लगाते हुए मैंने कहा कि अभी पलट कर आएंगे और तुम्हारी तबीयत बिगाड़ देंगे। तब तक 16-17 जड़ी बूटियों वाला वीको वज्रदंती वाला एड शुरू हो चुका था। अच्छा, कुछ भ्रष्टाचार का सहारा लेकर ब्लैक में टिकट लेते थे। उन दोनों ब्लैक टिकट की चर्चा ब्लैक मनी से ज्यादा होती थी, जैसे इन दोनों चुनावों के रुझानों का आकलन सट्टा बाजार से किया जाता है। उन दोनों बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन इस बात से पता चलता था कि टिकट कितने में ब्लैक हो रही है। कई बार सिने मालिकों पर ब्लैक करने वाले इसे मिली भगत करने का आरोप लगते थे। आत्मनिर्भरता की दिशा में ये उन दिनों वैसा ही मशहूर रोजगार हुआ करता था जैसा इन दिनों पकौड़े बेचना। नागपुर की लक्ष्मी टॉकीज में जब मैंने चाचा भतीजा फिल्म देखी थी तो उसमें नायक धर्मेंद्र भी इस सम्मानित पेशे में लिप्त हुआ करते थे। ब्लैक से लोगों ने बिल्डिंगें खड़ी की हैं, एक एक फिल्म से लोगों ने बिल्डिंग खड़ी की है, वो दौर हुआ करता था। सबसे बड़ा धक्का तब लगता था जब आप लाइन में खड़े हो और अचानक हाउसफुल की तख्ती के साथ खिड़की बंद हो जाए। शायर ने शायद इसी मौके के लिए कहा होगा कि किस्मत की खूबी देख ये टूटी कहां कमंद, दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया। कभी कभी ऐसे मौकों पर गेट कीपर से दोस्ती बड़ी काम आती थी। राजा हुआ करते थे भाई गेट कीपर, बात नहीं करते थे किसी से सीधे मुंह, भले ही आपके मोहल्ले में रह रहे हो, पता है कल पहुंचेगा बोलेगा टिकट चाहिए। गेट कीपर से दोस्ती ही बड़ी काम आती थी। तब के गेट कीपर का रुतबा आज के एडिशनल कलेक्टर से ज्यादा होता था। थर्ड क्लास में सीट नंबर नहीं होता था, भीड़ ज्यादा होने पर लकड़ी की अतिरिक्त बेंच लगा दी जाती थी। गेट कीपर इनमें हितग्राही को समायोजित कर लेता था, बदले में हितग्राही उसे कम से कम टिकट दर से आधी और अधिकतम श्रद्धानुसार किंतु विज्ञापित मूल्य से कम की मुद्राएं अर्पित करता था। इससे परस्पर सामाजिक सौहार्द में वृद्धि भी होती थी। तो हमारी शहर का जबलपुर का ये वाक्य है, गेट कीपर ऐसा जो है अपना टॉर्च लेकर आता था, अब बेंच पर बैठने की व्यवस्था है, बैठा दिया है, चार ही बैठ सकते हैं, पांचवा नहीं बैठ सकता, लेकिन वो बैठाएगा। अब जो है वो टॉर्च लेकर पहुंचा है वहां पे, हाँ चल खिसक खिसक खिसक, अरे कहाँ खिसके यार भैया, बैठ तो गए यार, अब कहाँ बैठेंगे यहाँ पे, अरे क्या बैठने दे, अरे कहाँ बैठा, पैसा तो दे दिया, बैठने दो ना, अरे जगह का भैया देखो हम एक उस पर बैठे हैं यार, अरे खिसक खिसक, नहीं खिसकता था तो क्या गेट कीपर क्या करता था, वो खिसकाने के बाद कितने टेक्निक वाले होते थे, गेट कीपर पर जाता था, खिसक बनेगी जगह, अरे नहीं बनेगी यार भैया, गेट कीपर जो होता था वो बेंच में, ये बेंच है तो बेंच के उसमें ऐसा बैठता था, दीवार से अपने दोनों पैर सटाता था, उसमें ताकत लगती थी, सबसे साइड वाला जो है वो नीचे जिसको लेकर आया उसको यहां पर बैठा दिया। तो ये वाले मामले हुआ करते थे। तो इन पंक्तियों के लेखक का सौभाग्य ये रहा कि वो सिनेमा के पोस्टर लिखने वाले पेंटर का शागिर्द था। उस्ताद जो मूलतः क्रिएटिव आर्टिस्ट थे और 30 रुपए मासिक वेतन के साथ जब कभी मन हो मैं शागिर्द फिल्म देख लेते थे, लेने की शर्त पर पोस्टर बनाने का काम करते थे। मूडी थे, जब तक 5-6 बार बुलाया नहीं आता हाल की ओर रवाना नहीं होते थे, पर एक बार निकल गए तो मन लगाकर पोस्टर बनाते थे। कभी कभी फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के सिर के पीछे तख्ती लगाकर कटआउट जैसा बना दिया था, जिसकी नगर में उस समय बड़ी चर्चा थी। बॉबी के लिए उन्होंने गजब की कैलियोग्राफी की थी। उनके साथ हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में उस्ताद शागिर्द कोटे में देखी, आधी अधूरी मिलाकर जितेंद्र की लोक परलोक मैंने कम से कम 12 बार देखी होगी। फिल्म देखने के लिए हम 9 से 12 वाला सेकंड शो चुनते थे क्योंकि भीड़ इसमें कदरन कम होती थी। 6 से 9 वाला फर्स्ट शो प्राइम टाइम होता था। महिलाएं दोपहर के भोजन के बाद रात को खाने की तैयारी के बीच 3 से 6 वाला मैटिनी शो चुनती थीं। 4 खेल होने पर स्कूल छोड़कर आने वाले प्रतिभाशाली बालक गुरुवार को 12 से 3 वाला शो भी देखते थे। इस दिन के चयन का यह कारण होता था कि स्कूल में इस दिन आम कपड़ों में आया जा सकता था। यह योजना खास तौर पर उन गरीब छात्रों के लिए थी जिनके पास यूनिफॉर्म की एक ही जोड़ी हो और वो उसे धो ना सकें। पर जैसा कि दीगर सरकारी योजनाओं में होता है, इस योजना का लाभ भी समान रूप से सभी उठाते थे और सिविल ड्रेस में होने के कारण होनहार छात्र सिनेमा के टिकट से वंचित होने से बच जाते। आन मिलो सजना, धड़कन, एक फूल दो माली फिल्मों के नाम मुझे अच्छी तरह से याद है। 7-8 बरस की उम्र में देखा होगा या शायद इससे पहले। फिल्म का कोई दृश्य याद करने की कोशिश करता हूं तो कुछ याद नहीं आता, कहां देखा यह भी याद नहीं। एक तो दृश्य आंखें बंद करने के बाद थोड़ी देर को लहराते हैं फिर गुम हो जाते हैं। ब्रीफकेस से निकलने हुए नोट को छोड़ते हुए दिखाई देते हैं, कहीं कोई गहरे कुएं में गिर गया है, सब कुछ बस धुंधला सा है। आंखों के आगे कोई साफ तस्वीर नहीं झलकती, जो साफ दिखता है वो संपूर्ण रामायण का दृश्य है। हनुमान की भूमिका में दारा सिंह है, रावण के दरबार में आसन नहीं मिलता तो अपनी पूंछ से गुंबद जैसा बनाकर उसी में बैठ जाते हैं। अशोक वाटिका में मचाए उत्पात से रावण क्रोधित है,

अब ये मैंने नोट किया है कि वानर जो है फल खाते कम है उत्पाद ज्यादा मचाते हैं। मित्र राजेंद्र चंद्रकांत रॉय कहते हैं कि जिसे हम उत्पाद कहते हैं वो वानरों की सदाशयता है। बंदरों की हिरण से अच्छी दोस्ती होती है। कोई जानवर शिकार पर आए तो वे हिरणों को आगाह कर देते हैं। उनकी उछल कूद इसलिए होती है कि पत्ते झरे और हिरण उसे चरें। यह उनकी आदत हो जाती है। बहरहाल बात संपूर्ण रामायण फिल्म की हो रही थी जो मेरे जहन में स्पष्ट रूप से अंकित है। यह 70 के मध्य काल होगा। उन दिनों चंबल के बिहड़ों में डाकू काफी मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए वह स्वभावतः फिल्मों में भी प्रचुर मात्रा में दिखते थे। पान सिंह तोमर के आते आते डाकुओं ने अपना ठिकाना बदल लिया और वो दिल्ली मुंबई में शिफ्ट हो गए। कुछ NRI किस्म हो गए और सरहद पार ठिकाने बदलने लगे। जाहिर है कि डकैतों के घिसे पिटे प्राचीन तरीकों से चिपटे हुए नहीं रह सकते थे। 70 के दशक वाले पुराने डाकू दो किस्म के थे, जैसे कि हिंदी पट्टी में रंगकर्मी कलाकार वगैरह होते हैं, एक प्रोफेशनल और दूसरे एमेच्योर। प्रोफेशनल डाकू है वो गांव या शहर आकर डकैती करते थे, अपनी ड्यूटी करने के बाद चुपचाप बिहड़ लौट जाते थे। वो थोड़ा संजीदा किस्म के होते थे और अपने पेशे की गरिमा को बनाए रखते थे। और एमेच्योर डाकू जो होते थे उनकी दिलचस्पी डकैती में कम, नायिकाओं को छेड़ने में ज्यादा होती थी। वो थोड़े छिछोरे किस्म के होते थे और जंगल, बाग, पनघट, बावड़ी, नदियां इन तरह के आसपास में मंडराते रहते थे। ऐसा मालूम होता था कि डकैती इनका अंशकालिक कार्य है। अलबत्ता दोनों ही किस्म के डाकुओं का यूनिफॉर्म एक ही होता था, नुकीले जूते, सफेद धोती, गहरे रंग का कुर्ता और कुर्ते पर कारतूसों वाली आड़ी बेल्ट, हाथ में दुनाली। अच्छा, कुछ शौकीन मिजाज डाकू रंगीन पगड़ियों या साफे का भी शौक फरमाते थे। ये आवागमन के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। इनके अलावा घोड़ों की सवारी करते हुए आम जीवन में मैंने सिर्फ बारात के साथ दूल्हों में देखा है। कारण शायद यह हो कि प्रकारांतर में वो भी डाकू ही होते हैं और दहेज के रूप में मोटी रकम और माल असबाब की डकैती करते रहते हैं। लेकिन डाकुओं की एक बात है भाई, डाकुओं की जितनी फिल्म देखो हर फिल्म में भाई संगीत प्रेमी मिलते हैं। ये मतलब क्लासिकल सुनते हैं, मतलब अगर सही दिशा इनको मिली होती तो सोचो, मतलब संगीत की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमाते वो लोग, अच्छे ट्रेंड सिंगर म्यूजिक फील्ड का कुछ ना कुछ होते। मतलब म्यूजिक के कितने अच्छे अच्छे गाने हैं ना, जब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं नाचूंगी, है ना, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, दर्शन भी है और दुआ देके परेशान भी हो जाती हूँ, क्या बात है। चलो तो जंजीर फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन जी नाम, उनके बिना तो नाम इंडस्ट्री का कैसे। इसके बारे में भी एक बात बड़ी वो है, हम जब छोटे थे जब फिल्में नहीं भी देखते थे, कोई पूछता था फेवरेट एक्टर कौन है तो बोलते थे अमिताभ बच्चन। ये नाम इतना वृहत हो गया है, हम बोलते थे अमिताभ बच्चन। जिसने फिल्म नहीं भी देखी है, मनोरंजन जगत से सिनेमा से नहीं भी मामला हो जिनको, वो नाम लेता था अमिताभ बच्चन। तो जंजीर फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन के आगमन ने अपनी छोटी छोटी फिल्मों में डाकुओं की मोनोपाली को तोड़ा। अमिताभ युवाओं के क्रोध और गुस्से के प्रतीक थे। जंजीर के बाद दीवार में उनका गुस्सा और गाढ़ा हो जाता है और वो कभी कभी और सिलसिला में रोमांटिक हो जाते हैं। नटवरलाल और याराना में कॉमेडी भी करते हैं। उसके बाद फिर सिनेमा की एक नई धारा उभरकर सामने आती है, अर्धसत्य का पुलिस इंस्पेक्टर। जंजीर के पुलिस इंस्पेक्टर से ज्यादा तार्किक और वास्तविक लगता है और गुस्सा इतना है कि रामा शेट्टी का गला दबोच लेता है। जाने भी दो यारो जैसी क्लासिक फिल्म आती है जो संभवतः हिंदी की एकमात्र सटायर फिल्म है। बाद में और बनी होंगी लेकिन है ये फिल्म दर्ज फिल्म है। ये हिंदी सिनेमा के राग दरबारी के रूप में सामने आती है। गोविंद निहलानी, सई परांजपे, केतन मेहता, MS सत्यू, सुधीर मिश्रा, आनंद पटवर्धन, नसीर, ओम पुरी, पंकज कपूर, फारूक शेख, स्मिता पाटिल, शवाना आजमी वगैरह, ये सब मिलकर कुछ ऐसा रचने लगते हैं कि हिंदी सिनेमा की बनी बनाई स्थापनाएं अवधारणाएं धराशायी होने लगती हैं। पर ये लंबे समय तक नहीं चल पाता। टेक्नोलॉजी उधर घात लगाए बैठी होती है। टेलीविजन और VCD का आगमन बॉक्स ऑफिस की कमर तोड़कर रख देता है। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल जो है वो सूने होने लगते हैं। हाउसफुल वाली खिड़कियों पर काई जमने लगती है। सिनेमा हॉल के मालिक कोई कला प्रेमी तो है नहीं कि वो धरोहर को बचाने की फिक्र करें। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मौके की जगह है। हॉल मॉल में बदल जाते हैं। बेशक पर्दा यहां पर भी है पर वो 60 पैसे वाला थर्ड क्लास नहीं है वो माहौल, वो सिनेमा जीने वाला। वो 60 पैसे वाला दर्शक भी नहीं है जो आखिरी आदमी की श्रेणी में आता है।
उसकी अनुपस्थिति में उसका कंटेंट, उसका सरोकार, उस

0: की चिंताएं, उसका देश, समाज सब गायब हो जाता है। यहां वो नया दौर नहीं चल सकता जो तांगे वालों को मोटर गाड़ी वाले की बराबरी पर लाकर खड़ा कर देता है। यहां थ्री इडियट्स ही चल सकती है जो जरूरत पड़ने पर गरीब का मजाक उड़ा सके। खैर, सिंगल स्क्रीन सिनेमा वही दौर था, दौर की बात थी। हम भाई मिस तो करते हैं सभी लोग, क्योंकि वो थर्ड क्लास था, लाइन में लगना, वो जिया हुआ समय। सिनेमा देखना भी उत्सव हुआ करता था। याद आता है रिश्तेदार जब आया करते थे, अगर सिनेमा हॉल घर के पास हो तो पहले वो घर आते थे, साइकिल या अपनी जो भी गाड़ियां हो वो रखा करते थे, घर आकर पहले चाय नाश्ता करते थे, उसके बाद सिनेमा देखने जाते थे, फिर वापस आते थे, अपना वाहन लेकर जाते थे, वैसा जुड़ाव बना रहता था। लेकिन बाजार के साथ साथ जो है वो चीज़ें नहीं बची। तो बस यही है, ये शेयर करने का मतलब यही था, एक दौर जो है हम फिर से जी लें, याद कर लें, चीज़ों को आनंद लें। बाकी सिनेमा का क्या है,
1: हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। लैला मंजू रोजाना चार खेलों में आपसे अपने नजर

0: ये उन दिनों की बात है, तो उन दिनों की बात का मजा हमने लिया
1: जो दिनेश चौधरी के लेख का नाट्य रूपांतरण था।
0: जी हाँ,
1: और जिसे प्रस्तुत किया था जाने माने अभिनेता नरोत्तम बेन ने,
0: और उसका शीर्षक था ये उन दिनों की बात है। इसी के साथ समय हो रहा है आज के विविधा कार्यक्रम के पूरा होने का।
1: उम्मीद है आज का विविधा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आप अपनी प्रतिक्रियाएं विविध भारती की फेसबुक पेज पर देना नहीं भूलें।
0: इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए जयंत पात्रीकर
1: और मंदाकिनी जोशी को नमस्कार।
2: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपने आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक आठवें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मोल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्ज़ोंग इकाई ने आज आकाशवाणी @90 मैराथन का आयोजन किया। कर्ज़ोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, TB, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को

0: ऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

संस्कृत भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी, अभिमान फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर और मनहर की आवाजों में। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

आप सुन रहे थे आकाश दीप फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला चित्रगुप्त ने। गंगा की लहरें इस फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में।

0: एस डी वर्मन की तर्ज थी आशा भोसले की आवाज। बम्बई का बाबू फिल्म का ये गीत था। रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी।
1: सुनिए
2: कहिए सुनिए एक खुशखबरी।
3: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: भारतीय प्रसारण सेवा को देंगे विराम। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंग।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: हेलो
3: सुनो टेलीफोन नंबर
4: माय नंबर इज
5: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
6: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की।
7: नहीं अछूता हो जिस
6: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
8: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
9: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
8: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
9: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
10: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
11: माटी की महक खेतों की हरियाली, लोक गीतों में बसती है अपनी खुशहाली। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रंग में। लोक धुनों की मिठास और मिट्टी की खुशबू लेकर हम हाजिर हैं अपने इस कार्यक्रम में। बड़ा ही सुंदर सा चित्रण लोक

नदी की लहरों जैसी चंचलता है हमारे लोक गीतों में, प्रेम की मिठास है हमारे लोक गीतों में। महुआ की खुशबू, आम की छांव, सभी कुछ बसता है हमारे लोक गीतों में। हर फंक्शन, हर त्योहार के लिए कुछ ना कुछ खास है हमारे लोक गीतों में, जो हमें हमारी लोक संस्कृति से जोड़ता।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

शीला बनर्जी और सखियों की आवाज में आपने सुना ये प्यारा सा लोकगीत और अगला लोकगीत बिल्कुल भावुक करने वाला। विवाह में सिंदूर पे जो गीत होते हैं वो बहुत ही दिल को छू जाते हैं और बड़े ही भावुक होते हैं। जो भी सुनता है उसके दिल में वो गीत उतर जाते हैं और आंखें नम हो जाती।

लोक रंग अब यही समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। दिन के ठीक 1 बजे हैं। आइए सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
3: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़िया, अयोध्या, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 बजे के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
4: जिंदगी की तपिश को मुस्कुराकर झेलिए साहब, धूप चाहे कितनी भी हो समंदर सूखा नहीं करते। जी बिल्कुल, समंदर तो नहीं सूखते, लेकिन इस वक्त धूप में निकलना कहीं से भी शरीर सूखने के बराबर होगा। भाई आप गए नहीं कि आपका गला सूख जाएगा, और धूप लगने की वजह से तमाम तरह की दिक्कतें आपको आ सकती हैं। तो कोशिश करिए कि धूप में ना निकले, और अगर निकलना है तो पूरी सावधानी से निकलिए। पानी की बॉटल साथ रखिए, कुछ सर ढक कर चलिए, पूरे शरीर को आप कवर अप करके चलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। भाई हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, तभी तो आप हमारे कार्यक्रमों को सुन सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे लाइफ को भी। तो फिलहाल अभी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। आप हमारे इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी कहीं भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों डायल कीजिए हमारे नंबर को और करिए हमसे बातें, कहेंगे कुछ अपनी, सुनेंगे कुछ आपकी और सुनवाएंगे आपकी पसंद के गीत भी। तो फिलहाल हमारे एक कॉलर हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में कुछ बताएं हमारे श्रोताओं को।
5: अभी सर मैं बोल रहा हूँ।
4: अनसुया जी, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा
5: जी से बोल रहा हूँ
4: जी। जी जी, कौन सा गीत सुनेंगे अभी आप?
5: दाता पिक्चर सुना दीजिए, बाबुल के भी घर।
4: बाबुल का ये घर?
5: हाँ, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है।
4: अच्छा जी, कैसे लगते हैं हमारे कार्यक्रम आपको? रेडियो सुनकर आपको कैसा लगता है?
5: आपके कार्यक्रम तो बहुत अच्छा लगता है, मगर मध्य प्रदेश में आपके कार्यक्रम सुनाई नहीं देता।
4: अच्छा, मध्य प्रदेश में सुनाई नहीं देता।
5: हाँ, मगर अच्छा दिन रहता हूँ रघुनाथ की यात्रा में।
4: जी जी,
5: अभी गांव आया हूँ मध्य प्रदेश, 15-20 दिन हो गया।
4: जी जी,
5: कार्यक्रम सुनाई नहीं देता, मगर अंदाज बस फोन लगाता हूँ आपकी बात होती है
4: और लग जाता है। आपकी कॉल तो पहले भी लग चुकी है हमें लगता है अनसुया जी।

0: आपकी कॉल तो पहले भी लग चुकी है।
1: मध्य प्रदेश बीमा जिला से बोल रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद आज फोन लगा है।
0: चलिए, आज तो लग गई ना आपकी कॉल। बड़ी खुशी
1: आपका
0: हुई
1: दिन
0: आपसे
1: बहुत
0: बात
1: प्यारा
0: करके।
1: है।
0: आपको कैसा लग रहा है कि कॉल मतलब कनेक्ट भी हो गई, और इतने दिनों से आप प्रयास कर रहे थे, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लगता है। आपकी बात हो जाती है तो बहुत मन खुश हो जाता है।
0: जी, हमको भी बहुत खुशी होती है। चलिए, हम आपकी पसंद का गीत आपको सुनवा रहे हैं।
1: नमस्ते
0: धन्यवाद
1: मैम।
0: कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बिल्कुल दिल का टुकड़ा होती हैं बेटियां और इन्हीं से रौनक होती है घरों में। फिलहाल तो हमारे कार्यक्रम की रौनक आप हैं और जब आपकी कॉल आती हैं और आपसे बातें होती हैं तो हमारा कार्यक्रम और भी अच्छा होता है, लोगों को पसंद भी आता है। तो हमारे कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आपको हमारा नंबर तो डायल करना होगा, तो हमारे नंबर डायल कीजिए 73-76-80-40-90 और देखते हैं हमारे कौन से कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी सर, बताएं अपने बारे में, क्या नाम है, कहां से फोन किया है? जी अपना नाम नहीं बताया आपने। देशराज जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: आज दो बदन फिल्म गाना सुनाओ मोहम्मद रफी के।
0: जी बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे। देशराज जी, आपसे ये जानना चाह रहे हैं, देखिए धूप बहुत ज्यादा है तो इस समय आप क्या सावधानियां बरत रहे हैं, मतलब इस धूप से बचने के लिए?
1: गर्मी है इस समय, गर्मी में सावधानी बरतनी चाहिए।
0: बिल्कुल बरतनी चाहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, खाना कम खाइए लेकिन पानी ज्यादा पीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, आपकी पसंद का गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे, आपने हमें कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: रहेगा
1: जी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और आप ये हमारा प्रोग्राम कहीं भी कभी भी आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर। तो जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रमों के साथ। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जिनका फोन लग चुका है। हेलो,
2: नमस्ते, चांदनी पांडे बोल रहे
1: हैं गोंडा से। चांदनी जी, आपका नाम ही बहुत प्यारा है चांदनी जी।
2: यस मैम।
1: तो आज
2: नाम हमारे नाना ने रखा है।
1: अच्छा जी, नाना जी मतलब आप नाना जी को ज्यादा प्यार करती हैं?
2: नाना जी को प्यार करते हैं, नाना नानी मामा मामी मौसी सभी को,
1: सभी को करती हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए। भाई चांदनी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं पहले तो हमको ये बता दीजिए।
2: आज हम आपके पसंद का गाना सुनेंगे।
1: बिल्कुल, हम अपनी पसंद का आपको गीत जरूर सुनवाएंगे। तो चांदनी जी आज कुछ बताएंगी श्रोताओं को? हमारे बहुत खुश भी लग रही है
2: क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है ना, तो हमें बच्चों के लिए पानी और दाने जरूर रखने चाहिए।
1: गर्मी ज्यादा पड़ रही है इसलिए ज्यादा खुश है आप?
2: क्योंकि हम तो पानी कहीं से भी लेके पी सकते हैं, लेकिन पक्षियां हैं, जानवर हैं, वो कहीं भी पानी
1: जी,
2: नहीं।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही है।
2: और खाने का प्रबंध करेंगे तो ये सही रहेगा।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हमें पशु पक्षियों के लिए थोड़ा थोड़ा कहीं से भी, मतलब कहाँ जहाँ देखते हो कि पक्षी बैठ रहे हो वहाँ पर, या पेड़ की छांव के नीचे पानी दाना ये रख देना चाहिए कि उनको भी कोई दिक्कत ना।
2: हमें इतना ध्यान देना चाहिए कि हम पानी जहाँ पर रखे वहाँ पर छाया हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही चांदनी जी। जितना अच्छा आपका नाम है उतनी ही अच्छी आपकी बातें होती हैं। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके।
2: आज हम काफी दिन के बाद मतलब दिन में कॉल किया है, टाइम मिल गया था।
1: और टाइम मिल गया और कॉल लग भी गई।
2: हमारी कॉल तो लग जाती है, नहीं कहेंगे नहीं लगती।
1: देखिए कितने श्रोता हमारे हैं जिनकी शिकायत रहती कि उनकी कॉल लगती नहीं, और एक देखिए आपकी कॉल
2: कभी कभी सोचते हैं कि हम आज फोन करेंगे ना भी लगे, लेकिन तभी लग जाता है।
1: जी बिल्कुल, इसीलिए तो कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
2: क्योंकि हमें कोशिश करनी चाहिए, तभी हम अपने मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल चांदनी जी, हंसता हुआ चेहरा जो होता है ना, वो हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, हर किसी को पसंद आता है, इसलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए।
2: क्योंकि हमें तो खुश ही रहना चाहिए।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल चांदनी जी, आपने
2: खुशी ऐसी चीज है जो हमारी आधी बीमारी ले जाती है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, अगर आप खुश हैं तो आपकी आधी बीमारी तो ऐसे ही चली जानी है।
2: और हम कहना चाहते हैं सभी भाइयों को आज हैप्पी बर्थडे दे।
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और आपने हमें कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चांदनी जी। आपको हम सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है हेलो अयोध्या और हमारे श्रोता लगातार कॉल हमें कर रहे हैं और उनसे बातचीत भी हमारी हो रही है। कुछ लोगों की कॉल आती है और बाय चांस कट भी जाती है, जैसे राकेश जी जिन्होंने हमें बहुत दूर से फोन किया था, शिमला से फोन किया था और दो बार उनकी कॉल लगी और दोनों बार कट गई। फिलहाल राकेश जी अगर आप हमको सुन रहे हैं तो बिल्कुल भी आप अफसोस मत करिएगा, फिर से आपकी कॉल जरूर लगेगी। अभी तो देखते हैं हमारे कौन से कॉलर हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी जी धन्यवाद।
0: कहाँ से फोन किया है कुछ बताएं अपने बारे में हमारे श्रोताओं को, बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं।
1: हम मसौदा से बोल रहे हैं।
0: मसौदा से?
1: जी मैम।
0: क्या करते हैं?
1: अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं 11th में।
0: अच्छा, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं 11th में, हाई स्कूल निकल गया।
1: यस मैम।
0: कैसा रहा?
1: अच्छा हुआ।
0: मतलब अभी तो आपने एक बोर्ड दिया और फिर नेक्स्ट ईयर आपको अगले बोर्ड की भी तैयारी करनी होगी।
1: हाँ।
0: पढ़ाई के दौरान कितना गंभीर रहते हैं आप?
1: बहुत ज्यादा मैम।
0: बहुत ज्यादा? बहुत मेहनत करते हैं
1: क्या मैम?
0: बहुत मेहनत करते हैं इसका मतलब?
1: जी मैम जी।
0: अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ते पढ़ते मतलब ऐसा होता है कि माइंड पूरी तरह से एकदम जैसे होता है ना कि परेशान सा हो जाता है, उलझन होने लगती, तो ऐसे समय पे आप क्या करते हैं?
1: यस मैम हुआ है।
0: तो ऐसे समय पे आप क्या करते हैं माइंड को रिलैक्स करने के लिए, क्या करते हैं?
1: शाम को पार्क चले जाते हैं और वहीं पे क्रिकेट होता है, खेलने में चले जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, आज आप जो बातें कर रहे हैं

0: बहुत लोग इसको सुन रहे हैं और आमतौर पे ये लगभग बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि कंटिन्यूअस जो पढ़ते रहते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते दिमाग जो है ना बहुत थक सा जाता है। तो ऐसे समय पे कुछ ऐसा करना चाहिए ना जिससे आपका माइंड जो है उससे रिलैक्स हो। कई लोगों को म्यूजिक पसंद होता है ना। अच्छा, रेडियो कब से सुन रहे हैं आप?
1: हमें हो गया 2-3 महीने।
0: 2-3 महीने से? तो क्या बहुत दिनों से आपने, मतलब खैर बताया कि आप 2-3 महीने से सुन रहे हैं, तो आपको कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और इससे आपको कुछ लाभ हुआ है?
1: यस मैम,
0: जैसे हमारे कार्यक्रम जो जाते रहते हैं युवाणी में, आप जैसे बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें रहती हैं, उनके कैरियर को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, तो प्रोग्राम अगर आप सुनते हैं तो आपको लाभ भी निश्चित होगा,
1: बहुत ज्यादा मिलते हैं। जैसे कि आप भूकंप के बारे में मिलता है कितना हो रहा है।
0: जी बिल्कुल। चलिए संगम जी, आपने कॉल किया, अभी आपने ये तो बताया नहीं कि आप गीत कौन सा सुनेंगे।
1: लता मंगेशकर की आवाज में कोई सा भी गाना सुना दीजिए आप।
0: चलिए, आपकी पसंद पे हम लता जी का ही एक गीत सुनवा रहे हैं फिल्म कुदरत से, और आपने हमें कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।

आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें, हम तो यही चाहते हैं। और आप स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहे, ये भी हमारी ही कामना है कि आप लोग भाई जहां भी रहें खुश रहें, प्रसन्न रहें। और अभी तो इस कार्यक्रम से हम लेते हैं इजाजत। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग दिया अश्विनी कुमार शुक्ला और विनोद कुमार चौधरी जी ने। अब इजाजत दीजिए हमें इस कार्यक्रम से।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
2: दीवाने,
3: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
2: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
3: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
4: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
4: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
0: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashvani@gmail.com।
5: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

चलने वाला मंजिल पाता है, बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। पांव मिले चलने के खातिर, पांव पसारे मत बैठें, जीवन में कुछ कहना है तो मन को मारे मत बैठें, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठे। जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम शुरू करेंगे आज का अपना कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, जिसमें हम आपकी पसंद के गीत को सुनवाएंगे, जो हमारे फेसबुक श्रोता हैं जिन्होंने हमें संदेश भेजा है बड़े ही प्यार से, तो हम इनकी पसंद के गीत आप तक पहुँचाएंगे। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म ममता से, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता है रविंद्र सिंह छाबड़ा, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, मशरूर हुसैन, ग्राम कुमार खेड़ा सहारनपुर से, फागूराम यादव संबलपुर कांकरे से, रवि कुमार राहुल कस्बा बराड़ा अंबाला हरियाणा से, जाकिर मंसूरी बाजार रोड मुंगीसापुर से, प्रमोद कुमार साहू बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से, प्रवीण श्रीमाली कंवर कॉलोनी बड़वा खरगोन मध्य प्रदेश से, वेद प्रकाश मिड्डा नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, दिलशाद हुसैन मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, सुरेश गगनेजा जलालाबाद वेस्ट से, निसार सलमानी घनौरी तेलीवाला से, विनोद वंडलकर रायपुर छत्तीसगढ़ से, संजय कुमार साहू पुटिया कला दुर्ग से, सतीश अनेजा चंडीगढ़ से, धीरज गुप्ता कस्बा उघीटी से, ओम प्रकाश राय कुटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, रज्जाक मोहम्मद हनुमानगढ़ राजस्थान से, और रियासत हुसैन जसपुर उत्तराखंड से। आप लोगों का ये गीत जो आपने पसंद किया है लता मंगेशकर की आवाज में हम आप तक पहुँचा रहे हैं।

जी बिल्कुल, अगले गीत के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं कि आपको कौन सा गीत पसंद है और कौन से गीत को हम लेकर हाजिर हैं, ये आपको भी इंतजार है। तो बता दें, अगला गीत है फिल्म पत्थर के सनम से, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं सुनील पाठक अनारकली बाजार जगराओं से, पुंजा जी नवाबकर नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, नारायण लाल साहू राजानंद गांव छत्तीसगढ़ से, मोहम्मद यासीन अनजान दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से, बोधराज खुरवाल उत्तम नगर दिल्ली से, मोहम्मद फैजल इमाम हयात कॉलोनी अररिया बिहार से, दिनेश वर्मा रिंगनी छत्तीसगढ़।

से राधेश्याम शर्मा, ग्राम हांडी खेड़ा जिला सिरसा से संजय ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से विष्णु टेलर, दयानंद कॉलेज भवानीपेट शोलापुर महाराष्ट्र से विक्रम मालवीय, गुलबालोद तहसील आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से गजानन येले, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से अरुण कुमार वालवीय, बड़ी गोबी चौराहा वाराणसी से नरेश मल्होत्रा, खैल बाजार पानीपत से। तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये गीत मुकेश जी की आवाज में, फिल्म पत्थर के सनम से।

तौबा तौबा, ये इतने प्यारे गीत हैं कि हर किसी के बिल्कुल मन गुनगुनाने लगता है और बस यही मन करता है कि आंखें बंद करके ये मधुर संगीत सुनते रहें, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए ऐसा ही हमारे दिमाग को बहुत रिलैक्स कर देते हैं। फिलहाल कार्यक्रम का अगला गीत भी इंतजार कर रहा है आपका। अगला गीत फिल्म दीवाना से पसंद करने वाले श्रोता लाल बाबू गोस्वामी रघुनाथ नगर श्री गंगानगर से, राधा नामदेव सहारनपुर से, अरविंद कुमार बेनीपट्टी मधुबनी से, विजय सुरलकर मोताला महाराष्ट्र से, जगमोहन सिंह प्रजापति लोहडडा जिला बागपत से, सुभाष चंद्र बजाज कालका से, बालकृष्ण नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से, जीवन विश्वकर्मा गाड़ी खाना चाईबासा झारखंड से, रश्मि पांडे राजकोट गुजरात से, सुरेश जायसवाल जमनिया जिला गाजीपुर से, मोहब्बत इंतजार भोजपुर तगा सहारनपुर से, महेंद्र मोदी रामगढ़ कैंट से, ओम बगड़िया ग्राम बांडीवाला फजलिका से, उत्तम कुमार भगत पाकुड़ झारखंड से, राजू कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, दिनेश नामदेव चापा छत्तीसगढ़ से, जीके पवार गांधीनगर सेक्टर 2 गुजरात से, हुकुम करम कर बेरडी मध्य प्रदेश से। तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये प्यारा सा गीत।

जी हमारे जिंदगी में जब बहुत सारी परेशानियां होती है ना, तो उम्मीद ही एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ हमारा सहारा होती है, जिसके बल पर हम आगे की लड़ाई लड़ते हैं। तो उम्मीद का दामन कभी भी मत छोड़िए, उम्मीद बहुत बड़ी चीज है जो हमेशा हर परेशानी में हमारे कानों में आके धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। फिलहाल कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। फिल्म खानदान से पसंद करने वाले हमारे श्रोता है सतीश शर्मा, रघुनाथपुर जिला गंगानगर से। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है माधव नामदेव ने।

प्रताप पांडे जी ने एक बहुत प्यारा सा संदेश भी हमें भेजा है कि पेड़ पौधे लगाओ और गर्मी को भगाओ। जी, इन्होंने हमें संदेश भेजा है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से, राजकुमार रेवार इन्होंने हमें भेजा है संदेश। गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से, मोहम्मद रफीक पवार ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से इन्होंने हमें यह संदेश भेजा है। खिल्लू परवेज इनका संदेश है सेफ वाटर सेफ लाइफ, हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से। अशोक वर्मा जी ने हमें संदेश भेजा है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश सुदामा नगर खंडवा से, लक्ष्मी नंदिनी। ग्राम लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से हल्के जयपाल यादव, अशोक सिंह धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से, खुर्जा उत्तर प्रदेश से अंकुश अरोरा। दातार सिंह सिखावत गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से, रणधीर गुप्ता ओखला संगम विहार दिल्ली से, संदीप कुमार आसिफ अली इन्होंने भी हमें संदेश भेजा है बागपत यूपी से। राजू मिगलानी दुर्गा कॉलोनी हांसी से, रिजवान खान अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से। नानक खन्ना इन्होंने भी हमें संदेश भेजा है सफीटी सिटी हरियाणा से। अजीत कसना लदावली जिला मुरादाबाद से, पुराना तालाब डुमराव से वशी उल्ला अंसारी, सेक्टर 18 जगाधारी जिला यमुनानगर हरियाणा से। विनय मोहन तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये गीत।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। दिन के 2 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि।
1: अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: और भाई साहब क्या हाल है?
3: यार हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
2: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
3: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका।

साथ रहे, सांसों की तरह साथ रहे सारी जिंदगी। तुम ख्वाब से गए तो ख्यालात में रहे, हर बूंद तीर बनके उतरती है रूह में, तन्हा मेरी तरह कोई बरसात में रहे। कभी कभार दिल खुद नहीं जानता कि उसे चाहिए क्या और क्या हुआ है उसे।

0: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
1: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
2: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त,
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
2: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।

शायद उसे भी एक अधूरा अफसाना तो होगा, कल रास्ते में उसने हमको पहचाना तो होगा। कुछ बातों के मतलब हैं, कुछ मतलब की बातें, जो ये फर्क समझ लेगा वो देवा।

पंकज उदास की गाई इसी गजल के साथ हमारा कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। दिन के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचारों का प्रसारण, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी।

0: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि आधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
0: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर है। कांग्रेस के

0: रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एच 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज

0: राजदूत शिव फेहुंग ने शांसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचारों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र में। दिन के 2:30 हुए हैं। हमारे नन्हे मुन्ने श्रोता सुनिए अपना कार्यक्रम बाल जगत।

0: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-61-877-347।
2: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
3: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।

0: अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
3: FM 101.9

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
3: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
3: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
2: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
4: बाल जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी नन्हे दोस्तों को गीता दीदी का जय हिंद। बच्चों देखिए गर्मी बहुत तेज है और ऐसे में बाहर निकलना बहुत मुश्किल है ना, और निकलिए भी मैं क्योंकि घर में ही बैठकर कि मेरा प्रोग्राम जो आपको सुनना है ना, बिल्कुल सही कहा ना मैंने। हाँ तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के नक्शे पर मौजूद अलग अलग देश जिनकी भाषा अलग है खान पान अलग है वो सब एक परिवार की तरह एक साथ कैसे आ सकते हैं? सवाल तो सोचने वाला है। हाँ बिल्कुल, हम एक ऐसे ही वैश्विक परिवार की बात करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल। आज कॉमनवेल्थ दिवस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि यह क्या क्यों मनाया जाता है और इसमें बच्चों के लिए खास क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि ये कॉमनवेल्थ आखिर है क्या। आसान शब्दों में कहें बच्चों तो यह 56 देशों का एक समूह है। ये वो देश हैं जो कभी ना कभी इतिहास के पन्नों में एक साथ एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। आज ये सब स्वतंत्र हैं लेकिन आपस में दोस्ती लोकतंत्र और शांति को बढ़ावा देने के लिए एक साथ खड़े होते हैं। इस साल की थीम बहुत प्यारी है बच्चों, 2026 की एक साझा भविष्य। इसका मतलब है कि चाहे हम भारत में हों या दूर कनाडा ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका के किसी भी देश में, हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां सबको बराबरी का हक मिले और हमारी धरती सुरक्षित रहे। और बच्चों अभी हम बात कर रहे थे विशाल वैश्विक परिवार कॉमनवेल्थ की ना, तो बच्चों चाहे देश का विकास हो या पूरी दुनिया की प्रगति, इसकी शुरुआत हमेशा अपने घर से होती है ना, ये बात सही। हमारे घर के वो लोग जो हमारी न्यू हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, यानी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, शुभ चिंतक, हमारा जो भी होगा जो बड़ा होगा वो हमेशा हमें सही राह पर ले जाएगा चाहे वो बड़ा हो या छोटा। बड़ों का सम्मान करना एक बहुत ही प्यारी और अच्छी आदत, बहुत ज़रूरी भी है और अच्छी आदत भी है। ये भाव सभी बच्चों में होनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमारे घर में बहुत सारे बुजुर्ग कभी बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा हैं दादी हैं नाना हैं नानी हैं, आप कहीं भी जाते होंगे आपको बड़े मिलते हैं, हमारे शिक्षक हैं, ये सब हमारे जीवन को के उस वो मार्गदर्शक हैं जिनके पास अनुभवों का बच्चों एक बहुत बड़ा खजाना होता है। आप जब सुबह उठकर अपने माता पिता का पैर छूते हो या उन्हें गुड मॉर्निंग बोलते हो या नमस्ते करते हो या प्रणाम करते हो या दादा दादी को करते हो तो बहुत अच्छा लगता होगा उनको। और दादा दादी की छोटी मुसी तो मदद कर देना चाहिए, करना ही चाहिए, जो बच्चे घर में रहते हैं वो करते ही हैं। पता है बच्चों उनके दिल से जो आवाज़ निकलती है तुम्हारे लिए आशीर्वाद की, ढेर सारा आशीर्वाद निकलता है, वो आशीर्वाद हमें बहुत जीवन में काम आता है और आगे आपको ले जाने में बहुत काम आते हैं। आज की भागदौड़ में हम अक्सर फ़ोन या टीवी में

खो जाते हैं कि अक्सर बड़ों के साथ हम बैठ नहीं पाते, घर में बड़े बैठे रहते हैं, हम अपने टीवी में अपने मोबाइल में मस्त रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, समय निकालना चाहिए उनके लिए। लेकिन सच्चा और अच्छा बच्चा वही है जो रोज़ थोड़ा समय निकाल कर अपने बड़ों के पास बैठे और उनकी पुरानी अच्छी कहानियाँ सुने और उनसे बातें करें। उनको उनके सम्मान से एक बात और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब बड़े बात आपसे कर रहे हों तो आप उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनो, ताकि वो सोचो और समझो कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनसे हमेशा प्यार से और आदर से बात करना चाहिए। अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए जैसे पानी देना या उनका चश्मा, तो दौड़ कर ला कर देना चाहिए। उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। आपके इस छोटे से प्रयास से बच्चों उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, वो शायद आपको इतनी खुशी देगी कि आप समझ भी नहीं सकते, और वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ होगी। और जब प्यार और अपनापन का माहौल बन जाता है ना, तो हर पल खुशियों से भर उठता है। इन्हीं खुशियों और मुस्कुराहटों के साथ एक बेहद और प्यारा सा गीत इस चिलचिलाती धूप में हम आपके लिए लेकर आए हैं। शायद उसकी ज़रूरत भी होगी इस धूप में आपको। तो सुनते हैं फिल्म अपना देश का ये गाना, नारियल पानी वाला।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: और अब बढ़ते हैं एक ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की ओर। बच्चों की आज के बच्चे ही कल का भविष्य हैं, इसलिए उनका विश्व और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जागरूक होना बहुत आवश्यक है। तो आइए अब सुनते हैं बच्चे जाने राष्ट्रमंडल के बारे में। ये विषय है हमारा और इस विषय पर बात आपसे बात कर रही हैं सुनीता सिंह।
8: जय हिंद बच्चों, मैं सुनीता सिंह उपस्थित हूँ आज आपके साथ राष्ट्रमंडल देशों के बारे में संक्षिप्त चर्चा करने के लिए। राष्ट्रमंडल देशों का अंग्रेजी शीर्षक है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। राष्ट्रमंडल दिवस हर साल मार्च महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, लेकिन भारत में राष्ट्रमंडल दिवस हर साल 24 मई को मनाया जाता है। आज 24 मई है और हम मना रहे हैं राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस डे। राष्ट्रमंडल देश क्या है, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं। बच्चों, यह 56 देशों का एक स्वैच्छिक समूह है, अर्थात वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी अध्यक्षता प्रतीकात्मक रूप से वही करता है जो यूनाइटेड किंगडम का क्वीन या किंग होता है। यह एक वंशानुगत प्रणाली है, इस पद पर चयन के लिए कोई चुनाव प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। वर्तमान समय में राष्ट्रमंडल देशों के प्रतीकात्मक प्रमुख हैं किंग चार्ल्स तृतीय। इस संगठन के सदस्य कौन से देश हैं? बच्चों, राष्ट्रमंडल 56 स्वतंत्र देशों में से अधिकांश वे देश हैं जो पहले अंग्रेजी साम्राज्य का उपनिवेश रहे हैं, अर्थात जो ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट्स रहे हैं। किंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अमेरिका अंग्रेजी साम्राज्य का उपनिवेश तो रहा है किंतु राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है, जबकि मोजाम्बिक और रवांडा कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश नहीं थे। फिर भी सन 1995 में मोजाम्बिक ने और सन 2009 में रवांडा ने इसकी सदस्यता ग्रहण की। इस संगठन की उत्पत्ति कब हुई? बच्चों, इस संगठन की उत्पत्ति की घोषणा 19 नवंबर सन 1926 में बालफोर घोषणा पत्र के माध्यम से ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के रूप में की गई, जिसे सन 1931 में वेस्टमिंस्टर के कानून के तहत औपचारिक रूप दिया गया। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि इस संगठन का उद्देश्य क्या है। बच्चों, यह संगठन लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, सुशासन अर्थात गुड गवर्नेंस, मानवाधिकार एवं कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। यह संगठन छोटे और विकासशील देश अर्थात डेवलपिंग कंट्रीज, जो देश अभी पूर्ण विकसित नहीं है और विकास के लिए संघर्षरत हैं, ऐसे राज्यों को आर्थिक सहयोग, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन संबंधी उपायों के माध्यम से सहायता करता है। राष्ट्रमंडल देशों के इतिहास के प्रमुख पड़ाव कौन कौन से हैं? बच्चों, अब हम जानेंगे राष्ट्रमंडल राष्ट्र अथवा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के इतिहास के प्रमुख पड़ावों के बारे में। इसका पहला पड़ाव हम मान लेते हैं इसकी उत्पत्ति कब हुई। यह अवधारणा 20

सदी की शुरुआत में इम्पीरियल कॉन्फ्रेंस के रूप में उभरी थी और जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि सन 1926 में बालफोर घोषणा द्वारा इसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के रूप में मान्यता मिली। आर्थर बालफोर यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नाम पर इसे बालफोर घोषणा नाम दिया गया। सन 1931 में वेस्टमिंस्टर के कानून ने यूनाइटेड किंगडम और उसके उपनिवेशों के बीच समानता और स्वतंत्रता को कानूनी रूप दिया। रॉयल पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर वेस्टमिंस्टर शहर में स्थित है, जो ब्रिटिश संसद का सभा स्थल है। यहीं पर इस कानून को मंजूरी दी गई। भारत इसमें कब शामिल हुआ? सन 1949 में जब भारत गणराज्य अथवा सावरन डेमोक्रेटिक स्टेट बन चुका था, उसके बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रमंडल में बने रहने की इच्छा व्यक्त की गई, किंतु ब्रिटिश सम्राट को अपना अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया। तब लंदन घोषणा पत्र के माध्यम से इसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के बजाय कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहा गया और यह अब केवल ब्रिटिश ताज के प्रति वफादार देशों का समूह नहीं रहा है। इस घटना ने समूह को एक नए स्वतंत्र स्वरूप में बदलने में अहम भूमिका निभाई है। बच्चों, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन 16 मई 1949 यानी 1949 को किया गया और इस पर मुहर लगाई गई। बच्चों, यह आधुनिक राष्ट्रमंडल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसके बाद ही गणराज्य देशों को इसमें शामिल होने की अनुमति मिली और इसका नाम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के बजाय कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस रखा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है सदस्य राष्ट्रों की साझा समृद्धि। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के मूल्य और सिद्धांत राष्ट्रमंडल चार्टर में व्यक्त किए गए हैं। राष्ट्रमंडल की प्रमुख गतिविधियां अथवा एक्टिविटीज क्या हैं? बच्चों, राष्ट्रमंडल की प्रमुख गतिविधियों में सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना विशेष स्थान रखता है। यह संगठन सदस्य देशों, विशेष रूप से छोटे द्वीप राज्यों अर्थात स्मॉल आइलैंड्स को जलवायु परिवर्तन से लड़ने और प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए धन प्राप्त करने में मदद करता है। यह संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता अर्थात जेंडर इक्वालिटी और युवा सशक्तिकरण यानी यूथ एम्पावरमेंट पर ध्यान केंद्रित करता है। इस संगठन का हर सदस्य देश, चाहे वह आकार में कितना ही बड़ा या छोटा ही क्यों न हो, बराबर अधिकार रखता है। यह संगठन सदस्य राष्ट्रों के चुनावों की निगरानी भी करता है और कानूनी प्रणालियों और सार्वजनिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह संगठन कॉमनवेल्थ गेम्स का भी आयोजन करता है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 4 वर्ष में एक बार किया जाता है, जिसमें सभी सदस्य देशों के एथलीट हिस्सा लेते हैं। इसकी शुरुआत सन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुई थी, जहां इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। सन 1978 से यह राष्ट्रमंडल खेलों के नाम से जाना जाता है। भारत सन 1934 में पहली बार इन खेलों में शामिल हुआ। सन 2010 में भारत में इसका आयोजन दिल्ली में कराया गया। बच्चों, अब हम बात करते हैं संघ से संबंधित कुछ प्रशासनिक बिंदुओं के बारे में। राष्ट्रमंडल के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हर 2 साल में एक बार होती है। राष्ट्रमंडल संघ के अध्यक्ष उच्च स्तरीय बैठकों में राष्ट्रमंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्यक्ष पद का कार्यकाल 2 साल का होता है। वर्तमान में समोआ के प्रधानमंत्री लाउली लेउतेया श्मिट इसके अध्यक्ष हैं। सन 2024 में हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स की मेजबानी समोआ ने की थी। राष्ट्रमंडल देशों की मेजबानी करने वाले देश का राष्ट्राध्यक्ष ही अगले 2 वर्ष तक संघ का अध्यक्ष रहता है। शर्ली बॉचवे वर्तमान में राष्ट्रमंडल की महासचिव हैं। राष्ट्रमंडल महासचिव सार्वजनिक रूप से राष्ट्रमंडल का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार है और वे ही राष्ट्रमंडल सचिवालय की प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में मार्लबोरो हाउस में स्थित है। बच्चों, अंत में हम बात करते हैं सन 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजनों के बारे में। बच्चों, 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन भारत में जुलाई 2026 में दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया जाएगा। 23वीं राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड के सबसे बड़े शहर ग्लासगो में कराया जाएगा। अपने मैत्रीपूर्ण माहौल के कारण इन्हें फ्रेंडली गेम्स भी कहा जाता है। बच्चों, ये थी हमारी आज की चर्चा। आशा है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में दी गई यह संक्षिप्त जानकारी आपको

ज्ञानवर्धक एवं रुचिकर लगी होगी। कार्यक्रम में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो बच्चों, अभी आप सबने सुना राष्ट्रमंडल के बारे में जानकारी हासिल की और बता रही थी सुनीता सिंह दीदी। हम इन्हें धन्यवाद देते हैं। और अब बारी है रोचक जानकारी की, क्योंकि रोचक जानकारी के अंतर्गत इस विशेष अंक में आज हम आप सबके साथ में सैर करेंगे एक ऐसी जगह की जहां जंगल की हलचल और परिंदों का शोर है। इस भीषण गर्मी में ऊपर से सूरज का तेवर और स्कूलों की ये लंबी छुट्टियाँ, क्यों ना घर में बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे आप लोग ना, तो मन कर रहा होगा कहीं ना कहीं ऐसी जगह चले जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छांव हो और ठंडी हवा हो और साथ में ढेर सारे दोस्त हो, और वो दोस्त जिनकी पूछ होती है और जो दहाड़ते हैं या रंग बिरंगे पंख फैलाकर नाचते हैं। जी हाँ बच्चों, आप सही समझे, आज की इस विशेष कड़ी में हम आपको सैर पर ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की शान लखनऊ चिड़ियाघर की सैर पर। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे इस प्यारे चिड़ियाघर का असली नाम क्या है? इसका असली नाम है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है। इसकी स्थापना सन 1921 में हुई थी, यानी 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है यह चिड़ियाघर। इस चिड़ियाघर में बच्चों घुसते ही जो सबसे पहली चीज़ आपका आकर्षण होती है, जो आपका दिल जीत लेगी ना, वो यहाँ की टॉय ट्रेन है। छोटी सी ट्रेन है जिस पर बैठकर छुक छुक करती है ट्रेन, सब पूरे चिड़ियाघर का चक्कर लगाती है, तो लगता है कि जैसे हम किसी जादुई सफर पर निकल पड़े हैं। अब बात करते हैं यहाँ के असली हीरोज की, यानी सफ़ेद बाघ की। लखनऊ के चिड़ियाघर की सबसे बड़ी पहचान यहाँ का यह सफ़ेद बाघ है, और अपनी मान से जब ये बाहर निकलता है ना बच्चों, तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो मछली घर भी है यहाँ पर। अगर आपको पानी की दुनिया पसंद है ना, तो यहाँ एक्वेरियम जरूर देखें। रंग बिरंगी मछलियाँ और पानी के भीतर का जो नज़ारा है, मंत्र मुग्ध कर देगा। और बाल ट्रेन और झूला सिर्फ जानवर ही नहीं, आप सबके लिए खेलने के लिए भी यह सुंदर पार्क भी है। लेकिन बच्चों, चिड़ियाघर का सिर्फ घूमने की जगह यह नहीं है, या हम यह आप से कहेंगे या यह बात सिखाता है हमें कि हमें पशु पक्षियों और पर्यावरण से प्यार करना चाहिए। केवल घूमना ही नहीं चाहिए, उनसे प्यार भी करना चाहिए। गर्मी के इस मौसम में जब आप वहाँ जाएं, तो ध्यान रखें कि जानवरों को परेशान ना करें और ना ही उन्हें बाहर का खाना खिलाएं। आखिर वे भी तो हमारे मेहमान हैं ना, तो देर किस बात की। मम्मी पापा से कहिए और अपनी पानी की बोतल लीजिए, टोपी लगाइए और निकल पड़िए लखनऊ की चिड़ियाघर के रोमांचक सफर पर। आज बस इतना ही। अगले सप्ताह हम आपसे फिर इस बारे में और बात करेंगे और भी कहानियों के साथ, लेकिन इसके बाद हम आपको प्रेरक व्यक्तित्व की भी कुछ बातें कर लें, क्योंकि आज हम आपको प्रेरक व्यक्तित्व में बात करेंगे एक ऐसे जाबाज के बारे में, बताएंगे जो अंग्रेजों के लिए एक अनसुलझी पहेली थी। क्या आपने कभी जादुई गायब होने वाली कहानियां सुनी हैं? आज के हमारे नायक कोई जादूगर तो नहीं है थे, पर उन्होंने ब्रिटिश पुलिस को ऐसा छकाया कि वे इन्हें कभी पकड़ नहीं पाए। हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की। बात है इस साल 1912 की। दिल्ली के चांदनी चौक में एक बड़ा जुलूस निकल रहा था। वायसराय हार्डिंग हाथी पर सवार थे और अचानक एक धमाका हुआ, बम फेंका गया था। अंग्रेज सिपाही यहाँ वहाँ भागे, पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी जो था बच्चों, उन्हें मिला नहीं। जानते हो वह बम फेंका था किसने? रास बिहारी बोस ने। ताजुब की बात है ना कि हम बम फेंकने वाले को कि वो चुपचाप बम फेंके और वहाँ से देहरादून निकल गए तुरंत, और अगले ही दिन अपने दफ्तर पर बैठकर वो काम भी करने लगे ताकि किसी को कोई शक भी ना हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अंग्रेज अफसर उनके सामने खड़े होकर हमलावरों को ढूंढने की योजना भी बल्कि बना रहे थे। तो बच्चों, रास बिहारी बोस के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि वो केवल जो लड़ाई लड़ी जाती है केवल तलवार से नहीं, ताकत से और दिमाग से लड़ी जाती है। कठिन समय में भी शांत रहकर लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। उनका ये त्याग, अपनी पहचान खोकर भी देश को पहचान दिलाना, तो बच्चों जब भी भारत का तिरंगा देखें तो याद रखिएगा, इसे ऊंचा रखने के लिए रास बिहारी बोस जैसे नायकों ने सात समुंदर पार भी अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इसलिए बच्चों, देश प्रेम को भी, देश प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, चाहे आप भारत में हो या सात समुंदर पार, आपका दिल हमेशा अपनी मातृभूमि के लिए धड़कता रहेगा।

0: बच्चों, इसी गीत के साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय भी अब समाप्त हो रहा है। अगले रविवार तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

अभी हमारे नन्हे मुन्ने श्रोताओं ने सुना अपना कार्यक्रम बाल जगत। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। दिन के ठीक 3 बजे हुए हैं। अब आप सुनेंगे केंद्रीकृत विविध भारती के कार्यक्रम।

की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। तमाम व्यस्तता के बीच कहीं दोपहर में ठंडे शरबत की ताजगी है और खस की खुशबू और ऐसी ही ताजी हवा के झोंके सा आपके चुने हुए गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत आ चुका है आपके रेडियो सेट पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आज मनचाहे गीत कार्यक्रम में किन किन श्रोताओं के मनचाहे गीत शामिल हो रहे हैं। मनचाहे गीत प्रोग्राम में अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

आन मिलो सजना, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनना चाहा जिला यमुनानगर हरियाणा से जयपाल धीमान, यशपाल धीमान, विनोद और राजीव धीमान। इसी गीत के लिए फरमाइश की रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। और इस गीत को सुनना चाहते थे जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला अदवंत, नीलेश अदवंत, मयूरी अदवंत, कल्पेश अदवंत और संगीता अदवंत।

एक बार मुस्कुरा दो इस फिल्म में आशा भोसले मुकेश की आवाजें आपने सुनी। एसएच बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। इस गीत को सुनना चाहा दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गंगाराम पांडे, तीर्थराज पांडे, दिलीप शर्मा, ध्रुवराज पांडे और इनके बहुत से साथी। इसी गीत को सुनना चाहा सिकंदर अली खान, बदुद्दीन शमसुद्दीन की बाड़ी के पास से। और ये पत्र आया बीकानेर राजस्थान से। एक और श्रोता ने इस गीत की फरमाइश की जिला अमरावती से, प्रवीण नगर से। ये हैं चंदू हातोले, सीमा हातोले, गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश से, बीपी गौतम, सरिता, अनन्या, कुश, रिंकू टिंकू, रीना, ऐश्वर्या, श्रेय, आप सभी की फरमाइश थी।

खयाम की बनाई तर्ज पर इस गीत को गाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यश दास ने। त्रिशूल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिर लुधियानवी का लिखा। रामलीला मैदान सचिंदी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मीनू त्रिपाठी और शिवांश अनूप सिंह और अभिजीत सिंह की ये फरमाइश थी। हेतु रांची से प्रवीण कुमार और इसी गीत को सुनना चाहा गुराई बुरीवली वेस्ट मुंबई से अंशिका ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत।

चोर मचाए शोर इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। गणेश कुमार की फरमाइश है ये पुणे से, और भरत यादव, काजल शर्मा, विकास सक्सेना इनकी फरमाइश है बदायूं उत्तर प्रदेश से। और ये हमारे श्रोता हैं तहसील तिलहारा अकोले महाराष्ट्र से, विनोद कुमार आड़िया, भारती, पारस पायल, श्वेता और उर्वीबेन आड़िया।

ये गीत आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म से, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी, और इस गीत की फरमाइश की हंडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी, और इसी गीत की फरमाइश की लीला बेन, स्मिता बेन, भारती, निधि, सेजल, मनाली ने। ये हमारे श्रोता थे तेलहारा महाराष्ट्र से। और अब आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के प्रोग्राम में सुनिए उषा सक्सेना का लिखा नाटक चंदन वृक्ष।

0: दोनों की कॉल लगने वाली है।
1: हाय फ्रेंड्स, क्या चल रहा है?
0: फिलहाल तो चाय और समोसे चल रहे हैं। अब आप आ गए हैं तो
1: चल चलो सुमित, उधर बैठते हैं खिड़की के पास।
2: वहाँ क्यों?
1: अरे भाई, आज शनिवार की शाम है, कोई डिनर के लिए जाएगा, कोई लोकल गार्जियन के यहाँ, कोई पिक्चर जाएगा और कोई शॉपिंग के लिए। तरह तरह की ड्रेसेस और साज सज्जा देखने को मिलेगी। आया जी।
3: हाँ बिटिया।

0: बैठ सुन। अरे यार तुम्हारी बकबक से तो मेरा सिर दर्द करने लगता है।
1: तो ले चाय पी, एकदम गरम है।
2: अरे सुमी जरा रेशमा का जूड़ा तो देख।
0: जूड़ा? अरे ये तो एकदम अजंता की मूर्तियों जैसा केश विन्यास है।

0: क्या बात है।
1: अरे यार ऐसे लग रहा है जैसे कोई हंसनी धीरे धीरे तैरती हुई चली जा रही है।
0: तंग आ गई मैं तुम्हारी कविता से। न कोई थ्रिल है न कोई एक्साइटमेंट
1: है। क्यों नहीं, अरे तुम तो हो थ्रिल एक्साइटमेंट का जीता जागता रूप। गोरी गोरी दुबली पतली प्यारी सी बालिका जैसे
0: कटनार की गली यही कहेगी ना। ले समोसा खा।
1: गर्म गर्म खिला रहे हो।
0: हाँ तो फ्रेंड्स
2: यस
0: मिस सुमी आपको अपनी एक नई कविता सुनाने जा रही है। ये कविता इन्होंने अपने प्रिय दोस्त चंदन के लिए लिखी है। वैसे ये भी चंदन जैसी है पर जरा सांप से बच कर है ना माय डियर फ्रेंड।
1: रीमा तू नहीं सुनेगी
0: तो सुनिए आप सब इनकी नई रचना। तो शुरू हो जाइए मिस सुमी।
1: अरे यार समोसा खाने दो।
0: कोई नखरा वखरा नहीं चलेगा। कम ऑन
1: रीमा। अच्छा अच्छा तो सुन बस। खुशबू बिखेरता महकाता पवित्र करता नंदन कितना प्यारा कितना सुंदर है ये वृक्ष चंदन। जी चाहता है इसे आंखों में आंज लूं शब्दों में बांध लूं मन में समेट लूं कल्पना से संवार दूं कर लूं वंदन हे वृक्ष चंदन।
0: लो मेरी तो गाड़ी आ गई भाई मैं तो चली। चलेगी सुमी?
1: आज नहीं भैया आते होंगे उनका इंतजार करूंगी।
0: ओके बाय
2: बाय फ्रेंड
3: बाय।

0: अरे नमस्ते भाई साहब।
1: अरे तू रीमा, लगता है संगत का असर आ गया है। हाय हेलो नहीं, नमस्ते। आज वो तुम्हारी कबूतरी नहीं आई?
0: कबूतरी? What do you mean? You mean सुमी? देखिए भाई साहब, आप मेरी दोस्त का अपमान कर रहे हैं। अरे थोड़ी भावुक है बस, बच्चों जैसी मासूम है, हंसती है तो सुरीले तार झंकृत होते हैं, बोलती है तो जैसे कोयल कुहकुती है, और चलती है तो
1: लगता है कोई हाथी झूम झूम कर चल रहा है।
0: अच्छा भैया, फिर आपने उसकी बेइज्जती की?
1: अरे भाई गजगामनी कहा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट।
0: अच्छा भाई, तो भाई आप उसकी इतनी बातें क्यों करते हैं? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है?
1: चक्कर और उससे? अरे बाबा डर लगता है। आती है तो कहती है, डॉक्टर साहब एक नया गीत लिखा है सुनिए। क्या करूं तुम्हारी दोस्त है, झेलना पड़ता है उसे। लिखती है, कितना मोहक कितना सुंदर है इन फूलों का जीवन, हंसना खिलना और शर्माना, महकाना धरती का कड़कण।
0: अच्छा और क्या कहती है?
1: कहती है, खिलती कलियां झूमती लताएं, तपस्वी से चंदन वृक्ष, सब मुझे बहुत अपने लगते हैं, जिस दिन बाग में न जाऊं वे उदास हो जाते हैं।
0: और आप कहिए तो प्रपोज कर दूं?
1: नहीं रीमा, बहुत भोली है वो, अधखिली अनछुई ओस में नहाई पावन कली की तरह, जिसकी पलकों में न जाने कितने सपने हैं। मैं इंतजार करूंगा।
0: समझ गई भाई साहब, मौका देखकर मैं जरूर बात करूंगी। अभी तो वो भी मगन होगी अपने भैया के साथ।
2: स्वामी बिटिया जी, वो भैया जी आए हैं।
3: अरे भैया आप, घर में सब लोग ठीक तो हैं? और डैडी की तबीयत?
4: बहुत अच्छी, घर में सब लोग अच्छे तरह से। वो तुझे मेरा तार नहीं मिला था क्या?
3: तार? वो तो नहीं मिला। खैर अब तो आप खुद ही आ गए हैं, बता दीजिए क्या लिखा था तार में।
4: यही कि रात की ट्रेन से हम लोगों का रिजर्वेशन है।
3: रिजर्वेशन?
4: हाँ, हमें आज ही बांदा जाना।
3: लेकिन क्यों, अभी तो मेरी छुट्टियों में एक महीना बाकी है, और फिर मुझे परमिशन भी नहीं मिलेगी।
4: मैं तुम्हारी वार्डन से बात कर चुका हूँ, तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, ठीक 8 बजे मैं टैक्सी लेकर आऊंगा।
3: लेकिन भैया अचानक ये सब क्या हो रहा है, मैं इतने दिन क्लासेस कैसे मिस करूंगी? साफ बताओ ना भैया क्या बात है।
4: तो सच कह दूं? तो सुन, पापा ने तेरे ब्याह की तारीख पक्की कर दी।
3: ब्याह?
4: इसी माह की 25 तारीख को तेरी शादी है, और इसीलिए मैं तुझे लेने आया।
3: ये तुम क्या कह रहे हो भैया? देखो भैया, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता।
4: ये मजाक नहीं सुमी, सच है, घर में मेहमान भी आने शुरू हो गए।
3: भैया मुझसे पूछा भी नहीं और सब कुछ तय कर लिया।

0: सुमी परेशान मत हो, तू तो जानती है पापा रिटायर होने से पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहते हैं। अरे आगरे का रईस घराना है, लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है, दो बार बाहर भी हुआ है, सब ठीक ही है। और देख रही तुझसे पूछने के बाद, तो अपने खानदान में ऐसी परंपरा नहीं है, बड़े बूढ़े जो भी ठीक समझते हैं वही करते हैं।
1: हाँ, तभी तो आप भुगत रहे हैं, रईस घराने की लाडली बेटी से पापा ने आपका ब्याह कर दिया और आपकी जिंदगी।
0: सुमी बस प्लीज दुख की रग मत छेड़, सब अपना मुकद्दर है, पर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उनके घर वालों से मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, और लड़के की बहन मंजू वो तो बहुत ही प्यारी। अच्छा सुन मैं चलता हूँ, तू तैयार है ना? हाँ
1: सामान बांट लो, सब लाट साहब हैं, मुझसे बिना पूछे ही सब कुछ तय हो गया। कहते थे एमए कराएंगे और अब भी अभी नहीं कर पाऊंगी, लड़का इंजीनियर है, अरे तो कोई और लड़की नहीं मिली, मेरा ही करियर खराब करना था। चल बेटा चढ़ जा सूली पर, एक खत तो लिख दूं रीमा को। प्यारी रीमा, तेरे चंदन वृक्ष को सर्प घेरने वाले हैं, मतलब मेरा ब्याह हो रहा है इसी 25 को, पहले से आ जाना नहीं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगी और नहीं ब्याह करूंगी। सुमी
2: भैया जी चलिए, भैया जी आ गए हैं।

0: छोड़कर मत जाओ।
1: क्यों?
0: मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
1: अरे घबराना कैसा, सभी का ब्याह होता है। अरे शीशे में एक बार अपनी छवि तो देख ले, बिल्कुल अप्सरा लग रही है।
0: रीमा छोड़ मुझे, रीमा शीशे में भी मुझे वही चंदन वृक्ष और उससे लिपटे हुए सांप दिखाई दे रहे हैं। मेरा क्या होगा रीमा?
1: सब बढ़िया होगा। अरे कुछ दिनों के लिए बस अपनी कविताएं भूल जा, अब तो एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है ना।
0: ठीक है।

0: मैं भी चलूं?
1: अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों? शोमी के आने तक रुक जाती बेटी।
0: नहीं अंकल, रुक तो जरूर जाती, पर आज का रिजर्वेशन है और भैया स्टेशन आएंगे।
1: अच्छा बेटी ये बताओ,
0: अंकल
1: शोमी का दूल्हा तुम्हें कैसा लगा?
0: अंकल ये सब ब्याह से पहले पूछा जाता है, जो बिंद गया वही मोती। सुमी खुश रहे बस यही कामना है मेरी। अच्छा चलती हूँ, सुमी की यात्रा शुभ हो और वो अपनी एक नई जिंदगी में खो जाए।

0: और पीछे टिक कर बैठिए। अरे अभी तो कई दिनों तक झुक कर बैठना होगा, है ना भैया? वैसे भाभी है बहुत खूबसूरत। भैया पापा की पसंद की दाद देनी पड़ेगी।
1: खूबसूरत है ये लड़की, वाह क्या कहना है, पारुल दीदी के पैरों की धूल भी नहीं है ये। इसे कह दो मंजू इसे आईएस बनना है, आईएस समझी?
0: जरूर बनेगी भैया, भला तुम्हारा कहना कौन टाल सकता है ना भाभी।

0: आइए
1: भाभी, अब उधर बैठिए। आइए भैया,
0: तुम भी चलो।
2: नहीं, मैं आंगन में जा रहा हूँ भाभी, ताई जी और बुआ जी के पास।
3: मुबारक हो लल्ला जी।
0: अरे तैया, दुल्हन है कि एकदम चांद का टुकड़ा।
4: किस्मत वाले हैं हमारे भी भैया।
0: अच्छी हो जी,
1: चाय पी लीजिए भैया।
0: अरे
1: आप लोग भी चाय पीजिए।
2: क्या कहा, मैं थक गया हूँ। इतनी जरूरी मीटिंग बुला रखी है मैंने, ऑफिस का सारा काम पड़ा है, ये कितनी सारी फाइलें निपटानी है, और तुम कहती हो मैं थक गया हूँ। ये चाय ले जाओ और उस लड़की को पिला दो जो मेरे कमरे में बैठी है।
1: वो भाभी है भैया, अभी परसों ही तो तुम्हारे साथ उनका ब्याह हुआ है। हम लोग ही तो उन्हें विदा करा कर लाए हैं। कितनी प्यारी है भाभी।
2: भाभी अच्छा मजाक है, किसी को भी सजा कर बैठा दिया और वो तुम्हारी भाभी हो गई। ये भी भाभी है, ये भी भाभी है। कितनी सारी भाभियां हैं, चारों तरफ भाभी भाभी भाभी। वाह, लो लो चाय पियो, लो लो भाभी, तुम भी पीनो, तुम भी पीनो, तुम भी पीनो।
0: अरे इसकी शादी क्यों कर दी गई है? हे भगवान, और बहू का क्या होगा? डॉक्टर ने कहा था चांद सी बहू आते ही ग्रहण लग गया, अब क्या होगा?
5: अरे बंदी भी तो पागल के साथ।
2: क्या कहा? अरे मैं पागल हूँ? तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम भी पागल हो, तुम पागल हो, पागल हो, पागलों की बारात है, पागलों की। मैं पागल, मेरा मनुआ पागल, पागल मेरी प्रीत रे। अरे ये मुझे क्या पहना दिया? हार, अंगूठी, ये लो, ये लो, ये लो, लूटो लूटो, पागल का ब्याह हुआ है। झूमो नाचो गाओ।
1: भैया भैया, ये क्या कर रहे हो भैया? भाभी बुआ पकड़िए इन्हें, मैं बाबूजी को बुलाती हूँ।
2: छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे मुझे छोड़ दो छोड़ दो। देखो देखो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो, तुम सब पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं
6: हूँ। क्या
2: मैं पागल नहीं?
1: बाबूजी बाबूजी बाबूजी बाबूजी,
6: क्या है मंजू बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो?
1: भैया को फिर दौरा पड़ा है बाबूजी, अनशन बोल रहे हैं।
6: क्या कह रही?
1: कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, चाची बुआ साबुन ही पकड़े हुए हैं।
6: घबरा मत, घबरा मत बेटी, मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ, उसे डॉक्टर क्या तुरंत ले जाना होगा। ऐसा कर, तू जल्दी डॉक्टर वर्मा को फोन कर दे।
1: अच्छा।
6: भाभी, राहुल, विकी, तुम लोग इसे लेकर पीछे बैठो। मंजू, तुम बेटे बहू को संभालना।
1: अच्छा बाबूजी।
6: घबरा गई होगी, हम लोग इसे लेकर अस्पताल तुरंत जा रहे हैं।
1: ठीक है बाबूजी। भाभी, ताई जी संभालिए भैया को। भाभी भाभी, ये क्या आप रो रही हैं? भैया ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। भाभी ये लीजिए, पानी पी लीजिए।
3: नई जिंदगी की शुरुआत, वो भी इस ढंग से। मंजू जी, क्या हो गया आपके भैया को? क्या इसकी वजह मैं हूं, या फिर ऐसे दौरे इन्हें पहले भी पड़ चुके हैं? सच बताइएगा मंजू जी, आपको मेरी कसम।
1: सच ही बोलती हूँ भाभी, मेरे भैया जन्म से ऐसे नहीं हैं।
3: तो फिर?
1: बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, हर इम्तिहान में टॉप करते थे, इतनी छोटी उम्र में अच्छी नौकरी भी मिल गई, बाहर भी घूम आई हैं। लेकिन अचानक ही हमारे परिवार में एक ट्रेजेडी हो गई।

0: ट्रेजेडी। हाँ भाभी, मेरे सबसे बड़े भैया का स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो गया। भैया उन्हें बहुत प्यार करती थी और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। 10 दिनों तक ना सोए और ना ही किसी से बात की। उसके बाद ही पहला अटैक पड़ा। इलाज किया गया, ठीक हो गई, मेहनत की और नौकरी भी मिल गई।
1: वहाँ ठीक रहते हैं?
0: हाँ भाभी, ऑफिस में बड़ी तारीफ करते हैं लोग उनकी, काम भी बहुत करते हैं।
1: और डॉक्टर्स क्या कहते हैं?
0: उम्मीद दिलाते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक रहते हैं, तभी तो उनका ब्याह किया गया है। भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? अरे अचानक ही दौरा पड़ गया होगा, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
1: नहीं मंजू जी, अभी भूख नहीं।
0: तो लेट कर सोने की कोशिश कीजिए, मैं अभी आती हूँ। शायद बाबूजी आ गए हैं।
1: कितनी सुंदर जगह ब्याह किया है अपनी लाडली बेटी का। रईस घराना, शानदार हवेली, 4-5 गाड़ियां, ढेरों नौकर चाकर और एक प्यारा सा पागल पति। अरे टेटी, इससे अच्छा होता अगर आप मेरा गला घोट देती। जीते जी मुझे मारने की क्या जरूरत थी टेटी? रीमा, रीमा तो सच कहती थी, इस चंदन वृक्ष से संघर्षों के सर्प लिपट गए हैं। बड़ा डर लग रहा है मुझे।
0: भाभी सो गई मेरी भाभी, कैसा निश्चल भूला चेहरा है, कुछ घंटों में ही कुंभला गया है। किस सम्मोहन में बांध दिया है मुझे इस मासूम ने। मुझे ही कुछ करना होगा, लगता है बाबूजी आ गए हैं। भगवान भैया ठीक हो गए हूँ। बाबूजी क्या हाल है भैया का?
2: क्या बताऊं बेटे, बहुत ही वायलेंट हो गया था।
0: है?
2: हाँ, अगर सावधानी न बरती जाती तो शायद शायद वो नर्स का गला ही खोल देता।
0: बाबूजी?
2: हाँ, उसे इंजेक्शन देने जा रही थी और वो इंजेक्शन बड़ा ही कष्टदायक था बेटा। हे भगवान, ये किस पाप की सजा दे रहा है मुझे?
0: पाप क्या होगा बाबूजी?
2: क्या कह सकता हूँ मैं, फिलहाल तो इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। राजेश बेटा।
3: जी बाबूजी।
2: कल सुबह सब जगह फोन करके डिनर कैंसिल करने की सूचना दे देना।
0: लेकिन बाबूजी, भाभी के मायके वाले ट्रेन से आ रहे हैं, चल ही दिए होंगे। बाबूजी, भैया की शादी करके आपने ठीक नहीं किया।
2: उस समय तो ठीक था बेटा, डॉक्टर की राय से ही तो सब कुछ हुआ था।
0: उन्होंने तो ये भी कहा था कि शादी से ठीक भी हो सकती है और बीमारी बढ़ भी सकती है, इसमें रिस्क है। हम सब ने आपसे मना भी किया था बाबूजी।
2: अरे बेटे की मोहब्बत को तुम लोग क्या समझोगे?
0: ठीक कह रहे हैं आप, उसके लिए एक क्या कई सुमी की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है।
2: मंजू, मंजू,
0: अगर आपकी बेटी के साथ भी यही होता तो।
2: चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप में आता है पर देती है।
0: सच कह रही हूँ, इसलिए आप सहन नहीं कर सकती। कितनी मासूम लड़की है, उम्र में भी मुझसे छोटी, उसकी सिसकियां, उसका रोना, उसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके लिए भी तो कुछ सोचिए बाबूजी।
2: अब तो बस एक ही उपाय है बेटी, शाम को उसके मायके वाले आ रहे हैं।

0: सोचता हूं उसे उनके साथ भेज दूंगा, शायद उसका वहां मन बहल जाए। जब रितेश ठीक हो जाएगा तो उसे बुलवा लूंगा।
1: ठीक है, मैं भाभी को मायके जाने के लिए राजी कर लूंगी। अब आप भी आराम कीजिए।
0: ठीक।
2: अरे आ गए आप लोग, सुमी भी आई है। डिनर कैसा रहा? सुमी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? रितेश कहाँ है?
3: मम्मी प्लीज, क्या सब बातें एक ही साथ पूछ लेंगी? सुमी बहुत थक गई है, उसे आराम करने दीजिए।
2: अरे क्या हुआ सुमी? अरे तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? देखूं तो? हाँ, अरे तुझे तो बड़ा तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। सुमी चल तू अंदर लेट जा बेटा। अरे जाना जल्दी से डॉक्टर को ले आ।
3: अरे हाँ बुलाता हूँ, आप उसके पास बैठिए।
2: सोया बेटा, क्या हो गया मेरी सुमी बेटी?
3: हाय डॉक्टर साहब, देखिए कितनी तेज बुखार है।
2: हाँ देखिए डॉक्टर साहब कितना तेज बुखार है।
4: इत्मीनान रखिए, मैं देख लेता हूँ। अरे भाई इसको तो बुखार है, ऐसा करता हूँ मैं इसे एक इंजेक्शन फिलहाल लगा देता हूँ, और ये दवाएं आप बाजार से मंगवा लीजिएगा, चार चार घंटे पर देते रहिएगा, सुबह तक बुखार उतर जाएगा।
2: ठीक है ठीक है,
4: और घबराने की कोई बात नहीं है।
2: ठीक है, जा बेटा दवाएं ले आ।
3: थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। सुमी सो गई है मम्मी, आप उस कमरे में चलिए, डैडी यहाँ बैठ जाएंगे।
2: ठीक है,
3: आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आइए।
2: हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है?
3: मम्मी हमें धोखा दिया गया है।
2: धोखा? कैसा धोखा?
3: हाँ मम्मी धोखा, वो बात यह है कि रितेश को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। कई महीनों तक वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा।
2: अरे?
3: वो तो कल शाम को ही फिर से उसे दौरा पड़ा, अब हॉस्पिटल में।
2: अच्छा,
3: उसके ड्राइवर ने हमें सब कुछ बता दिया मम्मी, नहीं तो हम तो धोखे में रहते।
2: नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भगवान ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा राकेश, मेरी मासूम बच्ची सुमी, ये क्या?
3: देखिए मम्मी इस तरह घबराने से कुछ काम नहीं चलेगा। मैंने और डैडी ने तय कर लिया।
2: क्या?
3: इस सुमी अब वहां नहीं जाएगी। रितेश वायलेंट हो जाता है मम्मा, तो जान पर भी हमला करता है। अब हम सुमी को नहीं खोना चाहते। मम्मी एक बार सुमी ठीक हो जाए तो उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देंगे, रीमा उसकी केयर करेगी, और रही ससुराल वालों की बात तो उनसे हम निपट लेंगे।
2: अच्छा।
3: अब ठीक है मामा, आप सुमी के पास जाइए।
2: ठीक है। आठ वर्ष बीत गए अपने आप से लड़ते हुए। वाह सुमी चौधरी वाह, बाहर मुखौटा पहन रखा है एक गंभीर प्राध्यापिका का, लेकिन अंदर छटपटाती है भोली भाली सुमी। क्या अपराध था मेरा, क्या अपराध था? भाग्य ने दुख भोगने के लिए मुझे ही क्यों चुना? अगर रीमा और डॉक्टर राजन न होते तो क्या होता मेरा? मैं तो टूट चुकी थी, और मैंने उन्हें बदले में क्या दिया? रीमा को दुख और डॉक्टर साहब को तड़प। आखिर वो क्यों तप रहे हैं एक टूटे हुए इंसान के लिए? मुझे हर वक्त समझाते रहते हैं।

0: क्या करूं क्या करूं मैं।
1: अंदर आ सकता हूं?
0: ओ आप आइए आइए बैठिए ना। रीमा का कोई खत आया? कैसी है वो? और जीजा जी और बच्चे तो ठीक है ना?
1: सब ठीक है। तुम कैसी हो सुमी?
0: अच्छी हूँ। सुना है आप बाहर जाने वाले हैं।
1: यहाँ रहकर भी क्या करूंगा सुमी? एक बात कहूँ सुमी, जिंदगी अनिच्छा से जी जाए तो बोझ बन जाती है, हर लम्हा बोझिल हो जाता है। अभी वक्त है सुमी, ये घेरा जो तुमने अपने चारों ओर बना रखा है उसे तोड़ दो, तोड़ दो सुमी। आज आखिरी बार कह रहा हूँ।
0: कैसे तोड़ दो? ये दुनिया ये समाज मुझे जीने देगा?
1: समाज समाज फिर वही समाज। क्या दिया है समाज ने तुम्हें? घुटन तनाव और दुख, तिल तिल कर जलने के लिए छोड़ दिया है तुम्हें, और लोग भी जल रहे हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या? हार गए हैं हम भी, क्या मिलेगा शिलाओं से टकराने से? चलता हूं, गुड बाय सुमी।
0: राजन।
1: सुमी
0: रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बहुत थक गई हूं।
1: सुमी
0: और अर्जुन
1: ओ सुमी, मैं जीत गया सुमी, मैं जीत गया। शायद चंदन वृक्ष से सांप हट गए हैं
0: और बिखर गई है माधक कंद।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक चंदन वृक्ष। इसकी लेखिका थी उषा सक्सेना, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजारा।
0: 1985 जमाना।
1: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
2: क्या?
0: 1993

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पांचवा भाग। बीते चार हफ्तों में रमेश तलवार ने एक से बढ़कर एक घटनाएं सुनवाई हैं। जाहिर है कई श्रोता भूल गए होंगे या कई नए श्रोता शामिल हुए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि पहले एपिसोड में रमेश तलवार ने कौन सी रोचक घटना सुनाई थी। तो चलिए बीते चारों एपिसोड्स में से कुछ दिलचस्प वाक्य दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं आगे की बातचीत। ये है रीकैप एपिसोड 1।
1: जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार बम्बई आ गए थे ऑलरेडी, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया है। यहाँ कोलीवाड़ा में जहाँ थे
2: जी,
1: तो वहाँ पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ
2: साइन में,
1: साइन कोलीवाड़ा। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T157
2: जी।
1: तो टी मतलब होता है टट्टी,
2: अरे
1: ओरिजिनल टट्टी थी वो।
2: ओ गॉड।
1: तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूजिक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई होली आई कुछ आया, ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया, छोटे छोटे रोल मिलने, तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा करता था
2: जी
1: के फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता था, डायरेक्टेड बाय रमेश तलवार, म्यूजिक बाय कुलदीप सिंह, ऐसा लिखता था।
2: जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है।
1: ना ना, वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा और वो कहते हैं कि ऐसा था उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बन रही है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है उसका नाम है सोतेला। तो मुझे उसके रोल के लिए ले जाया गया, कुछ छोटा मोटा टेस्ट लिया और मैं सेलेक्ट हो गया। और मद्रास एवीएम में जो है उसकी शूटिंग थी।
0: एपिसोड 2 में रमेश तलवार ने ये दिलचस्प घटना बताई थी।
1: तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तेफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त
2: बिल्कुल।
1: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृष्ण साहब से, कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है, मुझे असिस्टेंट रख लेंगे। एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आंख से, तो मैं काफी
2: आगे चला।
1: तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो। मनमोहन जी यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई, उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रखो यश अपनी पिक्चर है। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर चोपड़ा ने कहा 5वां असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
2: जी।
1: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात। मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ,
2: Yes.
1: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है 5 आने में। फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुर्ला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुर्ला, एक आने का टिकट वहां जाता, 5 आने की पिक्चर, एक आने का खाना और एक आना वापस आना, ठन्नी में पिक्चर
2: काम बन जाता था।
1: काम बन जाता।
2: कौन कौन सी फिल्में देखी
1: सब होगी? कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो, मैंने देखी है बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में। अब था वो चलते हुए एक बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें। तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने

0: देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया इसको जबरदस्ती पांचवा सीजन रखकर कोने में बैठा हुआ। सब आगे चले तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए। मैं गया मिलने,
1: जावेद साहब ने,
0: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे। तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है करेंगे आप? मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा। देखिये कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए
1: हाँ
0: फिर बोलिए। और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं, आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा। मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
1: वो भी आपके दोस्त।
0: अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिंपल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी।
1: जी जी।
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में,
1: हाँ
0: तो पिक्चर को बिल्डअप मिलता है ये उनके जहन में था। और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था, खराब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी। मैंने कहा यार वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही। और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
2: तीसरे एपिसोड में रमेश तलवार ने सुनाई थी ये घटना।
0: करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
1: बाप रे।
0: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में। और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
1: हाँ हाँ।
0: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म और एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
1: और सलमान खान ड्रॉप हो गए।
0: तो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
1: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
0: याद करते देखते हैं। नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
1: बिल्कुल। और थी भी वो
0: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
1: बड़ी स्टार कास्ट,
0: अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार।

0: राजेश तलवार से आपके दोस्त यूनुस खान की बातचीत के चौथे एपिसोड में ये हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प था।
1: तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया। उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ, लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे। नया न्यू कमर था राइटर,
0: जी जी जी,
1: उन्हीं का नाम है राइटर, है राइटर, स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सरदी कर ले तो। सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
0: हाँ।
1: तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव

0: चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत, जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है।
1: अच्छा, अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटकों की बातें करना चाहता हूँ जो आपने सेलिब्रिटीज के साथ किए हैं, जैसे शबाना आजमी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन के साथ नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है।
2: जी, सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक,
1: खूबसूरत।
2: पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रही है वो, और कोई और डायरेक्टर डर कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे, तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा बांटा ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश जी को पूछ लो, तो मेरे पास कोई आया जो भी ऐसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा, तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, प्ले स्क्रिप्ट बताई और मैंने वो सुनी और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है, प्ले था बहुत अच्छा था, और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एक्टर का।
1: जी जी,
2: मैंने कहा ये जो इधर सेंट्रम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, ये नहीं हो रही होगा, ये नहीं होगा, मेरे नाटक में नहीं होता।
1: जी जी जी,
2: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ।
1: जी,
2: नाटक में अमेरिका में बैठे तो मैं क्या करूँगा, तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब में काम करता वो, और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में। तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम में शूटिंग डेट्स होती हैं, फलां होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं वही दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। तो भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उन्होंने कहा मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट के साथ हम वहाँ गए, वहाँ उसके 5-6 शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके 4-5, फिर 5-6 शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल मुश्किल से 10-12 शो किए थे हमने।

0: शबन आजमी वाला प्ले
1: नहीं, इसके बाद हमने पहले ये, इनके बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था सागर साहब का, और फिर वो मैंने एक बनाई थी NFDC के लिए पिक्चर तेरा नाम मेरा नाम न्यू कमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो आया, उसने कहा मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो

0: कौन सा प्ले करना चाहते हो? उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला, ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको सूट करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है। और कौन है
1: जी
0: जो इसमें ठीक रहेगा? मैंने जिया जी के पास पूछते हैं, अगर वो करने के लिए हाँ कर दें। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का ABCL के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था, 50 एपिसोड किए थे उसके। तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत इज्जत उनकी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहे हैं, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं, अमित जी से भी बात कर लेती है। महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का, अलग अलग सिटीज में। उन्होंने सब्जेक्ट सुनाओ, मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया। और उन्होंने मुझसे कहा, ऑलमोस्ट हाँ है, फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे। मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे, अपने ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को बुलाऊंगा, सब जो भी देखना चाहें, और भी ऑडियंस में जिसको आप बुलाना चाहती है, मैं भी अपने लोगों को भी बुलाऊंगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेटे कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूंगा नहीं, फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा डेटों का, टूर का। बोले ठीक है। रिहर्सलें हुई, हमने शो रखा भाईदास में, प्राइवेट शो, जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए, सब सब ने, हमारे भी दोस्त फैमिलीज आई, सब ने देखा। लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि इनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी होना चाहिए। उन्होंने रमेश जी आप ही करिए।
2: अरे वाह।
0: उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा होता, मेरे प्लेस देखे हुए जब दिन में मैं एक्टर था। ये आप ही करिए, कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, आप करिए, आपने जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले, तो मेरे रिहर्सल करनी शुरू हो गया और फिर हमने अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया।
2: वाह वाह वाह।
0: उन्होंने कहा रोल मेन जया जी का, लेकिन आपका रोल भी बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में। आप जब जब आप आते हैं आपके एंट्री का इंतजार होता है, क्योंकि वो जया जी थ्रो आउट प्ले में है। और मेरा कभी कभी बीच में आता था मैं 3-4, तो सबने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।

फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब जिया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया, उसमें भी वो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए जो हस्बैंड का रोल है। अगेन मेरा रोल बीच में ही है लेकिन लाफ्टर लाफ्टर आते हैं मेरे आने पर, ऑल्दो मैं कॉमेडियन नहीं हूँ लेकिन वो रोल ऐसा होता है कि मुझे लाफ्टर तो मिलते हैं। वो रोल भी, वो प्ले, फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूर पे गए। अमेरिका से फिर गल्फ कंट्रीज भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्रीज भी गए। इस तरह हमारा 40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली। क्योंकि बाहर प्ले में आपको मुँह मांगा दाम, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, फिर डायरेक्टर को भी उस तरह मिल जाते हैं। इस तरह से हमको जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रु जी से मुलाकात हुई। तो उन दिनों कुछ दिल्ली जाते थे और ये सब, तो उन्होंने कहा यार मैंने तेरा प्ले देखा बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप करेंगे प्ले? नहीं करूँगा, रोल करूँगा। कब करना चाहोगे? कौन सी क्या स्क्रिप्ट सुनाओ। और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना और वो प्ले अच्छा है, आज तक चल रहा है वो भी। और उसमें राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय गोरडिया एज प्रोड्यूसर, वो एंट्री भी मारता है कुछ शुरू में। तो चार ही कैरेक्टर है, मैं उसमें रोल नहीं करता हूँ। वो प्ले भी हिट हुआ, आज तक चल रहा है। उसके बाद जीनत जी किसी शो पे आई थी, अमित जी के ना इनके शत्रु जी के, उन्होंने दो तीन बार अटेंड किया था प्ले। उन्होंने कहा आपका मेरे लिए स्क्रिप्ट है? मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा वो देखिए बात यह है कि संजय गुरड़िया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट बाद में सुनाऊंगा। क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई, फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आपका सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ। उन्होंने

बात जो भी मिशन प्रोड्यूसर हो गया, उन्होंने हाँ कर दी। अब जब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे, मैंने जया जी के साथ आपको रोल करते दोनों प्लेस में देखा है। मैंने कहा जी वहाँ जया जी की हाइट कम है, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है। बोले आप 6 इंच के जूते पहन लो। मैंने वैसे जूते बनाए, उनके ऑपोजिट रोल किया, हो गया। इतने में

0: हो गया।
1: इतने में एक प्ले था शीशो का मसीहा, फैज अहमद फैज की पोइट्री के ऊपर उनकी कहानी, लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था और वो हमने प्ले खेला। शबाना जी ने हाँ कर दिया। मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे? बोले तुम पूछो भाई, मैं नहीं बोलूँगी। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा, पढ़ना है खाली ना, याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूँगा और पोइट लगूँगा मैं। तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो वो लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए। लेकिन जो फिर तो उनके राइटर्स उस प्ले के, वो चाहते थे कि वो रोल करें खुद। तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है, अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूँगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले, शबाना जी को ये थोड़ा करूँगा कि अब आपके साथ ये करेंगे। तो उन्होंने फिर मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता हम थे राइटर ने। शौकत भाभी ने अपना अपनी आप बीती लिखी, तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका स्टेज पे, पढ़ा तालियां बज रही हैं, ये और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वो किताब पढ़िएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर, मैंने कहा शबाना इस पे हम प्ले करेंगे, क्या बात करते हो? मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहे कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे, आप दोनों का पेयर भी हो जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है, तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा अच्छा बनेगा? मैंने कहा उसमें बीज सारे हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है, उसमें भी आप बैठ के दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशो का मसीहा भी किया है हमने और ये भी है, बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर एक काम करिए, जावेद साहब से कहिए लिखे। मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए। बोले मैं नहीं कहूँगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी, आप अपने ढंग से आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो आप उनके उनकी स्क्रिप्ट को फिल्में बना चुके हो, कहिए। तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए। तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया, और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए तो उन्होंने कहा रमेश जी अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटें मैच करनी पड़ती है शबाना की और वो, तो आप किसी और मिले, तो आप कमलजीत सिंह करते हैं रोल, वो सेम रोल, और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर आई हुई है, जाएंगे बाहर।

0: रमेश जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट रहे हैं, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेस और इन दिनों जो कुछ नाटक आप कर रहे हैं उनके बारे में बताइए।
1: देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा हैं, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिलके, और फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, OTT पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शोज करते रहते हैं। तो इप्टा में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे
0: सबसे पुराना है।
1: पुराना है मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोहरे करने लगा था, उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि 14-15 साल का है, और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है श्याम का, उसमें कैरेक्टर का नाम श्याम है, तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं, और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना खुलवा या हिंदी में या कहीं और दूसरी जगह कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती थी, तो मैं बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया, उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे, चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें, और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था, और बाकी रात में नितिन सेठी उस वक्त के हीरो थे, वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल, अचला सिद्धेव उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये यहाँ से शुरू किया था। अब जो साहब मैंने वो प्ले का हमको शो मिल गया हैदराबाद में,

0: ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब, जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो पिगमिलियन पे था प्ले। तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ था नहीं, तो हमने कहा ये जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो, तो देखते हैं कि कितना तक क्या चाहिए। वो बोलने लग गए, सब लोग हिंदी में सेम लाइन है, पंजाबी और हिंदी नजदीक नजदीक की है, सिंपल वैसे ही वर्ड रखे, क्लिश हिंदी नहीं होगी, सिंपल हिंदी होगी। वो बन गया, जब एंड तक पहुंच गए फिर मैंने उसको फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शन करनी थी कर ली। वो करके हम लोग जाके हैदराबाद में हमने शो खेला और तब से लेकर अब आज तक ये नाटक हिंदी में चल रहा है। अब मैं वो रोल मेरे मैंने बंद किया तो रमन कुमार करता था वो रोल, मैं कोई और रोल करने लग गया। रमन कुमार के बाद राकेश बेदी वो रोल करने लग गया, फिर राकेश बेदी बड़ा हो गया, वो 20 साल का नहीं लगता, बड़ा लगने लग गया, तो अब कोई और बच्चा नया लड़का करता है। और मैं अब वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता हूँ कभी कभी, और मैं जब राकेश बेदी अवेलेबल होता है तो वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ।
1: वाह वाह,
0: तो वो प्ले आज तक चलता आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब का लिखा हुआ है और जिसमें बलराज सहनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कमलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी है उसकी।
1: जी जी जी, काबुली वाला भी चल रहा है।
0: काबुली वाला अलग है, काबुली वाला का ऐसा था कि यही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था तो रिंकी भट्टाचार्य जी विमला जी की बेटी वो आई, परीक्षित सानी के संग आई थी, तो उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबली वाला क्यों नहीं स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबली वाला एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्षन बनाना पड़ेगा वो करके, मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डायलॉग ओरिजिनल चीजें लेके एक स्क्रिप्ट बना के आपको सुना दूंगा। और परीक्षित सानी से कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, क्योंकि बलराज सानी ने रोल किया था। उन्होंने नहीं यार मैं अभी अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करनी, वो टाइम अलग था, अब नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है, तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी कभार करता।
1: मैंने दिखाई क्यूट प्ले है,
0: हाँ बहुत अच्छा है। तो लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है।

0: स्क्रिप्ट जो बनाई है फिल्म से लेके बनाई है और उसका हमने एक वर्षन स्टेज पे क्या हो सकता है उस तरह करके जमा लिया अपना और चलता है, लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है प्ले। तो उसके साथ मैंने एक बार जायदा हैना करके एक पाकिस्तान की राइटर है, उन्होंने काबली वाला लौट आया इन्हीं करेक्टर को लेके लिखा था और वो उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा बता। तो मैं एज इट इज जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आदमी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबली वाला जो एक्टरों के साथ अच्छे, ये सोलो पढ़ती है काबली वाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है तो तन्वी आदमी करती थी। तन्वी आदमी अवेलेबल नहीं हुई तो राजेश्वरी सचदेव ने एक आध बात कर लिया, फिर लुबना सदीकी ने एक आध बात कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग एक दो बार मेरे साथ करो और स्टेज पे पढ़ो, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और ये उसके सारे बीज जो है काबली वाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबली वाला जब उसकी बेटी पैदा, वो बच्ची जो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची बड़ी हो गया और वो डॉक्टर बन गई है और अफगानिस्तान में मरीज है आजकल और उनका इलाज करने वहां गई है। ऐसा लिखा, बहुत अच्छा लिखा हूँ। तो वो पोर्शन हमने काबरी वाला हमारा चलता रहता है।
1: रमेश जी, बहुत ही विस्तार से अब बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां आपने सुनाई अपनी जिंदगी की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी मेरे, ये मैं खुद भूल चुका था, अभी कई बातें याद कर रहा हूँ, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका वो तो भी ये आपका ही वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया जनाब।
2: अच्छा।

0: ये थी रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने पांचवा भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले

0: एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। हो सकता है आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइम

0: टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है. तो इससे बेसिकली हीट वेव है, एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में. हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है.
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज.

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल जाने सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

अभी आप सुन रहे थे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
2: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट है।
3: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध ना करें।
2: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें, और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुने।
3: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
2: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आके अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
3: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। जेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
2: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
4: नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। वॉल्यूम को कर लीजिए फुल, क्योंकि आपकी दोस्त दिशा श्रीवास्तव लेकर आ गई है मजेदार संगीत और बातें। तो भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे, और बढ़िया हो भी क्यों ना, जब रखती है पूरी युववाणी टीम आपका इतना ख्याल ढेर सारी बातों और मनोरंजन के साथ। तो देर किस बात की, चलिए फटाफट से जान लें कि क्या होगा खास आज आपके लिए कार्यक्रम युववाणी में। तो आपको बता दें, चर्चा में हम जानेंगे राष्ट्रमंडल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के बारे में। ज्ञान विज्ञान में बात होगी नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन की। संस्था में जानेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में। सुनेंगे भेंट वार्ता जिसमें आका

आकाशवाणी के 90 वर्ष पर रेडियो श्रोता अभिषेक मिश्रा से बातचीत की सदक हुसैन ने। और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि होंगे गीत संगीत, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि आपके आकाशवाणी का उद्देश्य ही यही है कि जन जन तक पहुंचे सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। तो चलिए बिना देर किए फटाफट से चलते हैं अपने पहले सेगमेंट चर्चा की ओर, जिसमें हम जानेंगे राष्ट्रमंडल दिवस के बारे में। एक ऐसा संगठन जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य की पहचान माना जाता था, लेकिन आज वैश्विक सहयोग का मंत्र सा बन चुका है। जी हाँ, बात हो रही है राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की। दोस्तों, राष्ट्रमंडल 56 देशों का एक संगठन है, जिसमें अधिकतर वो देश हैं जो कभी ब्रिटिश कॉलोनी रह चुके थे। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, लोकतंत्र को मजबूत करना और व्यापार, शिक्षा और कूटनीति के क्षेत्र में आपसी संबंध बेहतर करना। जी हाँ, इन क्षेत्रों में जब चीजें बेहतर होंगी तो सभी के लिए अच्छा होगा। हालांकि समय के साथ दुनिया बदल रही है और कई देश अब अपनी अलग पहचान को ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देशों में ये मांग उठ रही है कि वे पूरी तरह गणराज्य बने और ब्रिटिश राजशाही से जुड़े पुराने प्रतीकों को खत्म करें। फिर भी कॉमनवेल्थ एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच माना जाता है, क्योंकि ये छोटे और बड़े देशों को एक साथ संवाद और सहयोग का मौका देता है। राष्ट्रमंडल की सबसे खास बात यह है कि इनमें शामिल देश पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, लेकिन फिर भी वे आपसी सहयोग के लिए एक मंच पर जुड़े रहते हैं। यह संगठन किसी देश पर शासन नहीं करता, बल्कि सदस्य देशों के बीच संवाद और साझेदारी को मजबूत बनाने का काम करता है। कॉमनवेल्थ गेम्स भी इससे जुड़ा एक बड़ा उदाहरण है, जहां अलग अलग देशों के खिलाड़ी खेलों के माध्यम से एकता और मित्रता का संदेश देते हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्कॉलरशिप और युवाओं के लिए कई प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। इसके इतिहास से जुड़ा हुआ है 24 मई का दिन, जिसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। 1902 में एम्पायर डे मनाने की शुरुआत हुई, जो महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन से जुड़ा था। बाद में समय के साथ इसका स्वरूप बदलता गया और अब इसे पुराने साम्राज्य की बजाय सहयोग और साझेदारी के नजरिए से देखा जा रहा है। और उम्मीद है इन चीजों के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, तो काफी अच्छा लगा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने चर्चा के दूसरे विषय, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। जी हाँ, तो अब हम करेंगे इसकी बात। दोस्तों, आज 24 मई को ये दिवस मनाया जाता है। मारखोर, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कैपरा फॉल्कोनेरी कहा जाता है, ये दुनिया के सबसे बड़ी जंगली बकरी मानी जाती है। इसकी पहचान इसके खूबसूरत घुमावदार सींगों से होती है, जो इसे बाकी वन्य जीवों से अलग बनाते हैं। मारखोर मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान और मिडिल एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में ये खास तौर पर जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में देखा जाता है, लेकिन आज ये दुर्लभ जीव कई खतरों का सामना कर रहा है। जंगलों का कम होना, अवैध शिकार, जलवायु और मानव हस्तक्षेप इसकी संख्या को लगातार कम करते जा रहे हैं। यही कारण है संयुक्त राष्ट्र ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस घोषित किया है, ताकि दुनिया भर में इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और लोग जागरूक हों। मारखोर सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि पर्वतीय पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ, इसे बचाना प्रकृति के संतुलन को बचाना है। मारखोर पर्वतीय जंगलों के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। इसकी मौजूदगी यह संदेश और संकेत देती है कि उस क्षेत्र का पर्यावरण अभी भी स्वस्थ है। संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से दुनिया में मारखोर की संख्या बहुत सीमित रह गई है। इसके लिए संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे अनुसूची एक में रखा गया है, जिसे इससे सर्वोच्च कानूनी सुरक्षा मिलती है इस अनुसूची में रखने से। मारखोर के संरक्षण में सिर्फ एक प्रजाति ही नहीं बचती, बल्कि उसके साथ रहने वाले कई और दुर्लभ जीवों और पूरे पर्वतीय वातावरण की भी रक्षा होती है। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस पर ये संकल्प लें कि वन्य जीवों की रक्षा के लिए हम स्वयं जागरूक रहेंगे और लोगों को भी जागरूक

करेंगे। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम मिलकर गुनगुनाते हैं प्यारा सा गाना फिल्म विकी डोनर से, जिसे संगीत और शब्दों से पिरोया है रोचक कोहली ने और आवाज का जादू बिखेरा है आयुष्मान खुराना ने।

हमने सुना प्यारा सा गाना फिल्म विकी डोनर से, चलते हैं आगे। दोस्तों, आवाजों की दुनिया अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रही, तकनीक अब दिलों, शहरों और पूरी दुनिया को जोड़ रही है। इसी बदलती तकनीकी दुनिया की दिलचस्प जानकारी लेकर हाजिर है सेगमेंट ज्ञान विज्ञान, और आज का विषय है नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन। दुनिया तेजी से डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ रही है, और इसी भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन। 5G के बाद पूरी दुनिया 6G की तैयारी में जुट चुकी है। ये तकनीक केवल तेज इंटरनेट तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इंसानों, मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक स्मार्ट नेटवर्क में

0: जोड़ देगी। भविष्य में हम ऐसी दुनिया देख सकते हैं जहां ड्राइवर लेस गाड़ियां खुद फैसला ले, डॉक्टर दूर बैठकर ऑपरेशन करे और गांवों तक हाईटेक शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें। 6G तकनीक अल्ट्रा फास्ट स्पीड और बेहद कम लेटेंसी के साथ रियल टाइम कम्युनिकेशन को नई ऊंचाई देगी। भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और डिजिटल इंडिया के विजन के तहत 6G तकनीक को भविष्य की विकास शक्ति माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर 6G तकनीक हमारे जीवन और समाज को किस तरह से बदलने वाली है, चलिए जानते हैं। चूंकि नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा आधार होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसलिए विशेषज्ञों के अनुसार 6G नेटवर्क AI नेटिव होगा, यानी नेटवर्क खुद समझेगा, सीखेगा और निर्णय लेने में सक्षम होगा। इससे कम्युनिकेशन पहले से ज्यादा तेज, सुरक्षित और स्मार्ट बन सकेगा। 6G तकनीक के जरिए वर्चुअल रियलिटी, होलोग्राम कम्युनिकेशन और स्मार्ट सिटीज जैसी कल्पनाएं वास्तविकता बन सकती हैं। सोचिए अगर कोई इंसान हजारों किलोमीटर दूर होकर भी होलोग्राम के रूप में आपके सामने दिखाई दे, तो ये केवल साइंस फिक्शन नहीं बल्कि भविष्य की तकनीक होगी। इसके साथ ही एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एडुकेशन और ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। किसानों को दूर दराज इलाकों में भी रियल टाइम मौसम और खेती की जानकारी मिलेगी। मरीजों का दूर बैठकर इलाज संभव होगा और ऑटोनॉमस व्हीकल्स यानी बिना ड्राइवर की गाड़ियां बेहतर तरीके से काम कर सकेंगी। भारत सरकार भी आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया मिशन के तहत 6G तकनीक पर तेजी से काम कर रही है ताकि देश भविष्य की डिजिटल क्रांति में वैश्विक नेतृत्व कर सके। संभावनाओं के साथ ही कई बड़ी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। इतनी उन्नत तकनीक के दौर में साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी और डिजिटल असमानता जैसे मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण बन जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य के 6G नेटवर्क में अरबों डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होंगी। ऐसे में डेटा सिक्योरिटी और रिलायबल नेटवर्क की तैयारी करना बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा ये भी जरूरी होगा कि नई तकनीक केवल बड़े शहरों तक सीमित ना रहे बल्कि गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों तक समान रूप से पहुंच सके। इसीलिए भारत का फोकस इंक्लूसिव डिजिटल ग्रोथ पर है, जहां सभी को प्रगति का हिस्सा बनाया जाएगा। कुल मिलाकर 6G तकनीक आने वाले समय में दुनिया को एक नए डिजिटल युग में ले जाएगी, जहां इंसान, मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर भविष्य की नई तस्वीर बनाएंगे। उम्मीद है नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596240042 और 7800037222।
2: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर आकाशवाणी अयोध्या।
3: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
4: जग घूमे आथर जैसा न कोई।
2: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
3: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट संस्था की ओर, जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण

0: यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। पर्यावरण संरक्षण आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। बढ़ता प्रदूषण, जंगलों की कटाई, नदियों का दूषित होना और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं लगातार गंभीर होती जा रही हैं। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए और पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में की गई। ये एक विशेष न्यायाधिकरण है जिसका उद्देश्य पर्यावरण से जुड़े मामलों का तेज और प्रभावी निपटारा करना है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये मामलों को 6 महीने के भीतर निपटाने का प्रयास करता है। पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और प्रदूषण से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है। इसके साथ ही पर्यावरणीय नुकसान से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की ताकत रखता है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसकी क्षेत्रीय पीठें मौजूद हैं। बात करें एनजीटी की शक्तियों की तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी विशेष शक्तियां और पर्यावरण के प्रति उसकी सक्रिय भूमिका। ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरण कानूनों से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है। एनजीटी सिर्फ शिकायत मिलने पर ही काम नहीं करता बल्कि कई मामलों में खुद से संज्ञान यानी सुओ मोटो शक्ति का भी उपयोग करता है। यही कारण है कि इसे पर्यावरण संरक्षण का एक मजबूत प्रहरी माना जाता है। इसके कई महत्वपूर्ण फैसले देश भर में चर्चा का विषय रहे हैं। गंगा नदी प्रदूषण मामले में एनजीटी ने राज्यों को तुरंत कार्रवाई करने के लिए जुर्माना भी लगाया। वहीं यमुना फ्लैट प्लेन मामले में पर्यावरण नुकसान के लिए जुर्माना भी लगाया गया। उत्तराखंड बाढ़ मामले में पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल यानी जो प्रदूषण करेगा वही भुगतान करेगा सिद्धांत को लागू किया गया। साथ ही एनजीटी का उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद एनजीटी के सामने कई बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। सीमित संसाधन, न्यायिक सदस्यों की कमी, लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और सीमित अधिकार क्षेत्र इसकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। फिर भी एनजीटी ने समय समय पर अपने फैसलों से ये साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज का कर्तव्य है। ये संस्था विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण मिल सके। एक स्वच्छ, सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण ही सतत विकास की असली पहचान है। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं बेहद ही दिलचस्प भेंट वार्ता जिसमें आकाशवाणी के 90 वर्ष पर हमारे श्रोता अभिषेक मिश्रा से की बातचीत सदक हुसैन ने।
1: आकाशवाणी ने पूरे किए हैं अपने 89 वर्ष, 90 साल पूरा करने वाला है आकाशवाणी और हम सब ऐसे श्रोताओं से जुड़ रहे हैं जिनका रिश्ता रहा है आकाशवाणी से एक लंबा। हमारी बातचीत हो रही है शिक्षक अभिषेक मिश्रा जी से।
2: उस समय अनाउंसर हुआ करते थे, एक कमल शर्मा जी थे और एक निम्मी मिश्रा, और निम्मी मिश्रा को हम लोग सुनने के लिए आप समझ ही सकते हैं जो कह रहे हैं आप कहाँ तक पहुँच रहे होंगे।
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल दीवाने हुआ करते थे क्योंकि आवाज जो है कुछ पूछना नहीं है, बिल्कुल मस्त हो जाते थे हम लोग। तो इलाहाबाद में हमें लगता है कि एक तरह से जीवन संगिनी की तरह ट्रांजिस्टर हुआ करता।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक शब्द आपने यूज किया। ये शिक्षा में बाधा तो नहीं था?
2: बाधा नहीं था, सहयोग था। कौन कहता है शिक्षा में बाधा, हमारे लिए तो वरदान था।
1: वास्तव में शिक्षा, सूचना और मनोरंजन तीनों का जो ये समन्वय है, हमेशा वो मनोरंजन के जरिए भी हम कहीं ना कहीं कुछ सूचनाएं और शिक्षा की तरफ जाते
2: होता
1: हैं।
2: था जैसे
1: और आज भी ये हम लोगों ने मेंटेन रखा है आकाशवाणी।
2: जब मेरा खेती बाड़ी की तरफ रुझान आया
1: जी
2: या बागवानी की तरफ रुझान आया, जो कार्यक्रम आता था किसान बंधु करके एक कार्यक्रम आता था
1: जी,
2: आज भी हम सुनते हैं और उसमें कई तरह की दवाएं विशेष करके वो नाम लेते हैं फसल से संबंधित, हाँ काम आएगी। और ये आप मान के चलिए आज भी है, आज के भी सिलेबस में आप उठा के देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग का सिलेबस हो चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सिलेबस हो, पीसीएल और आईएएस के विशेष करके जो फ्री के प्रश्नोत्तर तैयार होते हैं उसमें 4 से 10 क्वेश्चन आपको उस पे मिल जाएंगे।
1: आज भी अगर कोई कृषि का विद्यार्थी हो, निरंतर जो है आकाशवाणी अयोध्या का ही किसान वाणी अगर सुन रहा हो, तो कोई ऐसा प्रोफेसर इंडियन यूनिवर्सिटी का, आसपास के विश्वविद्यालयों का वैज्ञानिक नहीं बसता है जो प्रतिदिन नियमित रूप से हमारे यहाँ आमंत्रित ना हो और हर विषयों पर बारीक बातचीत आकाशवाणी के माध्यम से जाती है।
2: आज भी सदक जी जो बौद्धिक वर्ग वो अपने बच्चों को जोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन जो मीडिया का, ये विशेष करके सोशल मीडिया का जो एक अंधा दौर आया है देखने के लिए।

0: जो लोग आकर्षित हुए हैं
1: जी.
0: वो दिन दूर नहीं है कि जब दो चार साल में, चार छह साल हो सकता है लग जाए, एक दशक लग जाए, फिर लोग इसी तरफ आएंगे.
1: हाँ.
0: और इसको हाथों हाथ लेंगे.
1: सही.
0: और आज भी अपने को बहुत मॉडिफाई भी किया है, ऐसा थोड़ी है.
1: सोशल
0: मीडिया भी लगातार अपने को जोड़े हुए हैं. आप चाहे यूट्यूब पे देखेंगे, चाहे इंस्टाग्राम पे देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, तो उनके कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वहाँ भी हमको जो है सूचित हो जाते हैं. लोग ऑलरेडी तैयार रहते हैं.
1: पत्र नहीं लिखने पड़ रहे हैं आप.
0: जब हमारा बचपन था, बचपन था तो इतना मजा आता था हम लोगों को कि गांव भर के हमारे लड़के, तो एक हमारे यहाँ अरुण मिश्रा हुआ करते थे, हम लोगों से सीनियर थे, 7 साल सीनियर थे, तो वो उस समय इंटरमीडिएट में पढ़ते थे. तो वो गाना सुनने के लिए जो फरमाइशी कार्यक्रम आता था पत्र वाला, तो वो भेजते थे गाने और हम लोगों के नीचे नाम लिखा रहता था और गांव का नाम लिखा रहता था. हम लोग सुनने के लिए उत्सुकता से, और कई बार जो है संजोग रहता था को आ भी जाता था, सारे लोगों का अभिषेक, अरविंद, बबलू, डब्लू, इस तरह से नाम है, हम लोग ताली बजा देते थे, इतना आनंदित हो जाते थे कुछ पूछना नहीं. लग रहा है गोल्ड मेडल लेकर के आ रहे हैं.
1: बिल्कुल.
0: तो इस तरीके से जीवन हम लोगों का
1: आज भी बड़ा आसान हो गया है. ये एक दो घंटे पहले पोस्टर्स लगाए जाते हैं और 100 से ज्यादा मैसेजेस और फरमाइशें आ जाती हैं. व्हाट्सएप के जरिए भी फरमाइश हम लोग ले रहे हैं, फोन के जरिए हम लोग लाइव सजीव फोन इन कार्यक्रम फरमाइशी फिल्मी के तहत. ये प्रतिदिन आकाशवाणी आपको अयोध्या से.
0: वैसे भी सर जो है सुनना गाना तो भैया बहुत सारे संसाधन है जो आप चाहेंगे वहाँ से सुन सकते हैं, लेकिन जो आपके यहाँ आकाशवाणी से हम लोगों की फरमाइश के माध्यम से जो सुनने को मिलता है उसका आनंद ही द्विगुणित होता है. और मेरी फरमाइश कई लोग सुनते हैं, ये और द्विगुणित कर देता है हमको.
1: मेरी आवाज कितने लोग सुनते हैं,
0: सबसे बड़ा आनंद का विषय हम लोगों के लिए यही था सर.
1: बहुत सारे श्रोता इस तरह से आते हैं इन कार्यक्रमों में जो अपना कुछ अच्छा विचार, अच्छा संदेश लेकर आते हैं. जो हम कुछ तुमने कहा कार्यक्रम में भी, हम श्रोताओं के विचार, उनकी शायरी, उनका संदेश भी शामिल.
0: ये सारी चीजें सर हमको लगता है कि ये अब के समय में मॉडिफाई की गई है ज्यादा, हमको लग रहा है कि इस पे फोकस किया.
1: जो नई जनरेशन है उसको कहीं ना कहीं हमें इस अच्छे मन से जोड़ने का प्रयास करना है. तो हम वहाँ पर भी जुड़कर इनको अपने साथ जोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं. आकाशवाणी इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया में पहुंच रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: इंटरनेट तो आजतम क्रांति तो लाया ही है और ये अच्छा संकेत है. हमें लगता है कि सारे लोगों को सुचारू रूप से, समय से और त्वरित आकाशवाणी का संदेश इंटरनेट के माध्यम से मिल रहा है. ये इसके उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करता है और हमें लग रहा है कि इस इंटरनेट के माध्यम से आकाशवाणी हमारा ज्यादा पल्वित पुष्पित होगी.
1: आकाशवाणी ने अपने 90वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके भविष्य को लेकर?
0: दरअसल भविष्य तो हो सकता है कि इस सोशल मीडिया के अंधी दौड़ में हो सकता है कि कुछ लोगों को लग रहा है कि श्रोता कम हुए हैं.
1: जी.
0: कम तो नहीं हुए होंगे आबादी की तुलना में देखेंगे. हाँ, तो जो जाहिर सी बात है श्रोता की संख्या परसेंटेज हो सकता है कम हुआ हो ओवरऑल. तो ये ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल का दौर होगा सर, उसके बाद फिर ये दौर आएगा और ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर ये गूंज उठेगी और आकाशवाणी हम लोगों का फिर वही जो है चहेता चैनल होगा, चहेता मीडिया होगा कि जो हम लोग पहले बचपन में सुना करते थे और उससे आसान्वित हुआ करते थे, बच्चों का भविष्य उसमें देखा करते थे, अपनी कल्पनाशीलता बढ़ाते थे. वास्तव में ट्रांजिस्टर का वो दौर था सर कि जब हम कल्पना करते थे सुनते हुए किसी न्यूज को, किसी वैज्ञानिक सोच को, किसी किसान भाई के सोच को, तो अपनी कल्पना भी करते थे क्या वैज्ञानिक बन सकते हैं हम लोग, ऐसा कर सकते हैं. वो हम लोगों का समझ लीजिए उद्गम केंद्र था.
1: आज भी इमरजेंसीज में कहा जाता है कि आप अपना ट्रांजिस्टर साथ रखिए.
0: जी जी जी जी जी, बहुत बहुत बड़ी बात. जैसे अभी भूकंप आ जाए तो,
1: या अभी युद्ध की जब स्थितियां बन रही थी तो उसमें टीवी नहीं कहा गया, उसमें रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो कहीं भी आप ले जाएंगे. और कहते हैं सर, जहां न पहुंचे पानी वहां पहुंचे आकाशवाणी.
0: पानी, जी जी जी सर, वो चीजें आज भी प्रासंगिक हैं सर. और हम उम्मीद करते हैं कि ये 90 वर्ष तो ये समझ लीजिए उत्कर्ष के साथ ले ही आया है. आने वाला इसका 900 वर्ष इसके उत्कर्ष का चरमोत्कर्ष होगा, ऐसी शुभकामना मेरे आकाशवाणी के लिए है. और मैं उम्मीद करता हूं, मैं तो इसके साथ जिया हूं, कभी इसके बारे में कुछ मतलब निगेटिव सोच ही नहीं सकता हूं.
1: आकाशवाणी निश्चित रूप से आगे बढ़े क्योंकि ये अच्छा है, हम सब के लिए अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, युवाओं के लिए अच्छा, महिलाओं के लिए अच्छा, महिलाएं घरेलू महिलाओं के लिए अच्छा है. उनका कार्यक्रम हम वहां पर दे रहे हैं, किसान भाई हमारे लाभान्वित हो रहे हैं. और ये आपकी बात कहीं ना कहीं मुझे सच लगती है अभिषेक जी, क्योंकि आने वाले समय में लोगों के पास वक्त कम होगा, काम ज्यादा होगा, जिंदगी भागती हुई है और मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतना समय होगा कि अपनी आंखों को व्यस्त करें. वो काम करते करते ही उन्हें कुछ देखना सुनना होगा, समझना होगा, और रेडियो उसमें मुझे लगता है ज्यादा सार्थक
0: होगा. उसके पीछे का कारण है सर, जैसे जो हमारी आंख है वो तो काम के लिए ऑलरेडी हमको, अब तो हमें लग रहा है लिपिबद्धता वगैरह खत्म हो जाएगी, सब कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया है, सब स्क्रीन पे हमको काम करना है, तो हम इतना ऑलरेडी आंखों से थक जाएंगे, हमको सुनना ही बचा रहेगा और वो हमारा आकाशवाणी हमको परोसेगा.
1: शानदार बातचीत हमसे की अभिषेक मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद.
2: हमने सुनी भेंट वार्ता आकाशवाणी के 90 वर्ष पर, जिसमें अभिषेक मिश्रा ने

0: काफी गहराई से रेडियो के साथ अपने रिश्ते को बयां किया। आपको बता दें, ये बातचीत की सदक हुसैन ने। अब करते हैं बेहद गंभीर विषय पर बात। जी हाँ दोस्तों, गर्मी का मौसम अब सिर्फ असुविधा का कारण नहीं रह गया, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। दुनिया भर में बढ़ती हीट वेव यानी लू की घटनाएं लोगों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही हैं। अंत में हम ये भी जानेंगे कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें NDMA ने इमरजेंसी किट में अपने साथ रखने को कहा है। विशेषज्ञों का मानना है, क्लाइमेट चेंज के कारण आने वाले सालों में हीट वेव्स की तीव्रता और अवधि दोनों बढ़ सकती है। हीट वेव सामान्य गर्मी नहीं होती। जब किसी क्षेत्र में लगातार कई दिनों तक तापमान सामान्य से बहुत अधिक बना रहता है, तब उसे हीट वेव कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं हीट वेव से कैसे बचे। विशेषज्ञों के अनुसार गर्मी के समय शरीर को हाइड्रेट रखना सबसे जरूरी है। प्यास लगने का इंतजार किए बिना समय समय पर पानी पीना चाहिए, क्योंकि शरीर से लगातार पसीने के रूप में पानी और जरूरी मिनरल्स बाहर निकलते रहते हैं। तेज धूप से बचना चाहिए, खासकर 11 से 1:30 बजे तक दोपहर में। कपड़े लाइट पहने, सिर ढककर निकलें, छायादार जगहों पर रहें, घर को ठंडा रखने के लिए दिन में खिड़कियां बंद रखें और रात के समय खोलें। साथ ही घर पर सामान डिलीवर करने वालों को ठंडा पानी पूछें। अब आपको बता दें कि NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपने साथ इमरजेंसी किट में किन 5 चीजों को रखने को कहा है। सबसे पहले है पानी का बॉटल, दूसरा है छाता, कैप या सिर ढकने के लिए कपड़ा, तीसरा है तौलिया, छोटे टॉवल्स, और चौथा है हैंड फैन, और पांचवा है इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोस या ORS। इन चीजों को साथ जरूर रखें। उम्मीद है आप स्वयं को तो सेफ रखेंगे ही, साथ ही दूसरों का भी ध्यान देंगे इस भीषण गर्मी में। अब टिक टिक करती घड़ी की सुई कह रही है कि वक्त हो गया है विदा लेने का। कार्यक्रम कैसा लगा लिखकर बताइए हमें हमारी ईमेल ID yuvvaniayodhya@gmail.com पर। इसी बात के साथ कि आप सदैव रहें प्रसन्न और रखें अपना पूरा ध्यान, आपकी दोस्त दिशा श्रीवास्तव लेती है इजाजत। मिलेंगे नए अंक में नए विषयों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 MHz FM बैंड पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
1: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा

0: सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए #वंदेमातरम150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: कार्यक्रम लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 101.9 MHz FM बैंड पर।

0: हरि आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरि आई सेंटर जनाना हॉस्पिटल रोड रिकाबगंज फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161877347।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत आकाशवाणी का। ये अयोध्या केंद्र है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। शाम के 6 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार, पहले हिंदी में इसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहां इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने तीसरे ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 102.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।

0: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका देशौ रणनीतिक सहभागितां सुदृढ़ीकरणाय पुनः पुष्टिं कृतवन्तौ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शीघ्र व्यापार संधेः आह्वानम् अकरोत्। सहैव राष्ट्रस्य कृते ऊर्जा आपूर्तेः विविधीकरणे बलम् अददात्। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता पार्टीति दलस्य प्रत्याशी देवांशु पांडा इत्येषः फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य पुनर्निर्वाचने महति विजयम् अवाप्नोत्। अमेरिकीय विदेश मंत्री मार्को रूबियो उक्तवान् यत् भारतं संयुक्त राज्य अमेरिकायाः अत्यंत महत्वपूर्णेषु रणनीतिक सहभागिषु अन्यतमः अस्ति इति। प्रशासनेन इबोला संक्रमणस्य प्रकोपं दृष्ट्वा सर्वे भारतीय नागरिकाः कांगो युगांडा तथा दक्षिण सूडान देशेषु अनावश्यक यात्रां न कर्तुं परामर्शः प्रदत्तः। पाकिस्तानस्य बलूचिस्तान प्रान्तस्य क्वेटानगरे रेलमार्गस्य समीपे जाते विस्फोटे 24 जनाः मृताः। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य कोलकाता नाइट राइडर्स दलं दिल्ली कैपिटल्स दलेन सह कोलकाता स्थिते ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे प्रतिस्पर्धां करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। डॉक्टर एस जयशंकरः मार्को रूबियो चोभौ अद्य नवदिल्लीनगरे अनेक विषयेषु चर्चाम् अकुरुताम्। उभौ भारत अमेरिका सामरिक सहभागितां महत्वपूर्णाम् अवदताम्। ताभ्याम् उक्तं यत् एषा सहभागिता व्यापार ऊर्जा गतिशीलता क्षेत्रीय सुरक्षा क्षेत्रेषु विशेष रूपेण अस्ति। डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् भारतस्य अमेरिका देशेन सह व्यापकः वैश्विकः सामरिक सहभागित्व सम्बन्धः अस्ति। यः गहन सहयोगे आधारितः अस्ति। सः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धाः सम्पूर्ण विश्वे प्रभावं जनयन्ति तथा च अनेकेषु क्षेत्रेषु तयोः हितानि समानानि सन्ति। विदेश मंत्री उक्तवान् यत् एषा वर्तमान चर्चा कठिन वैश्विक परिस्थितिषु अभवत्, परञ्च तस्मै मुक्त मनसा सार्थका चर्चा भविष्यति इति विश्वासः अस्ति। सः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः मध्ये व्यापार सन्धेः शीघ्रमेव अन्तिमरूपेण निर्धारणम् आवश्यकम् अस्ति। तेन ऊर्जा व्यापारे जातस्य विस्तारस्य स्वागतं कृतं तथा च उक्तं यत् विविध स्रोतेभ्यः ऊर्जायाः आपूर्तिः भारतस्य ऊर्जा सुरक्षायै अत्यावश्यकी वर्तते।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: डॉक्टर जयशंकरः जनसम्बन्धानां महत्त्वं प्रतिपादयन् अवदत् यत् वैधानिक आवागमने प्रतिकूलः

0: लगातार उष्णतरङ्गस्य कृते रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति। ऋतुविज्ञानविभागेन सूचितं यत् आगामि पञ्चदिनेषु उत्तरप्रदेशे मध्यप्रदेशे विदर्भे पंजाबे हरियाणायां चण्डीगढे दिल्ल्यां च पृथक् पृथक् स्थानेषु उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यति। आगामिषु त्रिषु दिनेषु एतेषु स्थानेषु तीव्र उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भवितुमर्हति इति विभागेन पूर्वानुमितम्। भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता तथा केन्द्रीय मन्त्री पीयूष गोयलः अद्य कांग्रेस दलस्य नेतुः राहुल गांधिनः उपरि देशे अराजकत्वं प्रवर्तयितुं गभीरं षड्यन्त्रस्य आरोपं कृतवान्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पटले सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः विरुद्धं गांधिनः वक्तव्यं सर्वैः विपक्षिदलैः सह कांग्रेस दलस्य प्रमुखं षड्यन्त्रं सूचयति। अन्ते क्रीडावार्तायां, आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य प्रथमे द्वन्द्वे मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स दलयोः मध्ये स्पर्धा प्रचलति। प्रथमं क्रीडता राजस्थान रॉयल्स दलेन अष्ट क्रीडकानां हानिपुरस्सरं 75 धावनांकाः विनिर्मिताः। अपरतः द्वितीये द्वन्द्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
3: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 98-39-56-31-29 व 96-82-075-221।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: आइए अब सुनते हैं अरविंद मौर्या और साथियों के स्वर में ये किसानी गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत आकाशवाणी का। ये अयोध्या केंद्र है 102.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
0: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 बजे के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
2: पंचो जय हिंद। पंचो, देखा मीना बहनी अपन कृषि जगत कार्यक्रम लेके हाजिर हैं, तो सबसे पहले बताए दे कि आज हम अपने कार्यक्रम में का को लेके आए हैं। तो चर्चा हुए पर्यावरण संरक्षण पे, ये के साथे साथे पंचन का एक निक के बतकही भी सुनवाओ, गर्मी की जुताई के लाभ और यह विषय पे जानकारी दे हैं डॉक्टर आनंद सिंह और इनसे अपन पूनम वर्मा बहनी बतवान है। यह के अलावा एक किसानी गीत भी सुनवाओ शास्त्री यादव और उनके साथी के स्वर में है। मौसम के जानकारी के साथे साथे कल के कार्यक्रम के भी चर्चा की जाए। तो पंचो, पर्यावरण संरक्षण यानी अपने प्राकृतिक परिवेश का प्रदूषण और क्षरण से बचावे के ताई कीन जाए वाला व्यवहारिक प्रयास और नीति अंश है। पर्यावरण संरक्षण से पृथ्वी पर रहे पर जीवन सुरक्षित रह सकत है। आज सभी जानत है कि पर्यावरण हमार कितना प्रदूषित है और यह के जिम्मेदार और क्यों नहीं भैया, अपने सभी हैं हम और तू सभी। यही कारण है कि आज अपने सबके जीवन आराम से चलब मुश्किल हो गवा है, यानी अपने सबका शुद्ध हवा में सांस ले भी मुश्किल हो गया है। हवा ही नहीं, पानी भी देखा प्रदूषित मिलत है। जौन अपने सब खाद पिए थे वहू प्रदूषित है, यानी रासायनिक खादन के इतना प्रयोग कीन गवा है कि कितनों नीक के मने भोजन फल फूल खात है मुला शरीर में कुछ होना ही लागत है। और इस सब के कारण है आपन जौन पर्यावरण है, शुद्ध हवा के तो नामो निशाने नहीं रहेगा है, काहे कि आज पेड़ पालों के संख्या दिन प्रतिदिन घटते जाते हैं। आज जरूरत है कि बढ़ते जोन तापमान बढ़त है और ग्लोबल वार्मिंग के का नियंत्रण करे के। पर्यावरण संरक्षण तबे हुई जब जीव जंतु और पेड़ पालों का अपने सब ही रक्षा करी। अपने सबके तो देखा भैया यही कर

0: तब बनत है कि हम आपन आवे वाली जौन पीढ़ी है ना उनके ताई सब संसाधन मुहैया कराई और वह के ताई जरूरी है स्वच्छ जल शुद्ध वायु और एक साथे साथे उपजाऊ माटी यानी ऐसन संसाधन का अपने सब बचाए राखी ताकि आवे वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सके। पर्यावरण संरक्षण के ताई अपने सबका छोट छोट योगदान दे पड़े और यही छोटा छोटा योगदान जो है ना अपने सबके वो बड़ा बदलाव कह सकत है। सबसे पहले तो अपने सबका चाहे कि घर घर माँ आपन जोन है ये पेड़ पालो तो लगौबे करे साथे साथे जोन हर घर में देखा जाते कि जो नी प्लास्टिक आएगवा है पन्नी आएगवा है ये आपने घरे में सब केहू के घरे में एक आपन बढ़िया के स्थान बनाए ली किसे। पैकेट के प्रयोग तो अपने सब करते हैं हन साथे साथे प्लास्टिक के बर्तन में खाना पकाओ गरमाओ यह तरह के उपयोग भी अपने सब ही खरीद है। आज बाजार में से आवे वाला हर पैकेट डिब्बा बंद प्लास्टिक होत है पन्नी में हर चीज खाए वाला पैकेट हो के आवत है और देखे में भाई सुरक्षित रहते है देखे में नीक लागत है और अपने सब ही ओका घरे ले आए थे आराम से अपने सब खाए थे गिदहरे भी खाते है। और यही पन्नी हर घर से अगर देखा जाए तो कितना ज्यादा निकरत है। तो अगर अपने सब पर्यावरण का सुरक्षित रखा चाहिए थे ना तो ये प्लास्टिक पन्नी ये के उपयोग अपने सब बंद करी बिल्कुल घर में ना लाई और ये के जगह पे जूट और कपड़ा के थैला हो गया कागज के जोन पैकेट रहत रहा पहले ओके उपयोग होवे करत रहा अखबार के बनत रहा बांस पेपर वाले का बनत रहा वह का उपयोग मा करी कपड़े के थैला लेके जाई बाजारे ताकि वो पन्नी अपने घरे मा प्लास्टिक अपने घरे मा बिल्कुल ना आवे। सब जानत है कि ये प्लास्टिक तो नष्ट नहीं होते ना सड़त है और ना गलत है और यही लिए ये आपन जो भूमि है ओका धीरे धीरे खराब कर देत है ओके उर्वरा शक्ति बिल्कुल खत्म कर देत है। यह लिए जरूरत है कि अपने सब ऐसे दूर रही ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाई वह के देखभाल करी अपने घरे के आसपास अपने सब हरियाली रखी जैसे गृह वाटिका अपने सब घर के आसपास जोन जगह है वह मां लगाई घर के पास अगर जगह है तो देखा नीम है पीपल है ये के पेड़ लगाई बरगद लगाई दे और खाए वाला जैसे भाई आम है फल वाला एका लगाई ताकि शुद्ध हवा और फल फूल भी अपने सबका मिलत रहे। आवश्यकता ना हुए तो बिजली पंखा बिल्कुल बंद रखे साथे साथे देखा थोड़ा पैदल भी चले के प्रयास करे साइकिल के उपयोग करे और सार्वजनिक परिवहन जो है ना वह के इस्तेमाल करे बिना वजह गाड़ी के स्टार्ट ना रखे अपने वाहन का देखा प्रदूषण मुक्त रखे के ताई जांच समय समय पर भी करावत रहे के चाहिए। देखा पर्यावरण जब सुरक्षित रहे ना तो यह के अपने सबके जीवन भी पूरी तरह से सुरक्षित रहे और ई पर्यावरण का सुरक्षित रखे के ताई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा तमाम प्रकार के नीतियां भी और नियम भी लागू की इन गवाह है। मुला भैया ई नियम और नीति तब सफल हुई जब अपने सब ही यह पर अमल करी घर स्कूल गांव शहर में जो उन्हें वृक्षारोपण अभियान चलावे कहा भी जावत है कि अपने आपन जो धरती मैया है ना यह के सेवा एक पुत्र के समान करे का चाहे और ई धरती मैया ही हमें सब कुछ दे जीवन देत है और ई जीवन के बचाए के ताई अपने सबका पर्यावरण के संरक्षण जरूरी है करम। और पर्यावरण भैया देखा सुरक्षित रहे तो आपन खेती बाड़ी भी बढ़िया होते है। अब ऐसे थी गर्मी के मौसम चलत है और गर्मी के मौसम में खेती के अगर अपने सब जुताई खेतन के कह देना तो वह से बहुत लाभ होते है। गर्मी की जुताई के लाभ देखा ऐसा एक बात कही भी लेके आए हैं यह विषय पे बतावत हैं डॉक्टर आनंद सिंह और इनसे बतवान हैं पूनम वर्मा बहनी तो चला सुना जाए।
1: पंचो खेती पाती हमारे सबन के मुख्य व्यवसाय है और हम सब ही के ये पूरी कोशिश रहते है कि अपने खेती किसानी से कौन यस जतन अपनाई जाए, कौन यस तरीका अपनावा जाए कि हम

0: तो भाई लागत कम लगाई लेकिन फायदा पूरा हर मिला करे। तो देखें ये सब तो हम सभी अनुभवी किसान से मिले थे, उनसे अनुभव ले थे, तमाम मेला प्रदर्शनी में जाए थे, वहाँ से नीक नीक जानकारी ली थे, लेकिन जानकारी दे के सिलसिला में अपन आकाशवाणी भी पीछे ना है। देखें ऐसे हर दिन अपने किसान पंचन के ताई बढ़िया बढ़िया जानकारी खेती पाती से संबंधित दवाई जाते। और यही क्रम में आज हम अपने बीच में अपने स्टूडियो में बुलाए बाटी डॉक्टर आनंद सिंह, जो उनकी सहायक प्राध्यापक हैं मृदा विज्ञान विभाग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या। तो डॉक्टर आनंद जी, सबसे पहले तो आपके स्वागत करिए थे अपने पंचायती में।
1: नमस्कार मैडम।
0: और जैसे कि आज के हमारे विषय है कि गर्मी की जुताई के लाभ, विषय पे बढ़िया बढ़िया जानकारी होते तो आज कहे ना गर्मी की जुताई के का का फायदे हैं
1: जी।
0: हम सबन के हम किसान पंचन के मिला तो ओके बारे में चर्चा हो जाए
1: जी। सबसे पहले किसान भाइयों को ये जानना जरूरी है कि गर्मी की जुताई क्या है। अगर हम बात करें तो गर्मी की जुताई जो है गर्मी के समय में ये अप्रैल से लेकर के जून तक के महीने में, जब तक की बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, उस समय तक जब हम गर्मी की जुताई, गर्मी जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी को हम कई तरह के हमारे हल आते हैं, जैसे मोल बोल प्लाऊ आता है, चीसल प्लाऊ आता है, तो उससे जो उसकी ऊपरी सतह है उसको जब हम पलट करके नीचे कर देते हैं और हमारा जो गर्मी की जुताई जो है बेसिकली अप्रैल से लेकर के जून के महीने में ये हमारा होता है, क्योंकि इस समय हमारा जो खेत रहता है वो खाली रहता है।
0: तो ये मतलब खेत खाली बा, घाम बहुत तेज बा, तो हम ये जुताई के फायदा ले सकते
1: जी जी जी। इसके जो है बहुत सारे फायदे हैं, जैसे गर्मी की जुताई, क्योंकि
0: जैसे बतावा जाता है तमाम तरह के हल होते हैं जिससे हम जुताई कर सकते हैं। तो कितना इंच गहरान में हमें जुताई करेगा,
1: जैसे एक खाती जो अलग अलग जो है फल हल आता है, जैसे हमारा मोल बोल प्लाऊ आता है, तो वो जो ऊपरी की परत अगर बहुत हार्ड है, बहुत कठोर हो गई तो उसको कर देता है। लेकिन 0 से 15 या 15 से 30 सेंटीमीटर तक हमारा जो है जुताई होना चाहिए। हाँ, और एक खातिर जो है जैसे चीसल प्लाऊ आता है, उसके बाद हमारा कल्टीवेटर से भी आता है या मिट्टी पलटने वाला हल आता है, तो इस सबका उपयोग करके हम जो है अपनी मिट्टी में गहराई तक जुताई कर सकते हैं। और गहराई तक, जितनी गहराई तक जुताई होगी, हमारा जो मिट्टी की संरचना है, मिट्टी का जो गुण है, मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता की बात करें, मिट्टी में पोषक तत्वों के संचयन की बात करें, मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता, उसमें जो है ये सुधार होता है।
0: अच्छा, जुताई करे से
1: जी।
0: अच्छा,
1: और इसमें अगर हम कुछ और सुधार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें इसे खरपतवार नष्ट हो जाता है, तो अगर गर्मी की जुताई में अगर हम करेंगे तो जो भी उसमें जो ऊपर अगर हमारे कुछ ऐसे खरपतवार हैं तो उनका जो है वो मिट्टी पूरा पलट देता है, जैसे चीसल प्लाव एम प्लाव, तो वो जो है क्या होते हैं वो धीरे धीरे उसमें जो है वो सड़ जाते हैं,
0: मतलब जड़ जो है अंदर से वो निकल के
1: ऊपर आ जाते हैं।
0: गर्मी में
1: गर्मी बहुत ज्यादा रहती है जी, तो उसमें जो है उसका नष्ट हो जाता है। दूसरा हमारा लाभ है कि जैसे जो कीट होते हैं, तो कीट के जो अंडे वगैरह देते हैं वो अंडे जो है इसी जो क्रॉप रेसिड्यू, जो फसल अवशेष होते हैं, कभी कभी इन्हीं पे वो जो है अपना प्रजनन आगे बढ़ा देते हैं। तो अगर हम इसको भी अगर हम जुताई करेंगे गर्मी की जुताई, तो हमारे जो अंडे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। दूसरा बात है कि जब गर्मी की जुताई हम करें तो उसमें एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि उसमें नमी की मात्रा जो है वो पर्याप्त हो, क्योंकि अगर बढ़िया नमी रहेगी तो हमारी मिट्टी जो है वो बढ़िया भुरभुरी हो जाएगी।
0: अच्छा,
1: और हमारे जो फसल अवशेष रहेंगे वो जो है सड़ भी जाएंगे।
0: जैसे वही 2 दिन पहले जो बारिश भई है आजकल मौसम में
1: जी जी,
0: तो जहाँ नमी बा पर्याप्त, तो खेत खाली बा, वहाँ जुताई की
1: जा सकती है। वहाँ जुताई की जा सकती है और वहाँ जुताई भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे गर्मी की जुताई करने से हमारा जो है मिट्टी का संरचना बहुत अच्छा हो जाता है।
0: अच्छा, तो मिट्टी हमारा कैसे बढ़िया होते, कौन कौन तत्व कौन कौन गुण में आ जाते हैं
1: जी? जैसे मिट्टी अगर हम गर्मी जुताई करेंगे तो मिट्टी का संरचना अच्छा होगा, तो उसमें जल धारण करने की क्षमता अच्छी हो जाएगी।
0: अच्छा,
1: और जो हमारे फसल अवशेष रहेंगे, फसल अवशेष प्रबंधन भी गर्मी की जुताई में बड़ा एक महत्वपूर्ण है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि अगर हम गर्मी जुताई करते हैं उससे फसल अवशेष भी हमारा सड़ जाएगा, और फसल अवशेष सड़ने के बाद हमारी मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा।
0: मतलब माटी में पोषक तत्व
1: बढ़ेंगे जी जी
0: फसल अवशेष से
1: जी।
0: बहुत किसान पंच जो है वो पलटते ना, बल्कि जलाव लाए कोशिश कराते, तो काई ठीक है?
1: नहीं नहीं, उसको जलाना नहीं चाहिए। उसको जब हमारे पास है, हमारे पास खेत भी खाली है, कुछ हमें इतनी जल्दी भी नहीं है, क्योंकि ये सबसे जो है लंबी अवधि तक हमारे खेत खाली रहती है।
0: अच्छा,
1: तो हम उसको आराम से जो है उसको नमी भी, अब बारिश भी इस समय सबसे अच्छी बात है कि बारिश भी हो गई है और खेत इस समय जुताई के लिए और सबसे बढ़िया समय हो गया है कि जैसे ही नमी एकदम पर्याप्त जुताई के लिए होती है उसमें ट्रैक्टर चल पाए और अपना जो है उसको जुताई करते हैं, फसल अवशेष आपका सड़ जाएगा।
0: भाई नमी पाएगी वह अपन माटी
1: जी।
0: और देखा जाए डॉक्टर साहब तो गर्मी की जुताई एक खेत का एक बार कीन जा सके थे कि और भी ज्यादा हम दो बार तीन बार करे से ज्यादा फायदा मिले।
1: जैसे गर्मी की जुताई अगर बहुत गहरी जो करते हैं दो साल में एक बार करें।
0: अच्छा।
1: लेकिन अगर हमें हमेशा गर्मी की जुताई एक जरूर करनी चाहिए, उससे क्या होता है कि जो हमारे कीट पतंगे हैं जो और खर पतवार

0: हैं जो फसल में अगर हमारे आते हैं तो वो नहीं आते हैं।
1: अच्छा,
0: तो
1: रोगाणु वोगाणु भी एक एक जन हुई है वो खत्म होती
0: है? जी जी जी, बहुत रोग ऐसे भी होते हैं जो रोग जनित होते हैं, रोग जैसे जो पैदा करते हैं वो इसी समय उसी फसल अवशेष में रहते हैं, मट्टी में ही रहते हैं। जैसे रोग जनित हमें कुछ ऐसे आते हैं कि जैसे अमीबा जनित रोग, तो उनसे भी जब ये तापमान ज्यादा होता है, मिट्टी खुलती है, तो जो सूर्य की किरणें नीचे तक जाती है उनका टेम्परेचर बढ़ता है, तो उससे जो है उनपे भी जो है बहुत रोकथाम में महत्वपूर्ण जो है उससे फायदा होता है।
1: मतलब कि गर्मी की जुताई करे से रोग हो के संभावना ना के बराबर,
0: ना के बराबर।
1: कीट किरोना जो बहुत साल से वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है,
0: बहुत रोकथाम
1: सब नष्ट हो गई है, और खर पतवार जो है उसके जड़ी वड़ी नीचे रह जाता है,
0: फसल अवशेष भी अच्छे से सड़ जाएगा,
1: सड़ जाएगा, और माटी भी उपजाऊ हो जाएगी,
0: मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी हमारी।
1: अच्छा
0: जी, जो गर्मी की जुताई है वो किसान को अभी कर देना चाहिए, उससे क्या होता है कि जो आने वाली हमारी जो फसल है उसके लिए भी एक अच्छी मिट्टी निर्माण हो जाती है।
1: सही बात है, आने वाले समय में देखा जाए बेरन डाला जाए और धान की फसल के लिए हमें खेत का तैयार करेंगे तो वहीं से हम
0: अगर अभी से कर देंगे तो अभी से करने से क्या होगा कि उस समय तक हमारी मिट्टी जो है वहाँ से खरपतवार नष्ट हो जाए,
1: नष्ट हो जाए,
0: तो हमें जो है क्योंकि धान आगे जो फसल हमें लेके धान फसल में उमन निराई बहुत करेक्ट पड़े,
1: बिल्कुल,
0: तो वो जो फसल जो हमारे खरपतवार है वो गर्मी की जुताई से भी बहुत कम हो जाते हैं, 20-25% तक वो कम हो जाते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो उतना हमारा जो है लागत में हमारा बचत होगा।
1: और बात सही है, देखें खरपतवार में निकाले में हमारा लागत जात है, या फिर हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करी थे तो वह में हमारा पैसा खर्चा होते, कीट किरोना लग जाते हैं वो नुकसान करत है, और ओके रोकथाम में भी पैसा जात है। तो ये तरह से अगर हम सब ही तरीका अपनाई जाए, गर्मी की जुताई के लिए जाए अपने खेतन के कम से कम एक बार,
0: जी कम से कम एक बार जरूर करें किसान भाई।
1: अच्छा।
0: उससे करने से क्या होता है कि हमारी मिट्टी जो है अच्छी हो जाती है, क्योंकि अब आजकल जो है रोटावेटर से जो है जुताई होने लगी है।
1: अच्छा।
0: तो वो रोटावेटर जो है खाली ऊपर ऊपर जुताई करता है, लेकिन ये गर्मी की जुताई कर देने से क्या होगा कि नीचे तक की भी मिट्टी जो होती है वो पूरा अच्छे से
1: 10 सेंटीमीटर नीचे,
0: 10-15 सेंटीमीटर तक जुताई वो करता है, और जो चिसल प्लाऊ है वो और गहरी जुताई के लिए आता है। अगर हमें और गहरी जुताई करनी है तो वो चिसल प्लाऊ, लेकिन वो चिसल प्लाऊ हमें 2-3 साल में एक बार करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत गहरी जुताई।
1: तो जुताई के कितना दिन के लिए ऐसे छोड़ दें कि पाटा वाटा लगा दे?
0: नहीं, पाटा नहीं, बस ऐसे ही खोल देंगे, क्योंकि जितना खुला रहेगा सूर्य की प्रकाश किरण जो है तापमान एकदम नीचे तक जाएगा, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो नीचे के जो कीटाणु हैं कुछ खरपतवार हैं वो भी नष्ट होंगे, और दूसरा जल धारण करने की क्षमता भी नीचे तक बढ़ेगी, क्योंकि वही जो हमारी नमी है वो आगे चल करके लाभदायक।
1: बिल्कुल बात सही, बहुत बढ़िया आप बताएं कि गर्मी की जुताई से क्या क्या फायदा है। किसान पंचन का आप अपनी ओर से क्या कहा चाहते हैं, क्या संदेश दे चाहते हैं?
0: किसान पंचों को हमारा यही संदेश है कि जो हमारा गर्मी की जुताई और फसल अवशेष प्रबंधन, इन दोनों का बहुत ही आपस में एक अच्छा संबंध है। आपके फसल का प्रबंधन भी हो जाएगा अवशेष का, उसके जो अवशेष बचे हैं वो भी प्रबंधन हो जाएगा, आपको जलाना नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर आप जुताई करेंगे तो आपकी गर्मी की जुताई से जो भी लाभ होने हैं, चाहे वो खरपतवार नष्ट होने हो, रोग आपके नष्ट हो, जो हानिकारक कीट है वो नष्ट होने हो, और उसके साथ साथ आपके मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो बढ़नी है, उन सब चीजों में वो लाभदायक है। तो इससे आप जो है फसल अवशेष भी प्रबंधन कर सकते हैं और आपकी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसको भी बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल, काहे के मतलब कि मैं बिल्कुल हम सबन के लापरवाही ना सोचे कि चला ये साल ना है, पिछले साल करे रही, ये साल का करे करी। अगर ये तरह से जैसे आप बताए ना, अप्रैल के महीना से जब जेके खेत खाली हो जून तक, और एक जुताई करें और एक पूरा फायदा उठावें, अपने माटी का स्वस्थ बनावे और उत्पादन भी बहुत अच्छा मिले। तो डॉक्टर आनंद सिंह, सहायक प्राध्यापक मृदा विज्ञान विभाग, आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से आप हमारे स्टूडियो में आए, और हमारे किसान पंचन का गर्मी के जुताई से का का फायदा मिले, कितने विस्तार से कितने अच्छे से हमारे किसान पंचन का बताएं। हम तो उम्मीद करे थे कि किसान पंच गर्मी की जुताई के जरूर लाभ उठेंगे। पंचन की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पंचो देखा, ये तो रही बतकही गर्मी की जुताई से लाभ, और डॉक्टर आनंद सिंह देखा भैया जोन है, डॉक्टर साहब कितना बढ़िया से अपने पंचन का बताएं कि ई जोन जुताई है एक समय के साथ है, जैसे भाई जैसे जैसे सबके खेत खाली हो जाए वैसे वैसे वो का कर लें, और ताकि जोन है आपन जोन माटी है वो बिल्कुल सुरक्षित हो जाए, कीट पतंगे वो मसे मर जाई हैं, वो के जोन उर्वरा शक्ति है वो फिर से जीवित हो जाए। तो गर्मी के जुताई पंचन का समय रहते करावे के चाहिए, और हर साल करावे तो ज्यादा नीक होए, और नहीं तो भाई एक साल छोड़ दे, लेकिन वो का करावे के जरूरी है। और जब खेती

0: पंचो आप सब लोग गीत सुने शास्त्री यादव और उनके साथी इनके स्वर में। और अब समय कहा था कि पंचन का मौसम की जानकारी भी दे दी जाए। तो आज मौसम विभाग से जौन जानकारी मिली है, तापमान अधिकतम 41.5 डिग्री सेल्सियस जौन की प्लस 2 रहा, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस जौन की यहू प्लस में 3.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम सापेक्षिक जौन आर्द्रता है वो 78% है और न्यूनतम 38%। हवा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से और यह के जौन दिशा है दक्षिणी पश्चिमी। वर्षा शून्य। आगामी 24 घंटा में पूर्वानुमान यही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहे, साथे साथे कहूं कहूं उष्ण यानी गर्मी और लू चले के भी संभावना है। हवा जोन है सामान्य गति से पश्चिमी चले के और औसत तापमान जोन है उस सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस रहे के संभावना है। ये तो रही मौसम के जानकारी और पंचो मौसम देखते रहा कि कैसन गर्मात है, तो यह के लिए अपने सबका सचेत रहे का जरूरत है। और चलत चलत कल के कार्यक्रम भी बता दी कि कल चर्चा रहे तालाबों का रख रखाव और एक बतकही भी रहे सबीना खातून ड्रोन दीदी से मंजू मौर्या के बातचीत। यह के अलावा गीत गौनई और मौसम के जानकारी तो अपने कार्यक्रम मारावे करत है। और पंचो देखा घड़ी के जौन इशारा है वो कहत है कि पंचन से विदा लीन जाए, यही कार्यक्रम में फिर मिला, तब तक का मीना का दे अनुमति, जय हिंद।
1: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के

0: फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 102.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर। श्रोताओं आइए आपको बता दें अपने आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम, आज रात 8:15 पर आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम शेर और गीत। रात 9:15 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा हेलो अयोध्या आज रात 9:30 पर। ये थी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब आपको बता दे अपने कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 7:15 पर आप जानेंगे कार्यक्रम विवरण। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश आप सुनेंगे कल प्रातः 7:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम आप सुनेंगे 8:15 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। इस कार्यक्रम में कल आज की बात का विषय होगा विश्व फुटबॉल दिवस। साथ ही इसी कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे प्रिया मिश्रा से, उनकी वार्ता विषय होगा महिलाओं में स्वास्थ्य और पोषण आज की आवश्यकता। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा आपके संदेश आपके गीत कल प्रातः 9:00। 9:30 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 10:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT फरमाइशी अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग आप सुनेंगे कल दोपहर 12:30 पर। फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा कुछ तुमने कहा कल दोपहर 1:00। सुगम संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुनेंगे कल दोपहर 2:00। हमारे ग्रामीण बहनों के लिए कार्यक्रम होगा अंगना कल दोपहर 2:30 पर। इस कार्यक्रम में कल चर्चा का विषय होगा विश्व फुटबॉल दिवस। साथ ही इसी कार्यक्रम में कल चर्चा का विषय होगा गंगा दशहरा रस बिहारी बोस जयंती। साथ ही इसी कार्यक्रम में कल बहनें सुनेंगी पूनम सिंह से उनका काव्य पाठ, विषय होगा निर्मल कोमल गंगा माँ, पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेदारी और नशा करे नाश। कल शाम 5:00 आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा नागरिक अलंकरण समारोह में पदक पुरस्कार 2025 के वितरण समारोह का सजीव प्रसारण। समय याद रखिएगा कल शाम 5:00। कल शाम 6:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। कार्यक्रम कृषि जगत आप सुनेंगे कल शाम 6:45 पर। इस कार्यक्रम में कल चर्चा का विषय होगा तालाबों का रखरखाव। कल इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे ड्रोन दीदी शबीना खातून से की गई भेंटवार्ता, विषय होगा प्राकृतिक खेती, आपसे बातचीत करेंगी मंजू मौर्य। कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुनेंगे कल रात 8:15 पर। कार्यक्रम महफिल गजल आप सुनेंगे कल रात 9:15 पर। कल रात 9:30 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इनफॉरमेशन फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। ये थी हमारी कल की सभा में प्रसारित हमारे कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश, कहा बिजली उत्पादन इकाइयों को पूरी दक्षता से किया जाए संचालित। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा, मार्को रूबियो कल आगरा में ताजमहल का करेंगे दीदार। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न, प्रदेश के 9 परीक्षा केंद्रों पर नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान में वृद्धि और लू चलने की जताई संभावना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों सहित प्रदेश के प्रत्येक उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत की उपस्थिति में ऊर्जा विभाग, पावर कारपोरेशन एवं डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी संयंत्रों में तकनीकी दक्षता तथा रखरखाव व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देने के साथ ही फीडर वाइज मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय करने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आंधी तूफान के बावजूद विद्युत व्यवस्था बहाल रखने के लिए त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय रखने को भी कहा। दीपाली सिंह, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। अमेरिकी विदेश मंत्री कल आगरा में ताजमहल का दीदार करेंगे। वो विशेष वायुयान से आगरा पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम पहुंचेगा। शिल्पग्राम से बैटरी चलित गोल्फ कार्ट में बैठकर वह ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के आगरा भ्रमण के मद्देनजर केंद्रीय एवं प्रांतीय खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। ताजमहल के आसपास के होटलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रूबियो भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। अमेरिकी विदेश मंत्री के ताजमहल भ्रमण के दौरान आम पर्यटकों के लिए ताजमहल खुला रहेगा। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, कोऑर्डिनेटर और जिलाध्यक्षों के साथ 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा की एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव जिस प्रकार की नई नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी की तैयारियों को हर स्तर पर और भी चुस्त दुरुस्त बनाने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत आज से 3 दिवसीय

0: प्रवास पर लखनऊ में हैं। सरसंघचालक सरस्वती कुंज निराला नगर में चल रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में प्रशिक्षण लेने आए शिक्षार्थियों के मध्य बौद्धिक और संवाद के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में नेपाल सहित अवध, कानपुर, गोरक्ष और काशी प्रांत के 289 कार्यकर्ता प्रशिक्षण ले रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के 9 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बरेली में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। एक रिपोर्ट।
1: लखनऊ में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 तक चली, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 से शाम 4:30 तक हुई। इस बार परीक्षा से पहले चेहरा पहचान प्रणाली लागू की गई। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले इस सिस्टम से होकर गुजरना पड़ा। इस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश से 37,000 से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत थे। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान कटा है, जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में कोडीन सिरप की अवैध तस्करी मामले की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स STF ने कल अदालत में 40,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जांच में 900 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। इससे पहले भी STF ने अदालत में एक चार्जशीट दाखिल की थी। STF के अधिकारियों ने बताया कि NDPS एक्ट समेत अन्य धाराओं में अदालत में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित टाटा के खिलाफ चार्जशीट कल दाखिल की गई। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और आसपास के कुछ स्थानों पर कल दिन में तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर रात्रि के तापमान में वृद्धि का भी अनुमान जताया गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू के ऑरेंज अलर्ट के साथ ही विभाग ने कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने का पूर्वानुमान जताया है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आने वाले 3 दिनों में प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है।

0: क्रम में जारी रहेगा।
1: हापुड़ की तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर में कल होने वाले गंगा दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन ने आज डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं अमरोहा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज से रूट डायवर्जन लागू किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए आज से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर पीएससी फ्लड पीएससी फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेटिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
1: सशस्त्र सीमा बल द्वारा आज लखनऊ में संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण के अंतर्गत फिट इंडिया साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीमांत मुख्यालय लखनऊ एवं चतुर्थवाहिनी के अधिकारियों और बल कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक

0: भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और लोगों को फिट एवं स्वस्थ रहने के प्रति जागरूक करना था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। कहा, बिजली उत्पादन इकाइयों को पूरी दक्षता से किया जाए संचालित। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। मार्को रूबियो कल आगरा में ताजमहल का करेंगे दीदार। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 9 परीक्षा केंद्रों पर नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान में वृद्धि और लू चलने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 102.9 मेगाहर्ट्ज़ FM बैंड पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम
4: की शौर्य गाथा।
5: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
6: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों के शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन नीके जाकू कैंगुरसे की शौर्य गाथा। June 28, 1999, सेहरा देने वाली ठंडी रात, चारों ओर अंधेरा और ऐसे में कैप्टन नीके जाकू कैंगुरसे के नेतृत्व में जाबाज जिंदा दिल और मौत से लोहा लेने वाली घातक पलटन चढ़ रही थी सीधी चढ़ाई। इसी पल दुश्मनों को इनकी भनक लग गई और उन्होंने अपने हथियारों के मुंह खोल दिए। अंधाधुंध बरसती गोलियां, खड़ी चढ़ाई, ठंडी रात, लेकिन फिर भी दुश्मन के हमले से खुद को बचाते कैप्टन नीके जाकू कैंगुरसे और उनकी घातक पलटन ऊपर चढ़ना जारी रखे थी। मानो उन्हें किसी बात का डर न हो, बस आंखों के सामने अपना लक्ष्य ही नजर आ रहा हो। सबसे आगे बढ़ते कैप्टन कैंगुरसे ने पहाड़ पर कील ठोक कर अपनी पलटन के लिए रस्सी बांधी और सभी के पहुंचने का इंतजार किया। जैसे ही पलटन ऊपर पहुंची, दुश्मन सेना ने उन पर हमला बोल दिया। न सिर्फ गोलियां बल्कि भारी मोर्टार और ग्रेनेड भी उनकी ओर फेंकने शुरू कर दिए। इसी बीच एक फूटते ग्रेनेड का छर्रा सीधे कैप्टन नीके जाकू कैंगुरसे के पेट में जा घुसा। वो घायल हो गए। दर्द ने उन्हें कुछ पल को रुकने पर मजबूर किया और उन्हें ये आभास हुआ कि उनकी पलटन के कई जवान अपनी शहादत दे चुके हैं। कैप्टन नीके जाकू कैंगुरसे ने खुद को मजबूत किया और एक बार फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं बल्कि अपने हाथ में रॉकेट लॉन्चर लेकर बढ़ रहे थे।

सैनिक की बहादुरी और उसकी हिम्मत का कोई पर्याय नहीं है। जरा सोचिए कि ठंड से सिहरती रात में घायल लहूलुहान कैप्टन नेके जाकू कैंगुर से अपनी पलटन को हिम्मत न हारने के लिए कोई भाषण नहीं देते, बल्कि वो अपनी हिम्मत उन सभी में प्रवाहित करते हैं। पेट के घाव और रिश्ते खून की परवाह न करते हुए वो वापस खड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं और हाथ में रॉकेट लॉन्चर का भार लिए। हम वहाँ मौजूद तो नहीं थे, लेकिन ये यकीनन कहा जा सकता है कि मात्र 25 वर्ष के इस युवा के हौसले और साहस के आगे दुश्मन भी भौंचक्का रह गया होगा। कैप्टन नेके जाकू कैंगुरसे ने ऊपर पहुंचते ही दुश्मन सेना के पहले बंकर को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया। उनका ये हौसला उनकी पलटन में जोश भरने के लिए पर्याप्त था। सभी एक बार फिर आगे बढ़ चले। अभी दुश्मन सेना के 6 और बंकर मौजूद थे। खतरा और मुश्किलें भी एक पायदान ऊपर थी। कैप्टन नेके जाकू कैंगुर से अपने घातक पलटन के साथ दुश्मन सेना के बाकी बंकरों की ओर बढ़ चले। इस बार सिर्फ खड़ी चढ़ाई ही सामने नहीं थी, बल्कि उस पर जमी बर्फ इस चढ़ाई को और मुश्किल बना रही थी। कैप्टन कैंगुरसे ने देखा कि उनका बूट चढ़ाई में उनका साथ नहीं दे रहा है, तो उन्होंने -10 डिग्री की उस ठंडी रात में अपना बूट उतार दिया और नंगे पैर चढ़ाई चढ़ने लगे। मानो लक्ष्य पाने का एक जुनून उन पर सवार था। सुन्न होते पैर, पेट का जख्म, ऊपर से आती मशीन गन की फायरिंग, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर का हमला, कुछ भी उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो रहा था। वो बस चढ़ते जा रहे थे। उफ, ये हौसला, ये साहस और खुद पर इतना भरोसा एक बेहतरीन नेतृत्व की ही पहचान हो सकती है। जब ऐसा जोश सामने हो तो पूरी पलटन का दिल उस जोश के वशीभूत हो जाता है।

नीके जाकू कैंगुर से अपने सीने पर झेल गए और वीर गति को प्राप्त हुए। ये उनके अदम्य साहस का ही परिणाम था कि अपने सेना नायक को इस तरह शहीद होते देख पूरी पलटन में इतना गुस्सा और जोश भर गया कि उन्होंने दुश्मन से कम मात्रा में होने के बाद भी उन पर धावा बोल दिया। कई जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया, लेकिन उनके साहस और जोश के आगे दुश्मन सैनिक भाग खड़े हुए। जो वहां रुके उनके प्राण उनके शरीर का साथ न दे सके।

जैसे ही कैप्टन नेके जाकू कैंगुर से चढ़ाई चढ़कर दूसरे बंकर के पास पहुंचे कि दुश्मन सेना के दो सिपाही उनकी ओर लपके, लेकिन कैप्टन के गुस्से से पार पाना किसी के बस में नहीं था। उन्होंने दुश्मन सेना के उन दोनों सिपाहियों को पलक झपकते ही हाथापाई करके अपने कमांडो खंजर से ढेर कर दिया। आगे उन्होंने दो और दुश्मन सिपाहियों को अपनी राइफल से मार गिराया। दुश्मन सेना का दूसरा बंकर भी नेस्तनाबूद किया, लेकिन अब भी दुश्मनों के 5 बंकर बाकी थे और उन्होंने दुगनी तेजी से हमला बोल दिया। सामने से आती धुआंधार गोलियों की बौछार को

कैप्टन नेकेजाकू कैंगुरसे के जोश, साहस, बुद्धिमता और सर्वोच्च बलिदान का ही परिणाम था कि दुश्मन सेना की मुख्य पोस्ट भारतीय सेना के कब्जे में आ गई और सेकंड राजपुताना राइफल्स ने लोन हिल में भारतीय ध्वज फहरा दिया। इस जीत ने कारगिल विजय में एक बड़ी भूमिका निभाई। कैप्टन नेकेजाकू कैंगुरसे ने जो आखिरी पत्र अपने पिता को लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि पापा, हो सकता है कि मैं वापस घर ना लौटूं और फिर से अपने परिवार का हिस्सा न बन पाऊं। अगर मैं वापस न भी आ पाऊं, तो मेरा शोक मत मनाना, क्योंकि मैंने ये तय कर लिया है कि मैं देश के लिए अपना सर्वस्व देना चाहता हूं।

कैप्टन नेकेजाकू कैंगोरसे ने अदम्य साहस, अटल संकल्प, दृढ़ता और कर्तव्य से परे जाकर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके इस शौर्य, अदम्य साहस और अद्वितीय कर्तव्य परायणता के लिए मरणोपरांत उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो आर्मी सर्विस कोर से महावीर चक्र पाने वाले एकमात्र सैनिक हैं। उनके सम्मान में एएससी कैंपस बेंगलोर के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम कैप्टन कैंगोरसे गेट रखा गया है। कोहिमा के गांव में उनके नाम से कैप्टन कैंगोरसे वॉर मेमोरियल की स्थापना की गई है। सेना की ओर से प्रतिवर्ष कैप्टन कैंगोरसे मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतिवर्ष कोहिमा में आयोजित किया जाता है। देश के इस जाबाज को हमारा भावपूर्ण नमन।

जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन नेके जाकू कैंगुरसे की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें

आज के इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार हैं सैक्सोफोन वादक सुरेश यादव। क्लैरिनेट पर भी बजाई धुन आपको आज सुनवाएंगे इसी कार्यक्रम में कलाकार सुरेश यादव।

अभी आप सुन रहे थे छलिया फिल्म के गाने की धुन। कलाकार थे सुरेश यादव, सैक्सोफोन वादक। आइए अब सुनते हैं छलिया फिल्म का गाना मुकेश की आवाज़। अमर जलालाबादी के बोल है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

बैजू बाबरा फिल्म के गाने की धुन आप सुन रहे थे, कलाकार थे सुरेश यादव। अब इस फिल्म का गाना सुनिए, गाना क्या झलक है ये। फिल्म बैजू बाबरा, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत।

बैजू बाबरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। आज के कलाकार थे सैक्सोफोन वादक सुरेश यादव। अब आज का साज और आवाज कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं हरि नारायण शर्मा की लिखी झलकी मैरिज एनिवर्सरी।
1: हे भगवान, ऐसा भुलक्कड़ और लापरवाह पति किसी को ना दे। सवेरे जब ऑफिस जा रहे थे कम से कम 10 बार जनाब को घर जल्दी आने को बोला था, लेकिन क्या मजा जो जनाब जल्दी घर आ जाए।
2: सीमा, सीमा, अरे भाई जल्दी दरवाजा खोलो, कहाँ हो?
1: चूल्हे में।
2: चूल्हे में? अरे वहाँ क्या कर रही हो? जल्दी बाहर निकलो वरना जल जाओगी।
1: मैं जलूं या मरूं तुम्हें क्या?
2: पर हुआ क्या है, जरा हम भी तो सुने कि ये त्योरियां क्यों चढ़ी हुई हैं?
1: तुम्हें कुछ याद भी रहता है, सवेरे जब तुम ऑफिस जा रहे थे तब मैंने कितनी बार कहा था कि घर जल्दी आ जाना, पर मेरी कौन सुनता है, बैठ गए फटीचर दोस्तों के साथ कॉफी हाउस में।
2: तुम भी कमाल करती हो सीमा। अरे ऑफिस से सीधा घर चला आ रहा हूँ, ये देखो अभी सिर्फ 7 बजे हैं और 6 बजे ऑफिस से निकलता हूँ, और ट्रैफिक की हालत तो तुम जानती हो, ऑफिस से घर आने में कम से कम 1 घंटा लग ही जाता है।
1: अगर कसर रह गई है तो वापस चले जाओ।
2: तुम तो बस बात बात पे झगड़ना जानती हो। खैर ये बताओ कि मुझे जल्दी घर आने के लिए क्यों कहा था? हाँ, और आज ये बंठन कर कहाँ जाने का इरादा है?
1: तुम्हें दोस्तों के अलावा कुछ याद भी रहता है? कुछ याद है कि आज कौन सी तारीख है?
2: तारीख भाई 24 अप्रैल।
1: हाँ 24 अप्रैल हमारी जिंदगी में क्यों महत्वपूर्ण है?
2: 24 अप्रैल महत्वपूर्ण? अरे हाँ याद आया, आज तो हमारी शादी की सालगिरह है, यानी मैरिज एनिवर्सरी। अब याद आया कि आज आप मुझे ऑफिस से जल्दी घर आने के लिए क्यों कह रही थी, और आप ये सज धज कर क्यों बैठी हैं? भाई शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
1: बस बस रहने दो।
2: अगर तुम सवेरे ही मुझे बता देती तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आता।
1: अब मुंह देख के बात मत करो, जिस आदमी को अपनी शादी की सालगिरह के ही आदमी रहा है उससे गिफ्ट की क्या उम्मीद की जा सकती है?
2: अच्छा बाबा माफ कर दो, कान पकड़कर माफी मांगता हूँ, और कहो तो हमेशा की तरह कान पकड़कर उठक बैठक लगा लूं। अरे लगा ही लेता हूँ, इक्कम एक, दुक्कम दो, तिक्कम तीन।
1: अरे अरे क्या कर रहे हो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा?
2: तो बोलो माफ किया।
1: अच्छा बाबा माफ किया।
2: हाँ ये हुई ना बात। अब जरा मेरे पास में बराबर में आके बैठो ताकि हम आज का प्रोग्राम तय करें।
1: अच्छा पहले तुम बताओ कि तुमने क्या सोचा है।
2: अरे फिर तुम वहाँ मुड्ढी पर क्यों बैठी हो, यहाँ सोफे पर मेरे बराबर में आकर बैठो ना।
1: नहीं नहीं, अब मैं भला आपके बराबर कैसे बैठ सकती हूँ?
2: क्यों मेरे बराबर में क्यों नहीं बैठ सकती?
1: अभी कल ही मैंने गुरुजी के प्रवचनों में सुना कि पत्नी का बैठने का स्थान पति से नीचा होना चाहिए, और प्रवचनों में ये भी कहा गया कि पत्नी तो पति के चरणों की दासी होती है।
2: ये मैं क्या सुन रहा हूँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? देखो सीमा तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ कि क्या तुम वही सीमा हो जिससे मेरी 30 साल पहले शादी हुई थी?
1: मैं तुम्हारी वही 30 साल पहले वाली सीमा हूँ।
2: देखो सीमा

0: तुम ये किन दकियानुसी बातों को लेकर बैठी हो? अरे ये सब पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में तो पति पत्नी दोनों बराबर हैं, और वैसे भी पति पत्नी तो गृहस्थी की गाड़ी के तो पहिए हैं। अब अगर इनमें से एक पहिया भी कमजोर पड़ा तो ये समझ लो कि गृहस्थी की गाड़ी डगमगाने लगती है।
1: अब तुम कुछ भी कहो पर मैं तुम्हारे बराबर नहीं बैठ सकती।
0: ठीक है, अगर तुम सोफे पर मेरे बराबर में नहीं बैठ सकती तो मैं दूसरी मुड्डी लेकर तुम्हारे बराबर में बैठ जाऊंगा।
1: अगर तुम मुड्डी पर बैठोगे तो मैं चौकी पर बैठ जाऊंगी।
0: अच्छा, और अगर मैं भी चौकी पर बैठ गया तो?
1: तो मैं पीढ़े पर बैठ जाऊंगी।
0: और अगर मैं भी पीढ़े पर बैठ गया तो?
1: तो मैं जमीन पर बैठ जाऊंगी।
0: और अगर मैं भी जमीन पर बैठ गया तो?
1: तो मैं जमीन में गड्ढा खोद कर उसमें बैठ जाऊंगी।
0: और अगर मैं भी जमीन में गड्ढा खोद कर उसमें बैठ गया तो?
1: तो मैं तुम्हारे ऊपर उस गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगी।
0: क्यों?
1: हाँ नहीं तो क्या, इतनी देर से बहस किए जा रहे हो, ये नहीं कि आज का प्रोग्राम क्या है बताओ।
0: अरे हाँ, इस बेकार की बहस में मैं ये तो भूल ही गया था कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। हाँ देखो, अभी बजे हैं 7:30। हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाते हैं और उसके बाद फिर नाइट शो में पिक्चर देखने चलेंगे।
1: पिछले साल भी तो हमने यही किया था, इस बार मैं कुछ नया करने की सोच रही हूँ।
0: सोच तो मैं भी कुछ नया ही करने की हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ तो बताओ तुम क्या नया सोच रही हो?
1: मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज बाहर जाने की बजाय घर में ही कुछ बनाया जाए।
0: हाँ भाई, ये भी अच्छा आइडिया है। तो क्या खास बनाने की सोच रही हो?
1: अब तुम्हें तो पता ही कि मैं मलाई कोफ्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ।
0: हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम मलाई कोफ्ता और मटर पनीर बहुत अच्छा बनाती हो।
1: तो ठीक है, तह रहा कि हम बाहर नहीं जा रहे हैं, मैं घर पर ही मलाई कोफ्ता, मटर पनीर की सब्जी और कड़ी पकौड़ा बना लेती हूँ। तुम हलवाई से 1 किलो रसमलाई और 1/2 किलो बादाम रोल ले आओ। और हाँ, चॉकलेट आइसक्रीम का एक फैमिली पैक लाना मत भूलना।
0: एक मिनट सीमा, तुम शायद ये भूल रही हो कि हमारे बच्चे बाहर गए हुए हैं और घर पर हम सिर्फ दोनों ही हैं।
1: मुझे पता है।
0: अरे तो फिर क्या पूरे मोहल्ले को बुलाने का इरादा है जो बाजार से इतना सामान मंगवा रही हो?
1: मैं सोच रही थी कि हमारी शादी की सालगिरह के जश्न में क्यों ना भैया भाभी और उनके दोनों बच्चों को बुला लिया जाए।
0: यानी घर में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तुम अपने भैया भाभी को उसमें जरूर घुसा लेती हो।
1: मेरे भैया भाभी का आना तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, और पिछली बार शादी की सालगिरह पर तुमने भी तो अपने भैया भाभी को बुलाया था, उसकी क्यों नहीं कहते? वैसे भी तुम्हें मेरे रिश्ते फूटी आंख नहीं सुहाते।
0: झूठ, बिल्कुल झूठ। देखो मैं हमेशा अपने रिश्तेदारों के बजाय तुम्हारे रिश्तेदारों की ज्यादा इज्जत करता हूँ।
1: जरा मैं भी सुनो कि मेरे कौन से रिश्तेदारों की अपने रिश्तेदारों से ज्यादा इज्जत करते हो।
0: देखो मैं अपने ससुर की बजाय तुम्हारे ससुर की ज्यादा इज्जत करता हूँ, अपनी सास की बजाय तुम्हारी सास की ज्यादा इज्जत करता हूँ, अपनी बहन की बजाय तुम्हारी बहन से ज्यादा प्यार करता हूँ।
1: ठीक है, अपनी चौंच बंद करो और चुपचाप बाजार जाकर मैंने जो सामान कहा है वो ला कर दो, और कान खोल कर सुन लो। अब अगर मेरे भैया भाभी के लिए कुछ भी कहा तो मैं गुरुजी के प्रवचन में सुनी हुई बातों को भूल जाऊंगी।
0: हाँ ठीक है, लाओ थैला और पैसे दो।
1: ये लो थैला। हाँ, पैसे मेरे पास है नहीं।
0: क्यों भाई, पैसे क्यों नहीं है? अरे अभी परसों ही तो मैंने तुमको 3,000 रुपए दिए थे।
1: हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे 3,000 नहीं 30,000 दिए हो। अरे 3,000 रुपए में तो जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, वो 3,000 रुपए तो हमारी किट्टी पार्टी में उसी दिन खर्च हो गए थे।
0: क्या, तुमने किट्टी पार्टी में 3,000 रुपए खर्च कर दिए? अरे सीमा, कितनी बार तुमको समझा चुका हूँ कि पैसे देखकर खर्च किया करो। अरे तुम एक क्लर्क की बीवी हो, किसी IAS की नहीं।
1: अरे मेरे पिताजी तो मेरे लिए IAS ही ढूंढ रहे थे, पर ये तो मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो तुमसे शादी कर ली।
0: अरे तो ना करती, कौन तुम्हारे हाथ जोड़ने गया था?
1: देखो झूठ मत बोलो, तब तो रोजाना सुबह शाम मुझसे शादी करने के लिए मेरे पापा की चौखट पर नाक रगड़ा करते थे।
0: झूठ, सफेद झूठ। बल्कि सच तो यह है कि तुम्हारे पापा खुद अपनी चौखट उखाड़ कर लाए थे मेरी नाक पर रगड़ने के लिए। अरे ये तो मेरी किस्मत टूटी थी जो उनकी बातों में अगर तुम्हारे जैसी भैंस से शादी करनी।
1: क्या कहा, मैं भैंस?
0: हाँ, तुम भैंस, तुम्हारी अम्मा भैंस और तुम्हारा पूरा खानदान भैंस।
1: अब तो खबरदार, जो मेरे खानदान के लिए कुछ जबान खींच लूंगी।
0: अरे जा, बड़ी आई जबान खींचने वाली, भीमसेन की औलाद।
1: क्या कहा, भीमसेन की औलाद?
0: हाँ, भीमसेन की औलाद।
1: तो ठीक है, अब मैं तुम्हें भीमसेन की औलाद बनकर दिखाती हूँ। कौन है मेरा झाड़ू, अरे कौन? हाँ।

0: अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, भागो,
1: अरे भागो। जाओगे कहाँ? जहन्नुम तक नहीं छोड़ूंगी तुमको।
2: अरे सीमा बहन, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। कहाँ जा रही हो?
1: जहन्नुम में।
2: क्यों, तुमको जहन्नुम में जाने की क्या जरूरत पड़ गई?
1: वो गुड्डू के पापा गए हैं ना, उनको लेने जा रही हूँ।
2: पर गुड्डू के पापा वहाँ क्यों गए हैं?
1: आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसीलिए वो मेरे लिए बड़ा सा गिफ्ट लेने गए हैं।
2: पर सीमा बहन, आपके लिए तो हरीश भैया गिफ्ट पहले ही ले आए थे।
1: क्या, मेरे लिए गिफ्ट?
2: हाँ, ये देखिए, हरीश जी कह रहे थे कि आपको सरप्राइज गिफ्ट देंगे, इसलिए मेरे पास रखवा दिया था, और कह रहे थे कि मैं आधे घंटे बाद आकर आपको दे दूं।
1: क्या वो मेरे लिए गिफ्ट लाए थे?
2: हाँ, और ये भी कह रहे थे कि पहले होटल में खाना खाने जाओगे आप लोग, और फिर उसके बाद मूवी का प्लान है।
1: क्या उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया और मैं इतनी छोटी सी बात पर उनसे झगड़ा कर बैठी?
2: क्या आज के दिन झगड़ा? ऐसा क्या हो गया?
1: अब क्या बताऊं सरला बहन, उन्होंने बाहर खाने और मूवी का प्रोग्राम बनाया था, और मैं अपने भैया भाभी को घर पर बुलाना चाहती थी, और इसी बात पर झगड़ा हो गया और वो बाहर निकल गए। हे भगवान, मैं क्या करूं?
2: क्या तुम इतनी सी बात के लिए हरीश भैया से झगड़ पड़ी? अरे सीमा बहन, और वैसे भी आज तो ये दिन तुम्हारा है, आप दोनों को एंजॉय करना चाहिए। भैया भाभी को बुलाने के लिए तो रक्षाबंधन भाई दूज के त्योहार है ना।
1: मैं भी कितनी पागल हूँ जो आज के दिन उनसे झगड़ा कर बैठी। हे भगवान, वो मुझे मिल जाए तो मैं उनके पैर पकड़कर माफी मांग लूं।
2: सीमा बहन, तो आपको वाकई आपकी बातों पर पछतावा हो रहा है?
1: हाँ सरला बहन, मैं उनसे अब कभी झगड़ा नहीं करूंगी। अब मैं उनको कहाँ ढूंढूं?
3: अरे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है।
1: तो जनाब यहाँ छुपे हैं?
3: हाँ। अरे अब तुमको छोड़कर इस उम्र में भला कहाँ जाऊंगा, और वैसे भी तुमको सरप्राइज जो देना था।
1: तो ये था तुम्हारा सरप्राइज? ओ हरीश, तुम कितने अच्छे हो।
3: अरे अब ये सब छोड़ो, देखो तुम्हारे चक्कर में 8 बज गए हैं, और अब जल्दी चलो।
1: अरे सरला बहन, तुम भी चलो ना।
2: सीमा बहन, अभी अभी मैंने क्या समझाया था कि आज का दिन तो आप दोनों के एंजॉय करने का दिन है। आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अब जाइए और जल्दी जाइए, खूब अच्छे से एंजॉय करिए।
1: थैंक यू।

तो ये थी झलकी मैरिज एनिवर्सरी। इसके लेखक हरि नारायण शर्मा, निर्देशन किया H.S. व्यास ने। आपको बता दें ये आकाशवाणी के जयपुर केंद्र की भेंट अभी आपने सुनी।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 MHz FM बैंड पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम शेर और गीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
3: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।

दर्द ही आगाज है, दर्द ही अंजाम है, दर्द जो बयां करे शायरी वो नाम है। खुशी तो सभी बांट लेते हैं यारो, गमों को समेटना ही शायरी का काम है। शेर आपके गीत सुनने वाले तमाम दोस्तों को हमारा प्यार भरा आदाब, सलाम और नमस्कार। दोस्तों, शेर की ये खसूसियत होती है कि ये आपके जज्बात और एहसासात को चंद सत्रों में बयां कर देता है। जैसे ये शेर उसकी जफा के साथ कुछ अपनी खता भी है, उसकी जफा के साथ कुछ अपनी खता भी है, दिल के करीब रह के जो दिल से जुदा भी है। क्या जाने इश्क कौन से जज्बे का नाम है, क्या जाने इश्क कौन से जज्बे का नाम है, जो बोलता नहीं है मगर बोलता भी है।

खुशियों में भी काम आते हैं आंसू, खुशियों में भी काम आते हैं आंसू, गमों में भी डूब जाते हैं आंसू, हर दर्द सहते हैं फिर भी चुप रहते हैं, हर दर्द सहते हैं फिर भी चुप रहते हैं, ऐसे सदा मुस्कुराते हैं आंसू, सब साथ छोड़ देते हैं मुंह मोड़ लेते हैं, हर हाल में संग निभाते हैं आंसू, तुम वादा निभाओ दिल न दुखाओ यही तो हमेशा बताते।

0: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ हैं धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें। पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
3: हेलो
4: सुनो, टेलीफोन नंबर,
5: माय नंबर इज
6: 7376804090।
0: लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
7: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम शेर और गीत। हर मंजर में पाऊं तुम्हें, कैसे कहूं कितना चाहूं तुम्हें, तुमसे ही शुरू होती है जिंदगी मेरी, तुमसे

बात समझता हूँ, मैं एहसास हूँ तेरे जज्बात समझता हूँ। कब पूछा मैंने कि क्यों दूर हो मुझसे, कब पूछा मैंने कि क्यों दूर हो मुझसे, मैं भी दिल रखता हूँ तेरे हालात समझता हूँ।

के मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके कि मैं मौत से

वो क्या चले गए जमाना चला गया, वो क्या चले गए जमाना चला गया, हम जैसे दिलबरों का दीवाना चला गया। उनका जहां से जाना महसूस यूं हुआ, उनका जहां से जाना महसूस यूं हुआ, जैसे शमा का कोई परवाना चला गया।

मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आज के कार्यक्रम शेर और गीत से दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम शेर और गीत आकाशवाणी का। ये अयोध्या केंद्र है 102.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में, इसके बाद अंग्रेजी में।

0: भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई।

0: है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव

परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्रिशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and

0: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
1: खेल की चपल चंचल और चमकीली बातों के साथ हाजिर है आपका दोस्त कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर। बंदा सच में फास्ट है, नाम है गुरविंदर वीर सिंह। इवेंट 100 मीटर दौड़, टाइम 10.09 सेकेंड। शनिवार को गुरविंदर वीर सिंह ने ऐसी उपलब्धि हासिल की जो अब तक कोई भी भारतीय हासिल नहीं कर सका। उन्होंने 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकेंड में पूरी की। रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में शनिवार को गुरविंदर वीर सिंह ने न केवल नया रिकॉर्ड बनाया बल्कि 10.0 सेकेंड के दायरे में 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले वो पहले भारतीय भी बन गए।

दोस्तों अब बात क्रिकेट की। अफगानिस्तान के खिलाफ 6 जून से शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच और इसके बाद 3 वनडे मैचों की श्रृंखला के लिए मंगलवार को भारतीय टीम की घोषणा की गई। विस्फोटक विकेटकीपर ऋषभ पंत को टेस्ट टीम में शामिल किया गया, लेकिन उनकी जगह शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम में केएल राहुल को उपकप्तानी सौंपी गई। पंत को वनडे टीम से बाहर किया गया। मानोस सुथार टेस्ट, प्रिंस यादव वनडे, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़ दोनों टेस्ट व वनडे 4 नए चेहरे हैं जिन्हें पहली बार सीनियर भारतीय टीम में शामिल किया गया है। पेसर गुरनूर और स्पिनर मानो कप्तान शुभम गिल की आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस का भी हिस्सा हैं। जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर रवींद्र जाडेजा को आराम दिया गया है। बुमराह को वर्कलोड प्रबंधन के चलते आराम दिया गया है। बुमराह जुलाई से शुरू होने वाले इंग्लैंड के दौरे के लिए टीम में वापसी करेंगे। टेस्ट न्यू चंडीगढ़ में 6 से 10 जून तक होगा। पहला वनडे धर्मशाला में 14, दूसरा लखनऊ में 17 और तीसरा चेन्नई में 20 जून को होगा। भारत और अफगानिस्तान दूसरी बार टेस्ट मैच खेलेंगे। इससे पहले 2018 में दोनों टीमों के बीच बेंगलुरु में एकमात्र टेस्ट हुआ था जिसमें भारत ने पारी और 262 रन से जीत दर्ज की थी। अगर हम टीम की बात करें तो टेस्ट टीम इस प्रकार है। शुभमन गिल कप्तान, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल उप कप्तान, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानो सुथार, गुरनूर बराल, हर्ष दुबे और ध्रुव जुरैल। वनडे की टीम की अगर हम बात करें तो वनडे टीम में शामिल सदस्य हैं शुभमन गिल कप्तान, श्रेयस अय्यर उप कप्तान, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल विकेट कीपर, ईशान किशन विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़।

0: कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आइए अब सुनते हैं जूडो कोच सुभाष चंद्र से प्रतिभा सिंह की गई बातचीत।
1: मैदान में पसीना बहाने वाले ही एक दिन इतिहास बनाते हैं, हार को भी जो हरा कर दिखाए वही खिलाड़ी कहलाते हैं। दोस्तों, मैट पर उतरने वाला खिलाड़ी सिर्फ प्रतिद्वंदी नहीं होता, वो अपने डर से भी लड़ता है। तो आज की अपनी कहानी खेल खिलाड़ी में बात करेंगे जूडो कोच सुभाष चंद्र जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने ही बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं कि का कैरियर क्या था, कैसे आपने इसको चुना।
2: जी वैसे तो आपने बता ही दिया है कि मेरा नाम सुभाष चंद्र है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस पूरे मंडल में एक

0: अकेला ब्लैक बेल्ट हूँ और अपने यहाँ राज्यपाल और राष्ट्रपति सम्मानित हूँ मैं।
1: वाह,
0: मुझे
1: बहुत
0: ब्लैक
1: अच्छा
0: बेल्ट उन्होंने ही मुझे प्रदान किया था, जब ब्लैक बेल्ट परीक्षा पास किया था।
1: जी।
0: और डिप्लोमा होल्डर हूँ मैं, NIS से कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से होता है, और मेरा ग्वालियर से हुआ है LNIP, लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स।
1: जी
0: स्टार्टिंग में मैं जब शुरू किया था तो 9th या 8th साल का था मैं, 9 या 8 साल का था
1: जी
0: तब
1: जी
0: से मैंने स्टार्ट किया था।
1: जी
0: तब मैं फुटबॉल में रुचि रखता था, फुटबॉल खेलता था। फिर एक बार लोगों को देखा जूडो करते हुए स्टेडियम में,
1: जी
0: बाराबंकी स्टेडियम में, फिर वहां पे जूडो में रुचि बढ़ी। फिर लगातार उपलब्धियां पर उपलब्धियां पड़ती रही। लगातार मैं 3 से 4 साल तक ऑल इंडिया खेला, उससे कई नेशनल्स खेले, कई स्टेट खेले, और फिर धीमे धीमे धीमे रुचि बढ़ती गई। और आज एक NIS करके मैं कोच बन के यहाँ पे आया हूँ आपके फैजाबाद में,
1: जी।
0: यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में एज अ कोच मैं ज्वाइन हुआ था 4 साल पहले।
1: जी बहुत अच्छा। आप जो जूडो का सफर है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सर। अब प्रश्न ये है कि एक अच्छे खिलाड़ी का सबसे जरूरी गुण क्या होता है आपके हिसाब से?
0: सबसे जरूरी गुण तो यही होना चाहिए कि उसका मानसिक दृढ़ता, किस प्रति जुनून, अगर वो खेलने जा रहा है तो उसका खेल के प्रति जुनून अच्छा होना चाहिए, मानसिक रूप से स्ट्रांग होना चाहिए कि वो अंदर से कभी हार ना माने। हम
1: जी
0: प्रेरित करते हैं खिलाड़ी को कि बेटा आप मैट पे जा रहे हो तो सामने वाले को देख के थोड़ा बच्चा कि वो सर
1: हाँ,
0: बड़ा खिलाड़ी है, मैं छोटा खिलाड़ी हूँ, तो
1: डर
0: वो
1: जाते
0: उनके
1: हैं।
0: अंदर एक वो होना चाहिए पेशेंस कि नहीं मुझसे होगा। अगर वो कहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो एक हो गया डिमोटिवेट,
1: जी
0: वो
1: जी
0: अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करेंगे कि जाऊंगा सर मैं मार के आऊंगा चाहे जैसे करके आऊंगा।
1: सर, एक चीज और हम इसी में पूछना चाहेंगे कि जब
0: जी
1: बच्चे ऐसा होता है, आपने जैसा बताया कि बच्चे डर जाते हैं कि सामने हमारे बड़ा खिलाड़ी है और मैं हार जाऊंगा, तो उस समय आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है? कैसे आप बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि बच्चा जाए और अपने डर से वो जीत के आए?
0: हम बच्चे सब इतना कहते हैं कि सामने जो बड़ा खिलाड़ी है उसे ये मत सोचो कि वो बड़ा खिलाड़ी है, आप ये सोचो कि वो एक अपोनेंट है जो आपकी तरह ही सीख के आया है, जो आप करके आया है वो भी वो करके आया है। मारने के तरीके में अंतर है कि वो क्या मारेगा और आप क्या मारोगे,
1: क्या मारोगे?
0: तो उसी की चीज में बच्चा मोटिवेट होता है। और उन्हें मोटिवेट करने के लिए बढ़िया से अच्छे से सॉन्ग सुनाते हैं, जैसे कि ईयरफोन लगा दिया और मोटिवेटेड सॉन्ग हो गया, और उनको फाइट दिखाते हैं बच्चे की, जिस बच्चे से उनकी फाइट है उसके पहले की फाइट उसको दिखाते हैं कि उसका स्किल जानो कि वो क्या चीज अप्लाई कर रहा है अंदर
1: जी।
0: उस।
1: अपोनेंट कहाँ आपको चोट दे सकता है और आप कैसे उसका डिफेंस कर सकते हैं।
0: जी मैम,
1: अच्छा, युवाओं में आजकल आपको क्या लगता है कि खेल के प्रति कितना उत्साह है?
0: इस समय अगर देखा जाए तो पहले के समय से लेके इसे बहुत ज्यादा ही उत्साह है,
1: जी
0: क्योंकि 2026 में अब एक नहीं बन गया कि लोग पहले मनोरंजन के हिसाब से करते थे कि हाँ खेल लेंगे थोड़ा मन शांत हो जाएगा, पहले हम लोग ये करते थे, बहुत लोग करते थे। अब क्या हो गया, करियर का विकल्प बन गया, अब नौकरी मिलती है, सामाजिक पहचान मिलती है। आप बाहर से खेल के आएंगे तो पूरा समाज आपको जानेगा, आपका पेपर है, फोटो आ गया, न्यूज आ गया, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल खेल के आते हैं तो आपको पूरा इंडिया जानता है। अब देखिए जैसे कि अभी ग्रामीण और शहरी दोनों जगह, दोनों क्षेत्रों में अब इतना क्रेज हो गया है खेलो इंडिया गेम में, 30 से अधिक राज्य और
1: जी
0: 60-70 हज़ार से अधिक खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं।
1: जी बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा, जैसे टूर्नामेंट हो या आमतौर पर प्रैक्टिस के दौरान ही चोटें आती हैं,
0: जी जी
1: तो उसके लिए आप क्या सावधानियां बताते हैं?
0: सबसे ज्यादा तो 2 या 3 प्रकार की चोट होती है खिलाड़ियों में, एक स्ट्रेन होती है
1: जी
0: और
1: जी
0: एक नी इंजरी होती है और शोल्डर इंजरी होती है। ये 4 प्रकार की इंजरी होती है सारे गेमों में,
1: जी
0: ना
1: जी
0: कि मेरे ही, बाकी सारे गेम सेम इंजरी होती है।
1: जी
0: तो हम लोग क्या करते हैं, 2 फॉर्मूला यूज करते हैं, एक होता है राइस, एक होता है प्राइस।
1: जी
0: राइस का मतलब होता है RICE, राइस का है रेस्ट, R का मतलब रेस्ट,
1: जी
0: I का मतलब आइसिंग, C का मतलब कंप्रेशन
1: जी
0: और E का मतलब एलिवेशन।
1: जी
0: इसका सीधा मतलब है कि बच्चे को जब चोट लगे तो उसे पहले हम रेस्ट की मुद्रा में लाएंगे, उसे आराम से रखेंगे। आई का मतलब आइसिंग, अगर उसके स्वेलिंग वेलिंग नहीं आई है, हल्का भी स्वेलिंग बढ़ रहा है, उसे पहले आइसिंग करेंगे 15 मिनट के हिसाब से। उसके बाद में फिर कंप्रेशन आता है, कंप्रेशन का मतलब कि दबाव देने लायक है तो उस पर क्रैप बैंडेज बांधेंगे दबाव देकर। एलिवेशन का मतलब है उसे हल्का सा ऊपर उठा के रखेंगे ताकि उसके जो होता नहीं कि पेन कम हो, और जैसे कोई ऐसा चोट लगे जिसमें ब्लीडिंग हो गई तो उसमें आता है प्राइस प्रोटेक्शन, पी लग जाता है प्रोटेक्शन, बाकी सारा प्रोसेस वही रहता है। पहले प्रोटेक्ट करते हैं जहाँ पे घाव वाला जगह होता है, जहाँ पे चोट लगी हो। ऐसा हमारे गेम में तो शोल्डर इंजरी बहुत होती है, नी इंजरी बहुत होती है, क्योंकि शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है बच्चे का प्रैक्टिस में ही, सब बच्चे का शोल्डर डिसलोकेट हो गया। और अब हम लोग तो सिखा देते हैं बच्चों को कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है।
1: जी।
0: तो एक बार एक पेरेंट्स आए हुए थे, हमारे का एजेंट है, पेरेंट्स आए हुए थे, वो देख रहे थे तो बच्चे को करते हुए, तो हमारे बच्चे का क्या हुआ कि फाइट के दौरान, प्रैक्टिस की फाइट के दौरान शोल्डर निकल गया,
1: अरे
0: तो वो नीचे पड़ा, वो नीचे मैट पे गिरा और अपने अपने शोल्डर को अपने हाथ से किया फिट किया और खड़ा होकर फ्री फायर करने लगा। तो पेरेंट्स ने पूछा कि सर क्यों, मैंने बताया मामले सुलझ

0: शोल्डर डिसलोकेशन है, ये हो जाता है हमारे में, तो वो थोड़ा डरे भी, लेकिन आज उनकी बच्ची खेलने आती है और स्टेट में कई मेडल उसके पड़े हुए हैं
1: जी। वार्म अप और कूल डाउन दोनों ही क्या रोल निभाते हैं गेम के दौरान?
0: देखिए, वार्म अप और कूल डाउन एक सबसे अहम रोल इन्हीं का होता है। अगर आप बॉडी वार्म अप नहीं करेंगे तो आपके शरीर में क्या होगा, कई प्रकार की चोटें आ सकती है खेल के दौरान
1: जी।
0: अब जैसे कि अब सिंपल है, इंसान अगर नहाने जाता है, नहाने के बाद अगर टॉवल से पानी ना पोंछे तो कपड़ा जो पहने को कपड़ा गीला हो जाएगा
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो सेम एग्जांपल होता है कि अगर खेलने से पहले बच्चा वार्म अप और स्ट्रेचिंग नहीं करेगा
1: जी
0: तो उसकी उसकी मसल्स और बॉडी खुलेगी नहीं, तो उसको चोट आनी लाजमी है।
1: अच्छा सर, फिटनेस और रिकवरी में फिजियो की क्या भूमिका रहती है?
0: फिजियो की मेन भूमिका ये रहती है कि हर बच्चे को उनके चोट से बचाओ, उनके प्रदर्शन में सुधार किया जाए, इम्प्रूव किया जाता है, उनके फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना, जैसे कि कोई बच्चा खेलते वक्त चोट खा गया
1: जी जी
0: और इमिडिएट उसे परफॉर्म करने वापस जाना है,
1: जी।
0: फिजियो का मेन रोल ये होता है कि उसको तुरंत ठीक करके विद इन 10 to 15 मिनट उसको ग्राउंड में या मैट पे वापस भेजना होता है,
1: वापस भेज दिया जाए
0: जी।
1: कितनी अच्छी बात है सर आप बता रहे हैं। सर एक चीज ये कि जूडो में आत्मरक्षा कितनी जरूरी है और आत्मरक्षा में ये कितनी मददगार?
0: जूडो एक कॉम्पिट गेम माना जाता है, जिसे कि आप सामने वाले जब कोई अपोनेंट आपके पास आता है
1: जी,
0: हमारे में जूडो में सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोगों को गिरना सिखाते हैं। गिरना कैसे, तो जो गर्ल्स होती है हमारे पास बहुत लोअर वेट की, मान लीजिए एक बच्ची है वो 40 किलो की बच्ची है, तो उसे कैसे मारना है, उसे कैसे अपने आप को बचाव करना है, ये सिखाया जाता है। बच्ची 40 किलो की है, सामने लड़का 75 किलो का है
1: जी।
0: तो इसमें हम न्यूटन्स के लॉ और लीवर का यूज करते हैं साइंटिफिक, इसमें
1: जी जी
0: की टेक्निक लगाओ ऐसी कि सामने वाले को 40 किलो की बच्ची 75 किलो के लड़के को उठा के पटक देगी, आप देखेंगे पूरा गोल बना के पटकेगी।
1: ये आत्मरक्षा के लिए एक हिसाब से बहुत ही जरूरी, खासकर गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है।
0: तो एक बच्चों को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए।
1: आपके सिखाए हुए बच्चे सर कहाँ तक पहुँचे हैं, हमारे श्रोताओं को चलते चलते ये जरूर बता दीजिए।
0: जी अब 4 साल में यहाँ पे 2 बच्चियाँ पुलिस में हुई है
1: जी,
0: और 1 बच्ची दिल्ली पुलिस में है
1: जी,
0: और
1: जी,
0: 3 बच्चे आर्मी में हैं और कई बच्चे नेशनल खेल के आए हैं, और अभी अभी हाल ही में मेरा एक बच्चा है वो अभी कजाकिस्तान से इंटरनेशनल खेल के आया है, ब्रॉन्ज मेडल, 2 मेडल मारे उसने लगातार।
1: बहुत अच्छी बातें आपने बताई, अपने स्टूडेंट्स के बारे में भी बताया। और सर अब हम चलते चलते आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: संदेश यही देना चाहेंगे कि सर पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी रहना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: अगर खेल नहीं है तो फिटनेस नहीं है, फिटनेस नहीं है तो पढ़ाई बेकार है, और पढ़ाई के साथ साथ। और यहाँ आपका स्टेडियम, इतना बड़ा स्टेडियम पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है जितना बड़ा स्टेडियम अयोध्या में
1: जी जी।
0: 9 करोड़ का बैडमिंटन हॉल पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, और तो जूडो का बहुत ज्यादा इसमें क्रेज चल रहा है यहाँ पे। 5 साल से लगातार मैं नेशनल टीम लेके जा रहा हूँ, कोई तो भगवान ने हम लोग को दिया है कि हम लोग के अंदर खासियत तभी तो भेजा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में 450 कोच है, उनमें से हम लोग को चुना जा रहा है, तो कुछ तो खास बात होगी। यहाँ भीड़ बहुत होती है और हम लोग बच्चों को बुलाते हैं स्कूलों में जाके, मोटिवेट करते हैं कि बच्चे गेम के प्रति भी मोटिवेट हो पढ़ाई के साथ साथ।
1: सुभाष जी आप हमारे इस गेम के बारे में आपने बताया और स्टूडेंट्स को भी जो आपके खिलाड़ी हैं उनको भी आपने मोटिवेट किया, साथ ही हमारे श्रोताओं ने आपकी ये वार्ता भी सुनी। बहुत बहुत

0: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 102.9 MHz FM बैंड पर। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर

0: जीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596242404 और 7800037222।
1: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज
2: कैंसर हृदय डायलिसिस हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा
2: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायबरेली रोड अयोध्या कॉल करें 9044-20-70-70।
3: आपका हमनवा आपका मेजबान आपका हमदम आपका दोस्त हाजिर है आपका अपना कार्यक्रम लेकर हेलो अयोध्या। तो डायल करिए 7376-804090 और हमसे कीजिए बातें और सुनिए अपनी पसंद के गीत। आइए देखते हैं हमारे आज के पहले कलर कहाँ से है। हेलो जी स्वागत है आपका हेलो अयोध्या कार्यक्रम में। कहाँ से फोन किया क्या नाम है आपका?
4: मोहम्मद सैफ
3: जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप सैफ जी?
4: जानकीगंज बाजार टक्सरा सागन जिला अयोध्या।
3: अच्छा सैफ क्या करते हैं आप?
4: पढ़ाई करते हैं।
3: तो पढ़ाई करने के बाद कुछ सोचा है आपने आगे भविष्य में क्या करना चाहते हैं किस दिशा में जाना चाहते हैं किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं?
4: मोटर मशीन का काम करना चाहते हैं।
3: किस चीज का काम करना चाहते हैं?
4: मोटर मैकेनिक का।
3: मोटर मैकेनिक का काम करना चाहते हैं तो इसके लिए अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं आप?
4: अंग्रेजी।
3: अच्छा सीख रहे हैं। चलिए आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
4: बॉर्डर का।
3: बॉर्डर का कौन सा नगमा?
4: संदेशी आते हैं।
3: चलिए हम ये गाना आपको सुनवाते हैं सर भाई आपकी पसंद पर फिल्म बॉर्डर से। धन्यवाद फोन करने के लिए। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: बॉर्डर फिल्म का ये गीत पसंद किया था मोहम्मद सैफ जी ने, जी वो हमारे आज के पहले कॉलर थे और इन्होंने शाहगंज से फोन किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके फरमाइश के गीत बजे आकाशवाणी अयोध्या पर, तो डाल कीजिए 7376804090 और हमसे कीजिए बातें। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका हेलो अयोध्या कार्यक्रम में। कहाँ से फोन किया, क्या नाम है आपका?
1: सर मैं ज्योति बोल रही हूँ टिकरी से।
0: अच्छा टिकरी से, कौन सा गीत सुनना चाहती है इस कार्यक्रम में?
1: सर नदिया पार का सुना दीजिए।
0: नदिया का पार का हम सुनवाएंगे, कौन सा गाना?
1: सर का मेरी सामने।
0: अच्छा हम ये गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहते हैं आप करती क्या हैं?
1: सर घर पर रहते हैं।
0: घर पे रहती हैं, तो घर पे रह के कुछ काम भी तो करती होंगी आप, पढ़ाई का
1: जी,
0: या घर का?
1: जी सर पढ़ाई कर चुके हैं।
0: पढ़ाई कर चुकी हैं
1: जी।
0: तो माता जी के साथ घर का ही काम काज देखती हैं
1: जी सर।
0: और आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रम भी सुनती होंगी
1: जी, सुनते हैं।
0: तो सुनिए फिर आज अपनी पसंद का ये गीत आकाशवाणी अयोध्या।

0: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हमारा नंबर है 7376804090। इस नंबर पर करिए कॉल और हमसे कीजिए बातें। हेलो।
1: हाँ सर नमस्कार, जय श्री राम।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो अयोध्या कार्यक्रम में। आज अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से फोन किया ये जल्दी से बता दीजिए।
1: हमारा नाम सोनिया, अम्बेडकर नगर जिले से बोल रहे हैं
0: जी। क्या करती सोनिया जी आप?
1: सर घर पे रहते हैं, घर का काम करते हैं।
0: घर के काम करते हैं। गाना कौन सा सुनेंगी आप?
1: सर फिल्म हम साथ साथ का गाना सुना दीजिए।
0: फिल्म हम साथ साथ हैं गाना हम सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहते हैं कि सोनिया को पुराने गाने ज्यादा पसंद है या नए गाने?
1: सर ना ज्यादा नए ना ज्यादा पुराने।
0: अच्छा, जो 90 के दशक के गाने थे वो ज्यादा आपको पसंद है? जो 90 के दशक के गाने थे वो ज्यादा पसंद है आपको?
1: जी सर।
0: जी, तो हम साथ साथ हैं कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: जी वो वाला ये तो सच है कि भगवान है।
0: तो गाना गा भी लेती हैं?
1: थोड़ा बहुत गा।
0: हाँ, तो इस गाने को थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, हमारे श्रोता भी सुने आपकी आवाज में।
1: ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है।
0: बहुत शानदार, धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो अयोध्या कार्यक्रम में। कहाँ से फोन किया, क्या नाम है आपका?
1: मैं अजीत शर्मा, नगला कल्याणपुर टरलागंज यूपी से बात कर रहा हूँ।
0: अजीत शर्मा जी, आपका हम देख रहे हैं करीब करीब हर दूसरे तीसरे दिन फोन लग जाता है, ये क्या जादू करते हैं आप? क्या जादू करते हैं कि आपका हर दूसरे तीसरे दिन फोन मिल जाता है इस कार्यक्रम में? जी अजीत जी, वहाँ कासगंज का मौसम कैसा है? अच्छा, बहुत गर्म पड़ रही है। आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? हेलो,
1: हाँ जी,
0: कौन सा गीत सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में आज?
1: गाने बोल रहे हैं, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, हम तो दिल का नाम है।
0: सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे मेरा गांव मेरा देश फिल्म से यह गीत। इस गीत को पसंद किया था अजीत शर्मा जी ने, जिन्होंने हमें कासगंज से फोन किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके फरमाइश के गीत बजे आकाशवाणी अयोध्या पर, तो डायल करिए 7376804090। हेलो,
1: नमस्ते।
0: स्वागत है आपका हेलो अयोध्या कार्यक्रम में। कहाँ से फोन किया, क्या नाम है आपका, पहले अपना परिचय बता दीजिए। सुमन जी, आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रम कब से सुन रही हैं आप?
1: तो मैं बचपन से सुन रही
0: हूँ। बचपन से सुन रही हैं?
1: सर।
0: कौन कौन से कार्यक्रम हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं आपको हमारे?
1: सर, सभी फोन कार्यक्रम ज्यादा अच्छे लगते हैं।
0: फोन इन कार्यक्रम जो भी हमारे होते हैं वो ज्यादा आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें तुरंत आपसे बात होती है, फरमाइश पूरी हो जाती है, क्यों?
1: जी सर।
0: जी, क्या करती है सुमन जी?
1: घर पर रहती हूँ, घर का काम करती हूँ।
0: घर के काम करती हैं और साथ साथ रेडियो का आनंद भी लेती हैं आप। आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: चांद के तारे।
0: चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: सुनिए,
2: कहिए, कहिए,
1: सुनिए। भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई। सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है। आपकी बात कार्यक्रम में
3: अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं।
1: और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से।
3: व्हाट्सएप मैसेज में सबसे पहले कैपिटल लेटर में AKB टाइप करें।
4: इसके बाद अपना नाम और पता लिखते हुए
3: कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रिया लिखकर
4: 830-321-99

0: 11 पर भेज दें।
1: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन्फॉर्मेशन फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हमारा नंबर है 7376804090। आइए देखते हैं इस नंबर को किसने डायल कर लिया है। हेलो
2: हेलो, हाँ जी सर, नमस्ते।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो अयोध्या कार्यक्रम में। अपना परिचय दे दीजिए।
2: जी सर, मेरा नाम विजय प्रसाद है, ग्राम औरंगाबाद जिला बस्ती से।
1: विजय जी क्या करते हैं?
2: जी सर, हम कपड़ा धोने का धोबी घाट खोल रखे हैं।
1: अच्छा, बस्ती में?
2: जी, मतलब ड्राइंग का काम।
1: अच्छा, तो ये कब से कर रहे हैं काम आप?
2: सर ये मतलब करते हम 15 साल से रहे हैं, मतलब 10 साल मतलब उदयपुर राजस्थान में कर रहे थे, उसके बाद 4-5 साल से यहाँ कर रहे हैं।
1: तो यहाँ कब से आए आप?
2: जी सर मतलब 4 साल में, कोरोना के बाद से सर यही है, मतलब विक्रम ज्योत में।
1: अच्छा, पहले आपने वहाँ राजस्थान में काम किया, उसके बाद में जब वहाँ से यहाँ आ गए, तो यहाँ कैसा धंधा चल रहा है आपका?
2: सर मेरा धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है।
1: और राजस्थान में कैसा था?
2: राजस्थान में नौकरी था, लेकिन तो भी ठीक ठाक चल रहा था, मतलब वहाँ से मतलब ठीक ठाक मतलब काम किए, मतलब यहाँ आए तो यहाँ भी मेरा धंधा सही चल रहा है।
1: सबसे खुशी की ये बात है कि आप वहाँ नौकरी करते थे, आप अब यहाँ स्वरोजगार कर रहे हैं, खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, तो इसमें इसमें आपको ज्यादा लाभ है।
2: और हमारे 3 भाई और हमारी पत्नी, हम 4 लोग मिलकर काम करते हैं।
1: जी बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई हमें जानकर कि पहले आप नौकरी करते थे, फिर कोरोना के वक्त जब आपदा आई तो आप घर पर आए और यहाँ आपने रोजगार शुरू किया, और रोजगार शुरू करने के साथ साथ आपने अपने घर के लोगों को भी रोजगार दे रखा है और घर पे भी रह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आकाशवाणी तो सुनते ही होंगे कार्यक्रम उसके।
2: कार्यक्रम हमारी माता जी सुनती हैं, मतलब उनको और कुछ काम नहीं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक मेरी माता जी सुनती हैं, हम लोग उतना टाइम नहीं था, पर हम पहले सुनते थे, लेकिन अब कार्यक्रम मतलब सुनते हैं, लेकिन मतलब इतना नहीं, मतलब सुनते हैं कार्यक्रम, वो चला सकता सुनते हैं।
1: विजय जी, रेडियो तो कोई बाधा भी नहीं बनता, अगर आप अपनी दुकान पे या कहीं भी जो कहां जहां काम कर रहे हैं वहां रख लें और उसको ऑन कर दें, तो कोई बाधा बिना बाधा के आपको जो है मनोरंजन होता रहेगा।
2: नहीं सर, सुनते हैं वो डॉक्टर वाला कार्यक्रम आता है, फिर इसके बाद में सखी सहेली आता है, उसके बाद में ये खेती वाला काम आता है, सब सुनते हैं सर।
1: चलिए, आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं ये बता दीजिए जल्दी से।
2: जी सर, ये फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी, नफरत की दुनिया छोड़ के खुश रहना मेरे यार,
1: मोहम्मद रफी की आवाज में।
2: जी सर,
1: बहुत अच्छा नगमा पसंद किया आपने, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत फिल्म हाथी मेरे साथी से। धन्यवाद फोन करने के लिए।
2: जी सर, जी सर।

0: सुना थे सखी सुना थे कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
1: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
0: हाँ जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कई सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
4: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का हेलो अयोध्या। हेलो
5: नमस्ते।
4: नमस्ते, कहाँ से फोन, क्या क्या नाम है आपका?
5: शीतल कश्यप नाम है, जवाहर नगर मनकापुर गोंडा से।
4: शीतल जी क्या करती हैं?
5: पढ़ाई करके घर पे रहे हैं, समय इंटर का पेपर दे चुके हैं, बीकॉम करना है।
4: अच्छा, बीकॉम करने के बाद आगे कुछ सोचा है, किस दिशा में जाने चाहती हैं? किस
5: सर, बैंकिंग में जाने के लिए भी काम करके फिर एम काम करेंगे, फिर बैंकिंग में जाएंगे आगे।
4: तो बैंकिंग की तैयारी अभी आपने शुरू कर दी कि नहीं?
5: जी सर।
4: कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी आपने कि नहीं अभी?
5: सर अभी तो नहीं किए
4: हैं। अभी नहीं तो शुरू कर दीजिए।
5: हाँ सर, बस अभी गर्मी तो बहुत ज्यादा हो गई है, बस जैसे थोड़ा राहत मिल जाए वैसे ही।
4: जी चलिए, आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? पत्थर के शरम का गीत हम सुनवा रहे हैं शीतल कश्यप जी को। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।
5: नमस्ते।
4: नमस्ते।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे पत्थर के सनम फिल्म का ये गीत, और इस गीत को पसंद किया था शीतल कश्यप जी ने, जिन्होंने हमें गोंडा से फोन किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गीत बजे आकाशवाणी अयोध्या पर, तो डायल करिए 7376804090। हेलो
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका हेलो अयोध्या कार्यक्रम में। कहाँ से फोन किया, क्या नाम है आपका?
1: हेलो
0: जी, कहाँ से फोन किया, क्या नाम है आपका?
1: सर मैं बात कर रहा हूँ आपसे यूपी उत्तर प्रदेश ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी जिला चाकू वाले रामपुर से अमरजीत बात कर रहा हूँ सर।
0: जी आज पहली बार फोन लगा कि इससे पहले इस कार्यक्रम में बात हो चुकी है?
1: सर बहुत प्रयास करने के बाद आज जिंदगी में पहली बार फोन लगा है, और मुझे काफी खुशी हो रही है कि आज मेरी आकाशवाणी अयोध्या पर आपसे बातचीत हो रही है।
0: जी हमारा भी सौभाग्य है कि आपसे बात हो रही है। आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: सर मैं गीत सुनूंगा, फिल्म का नाम रहेगा साथी, और इसमें एक गीत है जो मैंने इस फिल्म से चुना है, आज हम तुम और सनम मिलके ये वादा करें, तू मेरे दिल में रहे मैं तेरे दिल में रहूं। सर दो नाम बोलना चाहूंगा।
0: नहीं नाम ना बोलिए, बल्कि जो नाम बोलना चाहते हैं उनसे कहिए कि हमें कॉल करें, ठीक है? हमारा नंबर बता दिए 7376804090। और हमें अच्छा लगा अमरजीत जी कि आपने रामपुर से हमें याद किया, और फिर याद करिएगा धन्यवाद फोन करने के लिए। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
1: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
0: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत, बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
1: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
0: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
1: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
0: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
2: आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन्फॉर्मेशन फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। तो डायल करिए 7376804090 और हमसे कीजिए बातें और सुनिए अपनी पसंद का गीत। हेलो।
3: हेलो सर, नमस्ते।
2: नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो अयोध्या कार्यक्रम में। कहाँ से फोन किया, क्या नाम है आपका?
3: सर, हम त्रिदेव लाइट वाले हरिपुर जलालाबाद से बोल रहे हैं।
2: त्रिदेव जी।
3: जी सर।
2: आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आप हमारे पहले कालर अयोध्या से हैं। अभी तक जो हमारे पास फोन आए थे वो जो है सुल्तानपुर, गोंडा, अम्बेडकर नगर, कासगंज और रामपुर तक के आए, लेकिन पहली बार मतलब पहले कालर हैं जो अयोध्या से फोन कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में कौन सा?
3: हमारा सर सुनिए, हमारा दो बार फोन गया, आपका उठा नहीं, तीसरी बार में लगा है।
2: अच्छा, तो बिजी रहा होगा। आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
3: साजन पिक्चर का सुनाइए सर।
2: साजन पिक्चर का गाना चल चुका है, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।
3: जी।

0: आप सुन रहे हैं अपना हर दिल अजीज कार्यक्रम हेलो अयोध्या। आइए देखते हैं हमारे आज के आखिरी कलर कहाँ से हैं। हेलो।
1: हाँ सर, मैं नमस्ते सर।
0: स्वागत है आपका हेलो अयोध्या कार्यक्रम में। कहाँ से फोन किया, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम उषा दुबे है, मैं क्या कहते हैं अयोध्या से कॉल किया है।
0: जी उषा दुबे जी, आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी रोटी कपड़ा मकान का गाना सुनना चाहती
0: हूँ। अच्छा, लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हाय हाय मजबूरी ये मौसम ये दूरी।
0: ठीक है, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। आपसे बातचीत नहीं हो पाई, समय बहुत कम है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: ठीक ठीक।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे रोटी कपड़ा और मकान का ये गीत, और इस गीत को पसंद किया था अयोध्या से उषा दुबे जी ने। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन्फॉर्मेशन फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या, आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। रात की 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में, इसके बाद अंग्रेजी में।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैश्य।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को

0: मोदियों ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
1: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका की विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8,00,000 से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
3: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
2: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, Both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that